0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः 6 बजने को हैं। उसे थोड़ी देर में पहले हिंदी में और उसके उपरांत अंग्रेजी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नॉर्वे को समझौते के तहत 100 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोरे भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
2: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
1: प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे।
3: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन वो परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में देश में वाटर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था होगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्ले ऑफ में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना रकेल। Prime Minister Narendra Modi attended the India-Norway Business and Research Summit.

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। सुबह के ठीक 6:10 और 15 सेकंड्स हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदना।

इसी के साथ कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के ठीक 6:40 होने को है। आइए अब सुनते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों पर आधारित चिंतन।

हाई स्कूल में सर्वाधिक अंक लाकर दीनदयाल ने पूरे अजमेर में खलबली मचा दी थी। हेडमास्टर के द्वारा ये सूचना महाराजा सीकर तक भी पहुंची। हेडमास्टर महाराजा के पास जाकर बोले, महाराज, हमारे ही स्कूल का एक लड़का बोर्ड की परीक्षा में प्रथम आया है। ये सुनकर महाराज बोले, अच्छा, क्या नाम है विद्यार्थी का? हेडमास्टर

बोले, दीनदयाल। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद हेडमास्टर बोले, महाराज, दीनदयाल ने बोर्ड की परीक्षा में इतने अधिक अंक प्राप्त किए हैं कि आज तक किसी भी विद्यार्थी ने इतने अंक नहीं पाए हैं। हेडमास्टर की बात सुनकर महाराजा बोले, यदि ऐसा है तो वो बालक निश्चय ही पुरस्कार का हकदार है। उस बालक को हमारे पास भेजिएगा, हम उसे पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगे ताकि आगे चलकर वो पूरे भारत देश का नाम रोशन करे। खबर पाते ही दीनदयाल महाराजा सीकर से मिले और उन्हें प्रणाम किया। दीनदयाल के संस्कार देखकर महाराजा बहुत खुश हुए। वो उससे बोले, बेटा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं और क्या करते हैं? दीनदयाल चुप रहा और रुआंसा होकर बोला, महाराज, मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है, मुझे मेरे मामा मामी पढ़ा रहे हैं, अब वो ही मेरे माता पिता हैं। दीनदयाल का जवाब सुनकर महाराजा बोले, बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा प्रबंध कर दूं कि तुम्हें किसी वस्तु की कमी ना हो। यह सुनकर दीनदयाल बोले, महाराज, मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। इस जवाब से तो महाराजा बहुत ही खुश हो गए। इसके बाद वो दीनदयाल से बोले, बेटा, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करना, जितना पढ़ना चाहते हो पढ़ो, तुम्हें 10 रुपए की मासिक छात्रवृत्ति उस समय तक दी जाएगी जब तक तुम अध्ययन करोगे। इसके बाद महाराजा ने उन्हें एक स्वर्ण पदक और प्रारंभ के प्रवेश और पुस्तक आदि के खर्चे के लिए 250 रुपए दिए। इस प्रकार दीनदयाल जी को 2 स्वर्ण पदक प्राप्त हुए, एक अजमेर बोर्ड की ओर से और दूसरा महाराजा साहब की ओर से। दीनदयाल पुरस्कारों को पाकर बेहद खुश हुए और वो अधिक मेहनत के साथ पढ़ाई करने लगे, और इस मेहनत का रंग आज तक भारतीय संस्कृति को गौरव प्रदान करता

अभी आप सुन रहे थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों पर आधारित चिंतन। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर।

सुबह के ठीक 6:45 होने को है। अब प्रस्तुत है रामचरित मानस। इसमें आज आप सुनेंगे बाल कांड का भाग 60।

वन में भटकते हुए प्रताप भानु को एक आश्रम दिखाई दिया जिसका निवासी एक ऐसा राजा था जिसे युद्ध में प्रताप भानु ने कभी परास्त किया था और वो अब मुनि के कपटी वेश में अज्ञातवास कर रहा था। उसने प्रताप भानु की खूब आवभगत की।

0: इसी के साथ रामचरितमानस यहीं संपन्न होता है। अब से थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी ओस्लोनगरे भारत नॉर्वे व्यापार अनुसन्धान शिखर सम्मेलने भागम् अगृह्णात्। शिखरसम्मेलने युवराजः हकोन, नॉर्वेदेशस्य प्रधानमन्त्री जोनास गहर स्टोरे इत्येतावपि भागम् अगृह्णताम्। शिखरसम्मेलनं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री मोदी TEPA इत्युक्ते टेपा व्यापार आर्थिक सहभागित्व समवाये प्रवेशम् इति विषये द्विपाक्षिक व्यापारस्य निवेशस्य च वृद्धेः प्रशंसाम् अकरोत्। TEPA इत्यस्य अन्तर्गतम्

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री योनस गहरस्तुर भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना ये

0: मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ही विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
1: प्रधानमंत्री ने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज शाम इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में देश में वाटर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण के अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बनेगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने को मंजूरी दे दी है। ये कार्रवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश और सीबीआई की जांच के बाद की गई है। संदीप घोष पर मेडिकल कॉलेज में खरीद से जुड़े मामलों में वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज किया है, जबकि प्रवर्तन निदेशालय भी धन शोधन के पहलुओं की जांच कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के अनुरोध पर उन्होंने ईरान पर सैन्य हमले को फिलहाल स्थगित कर दिया है। श्री ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम के लिए गंभीर वार्ता हो रही है, जिसके कारण सैन्य हमलों को स्थगित कर दिया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि जल्द ही ऐसा समझौता हो सकता है जो अमरीका और पश्चिम एशिया के देशों को स्वीकार्य होगा। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi has appreciated the growth in bilateral trade and investment following the entry into force of Trade and Economic Partnership Agreement, TEPA. Attending the India-Norway Business and Research Summit in Oslo, along with Norway Crown Prince Haakon and Prime Minister Jonas Gahr Støre, Mr. Modi underlined the stakeholders on both sides should make efforts to achieve the investment target of $100 billion under TEPA, and the consequent creation of 1 million jobs in India.
0: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल

0: इसी के साथ कार्यक्रम संगीतिका यहीं संपन्न होता है। संगीतिका के अंतर्गत आप सुन रहे थे वीणा पहाड़ी द्वारा गाए भजन। इनके साथ संगत कर रहे थे तबले पर सलीम अहमद, बांसुरी पर विनय प्रसन्ना और हारमोनियम पर दामोदर लाल घोष। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 7:32 और 10 सेकंड्स हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, कसे क्लिक में, अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो गीतों भरी गुड मॉर्निंग, और इस खूबसूरत से कार्यक्रम को लेकर ढेर सारे गीतों के साथ हाजिर हूं मैं, आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना गुप्ता। जी हाँ, लेकर आई हूँ बहुत सारी खास बातें और बहुत सारी बहुत ही प्यारे प्यारे गीत। जी हाँ दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम सब कुछ पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। अच्छे मार्क्स हों, अच्छी नौकरी हो, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो, खूब सारे कहते हैं ना कि सफलताएं हो, या फिर अच्छा पैसा कमाने की ख्वाहिश रखते हो, ये सब चीज़ों को पाने की हमारी जो ख्वाहिश है ना, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और ये जो जिंदगी है वो भागती दौड़ती तेज़ी से भागती चली जा रही है, लेकिन एक चीज़ है जिसे हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं, उसी के बारे में आज बात करेंगे। फिलहाल आप सुनिए ये खूबसूरत सा गीत जो सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए है, लेकर आए ढेर सारी खुशी।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: जी हाँ, जानकार बनिए और सतर्क रहिए। अपना पैसा बिल्कुल उसी तरीके से संभाल के रखिए जैसे आप अपनी सेहत का रखते हैं, और हम तो कहते हैं कि अपनी सेहत का भी ध्यान ठीक उसी प्रकार से रखिए जैसे आप अपने पैसे का ध्यान रखते हैं। फिलहाल आप सुन रहे हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग, और आपके साथ हूँ मैं आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना गुप्ता, लेकर आई हूँ ढेर सारे गीत।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: जी हाँ, आरबीआई की माने और अपने दिमाग से चलें, दिल की सुने लेकिन दिमाग से चलें, अपने पैसे को सुरक्षित रखें, ठीक उसी तरीके से जैसे आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, और सेहत का ध्यान रखें ठीक उसी तरीके से जैसे आप अपने पैसे का ध्यान रखते हैं। जी हाँ, एक कहावत है ना कि अगर शरीर अच्छा है, स्वस्थ है, तो हर सपना अपना लगता है, लेकिन अगर सेहत खराब है, स्वास्थ्य खराब है, तो छोटी छोटी खुशियां भी अधूरी लगती है दोस्त। तो जरा सोचिए, सुबह की ताजी हवा एक सुकून

नींद और मन की शांति, चेहरे की मुस्कान, इन सब का रिश्ता हमारी सेहत से है। तो ये सब चीजें हमारी सेहत के लिए हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, तो जरा ख्याल रखें अपनी सेहत का जनाब। क्योंकि लेकिन हम क्या करते हैं, अक्सर सेहत का ध्यान नहीं रखते, देर रात तक मोबाइल चलाते हैं, समय पर खाना नहीं खाते हैं, पानी कम पीते हैं, और हाँ सबसे बड़ी बात, एक्सरसाइज नहीं करते। एक्सरसाइज ना करने का सबसे फेमस बहाना पता है क्या है यार, इतना काम होता है, थक जाते हैं, मतलब मुमकिन ही नहीं होता कि एक्सरसाइज करा जाए, क्योंकि पूरा टाइम अगर हम काम करते रहते तो वो भी तो एक एक्सरसाइज होती है। ये एक जनरल बहाना है जो आमतौर पर आप लोगों के मुंह से सुनते हैं, तो प्लीज़ इस बहाने को अवॉइड करें, एक्सरसाइज करें, अपनी सेहत का ध्यान रखें।

जी हाँ, स्टूडियो घड़ी के अनुसार वक्त हो चुका है पूरे 7:50 और बस कुछ ही पल और है आपके और हमारे साथ, लेकिन बात ज्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ गीत सुनवाएंगे। सुनिए

दोस्तों, हमारा शरीर भी एक मशीन की तरह है और अगर इसका ध्यान नहीं रखा गया ना तो धीरे धीरे जवाब देने लगता है और कहता है कि बस मुझे बख्श दो, क्योंकि तुमने मेरा ध्यान नहीं रखा तो मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। तो कोशिश कीजिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपने व्यस्त जीवन में से थोड़ा सा समय अपनी सेहत के लिए भी निकालिए और उसे दुरुस्त कीजिए ताकि लंबे टाइम तक जो आपका शरीर है स्वस्थ तरीके से चलता रहे, बरकरार रहे। फिलहाल 7:55 और 42 सेकंड हो चुके हैं और साथ ही साथ मेरा आपसे इस कार्यक्रम से विदा लेने का वक्त भी हो चुका है। आप आई होप आप सभी को ये कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा होगा और इसी तरीके से और भी हमारे जो कार्यक्रम है वो पसंद आते रहते हैं, रहते होंगे। बहुत सारी बातें और बहुत सारे गीतों के साथ एक बार फिर से मिलने का वादा लिए आपसे इजाज़त चाहती है आपकी ये आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना। अपना ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखें, स्वच्छता रखें, स्वस्थ रहें। टेक केयर, बाय बाय।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के ठीक 8 बजने को है। अब से थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत ईएफटीए समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपी। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और

0: को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हकॉन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनिस गहर स्तुर भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते टीईपीए के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत के हरित परिवर्तन पर बल देते हुए देश के विकास, बढ़ती ऊर्जा मांग, जलवायु प्रतिबद्धताओं और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड अवसंरचना, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार का उल्लेख किया।
1: 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों से नई साझेदारियां बनाने, सहयोग के उभरते क्षेत्रों की पहचान करने और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने का आग्रह किया। शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत तथा नॉर्वे के व्यापार और अनुसंधान समुदायों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने प्रेस वार्ता में इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था में साझेदारी से अधिक निवेश आएगा, रोजगार सृजित होगा और भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सहित सतत ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा।
2: Recognizing the ambitious
3: भारत के महत्वाकांक्षी समुद्री अमृतकाल विजन 2047 को मान्यता देते हुए दोनों नेताओं ने जहाज निर्माण, हरित जहाज रानी, जहाज पुनर्चक्रण, बंदरगाह अवसंरचना का विकास, नाविकों का प्रशिक्षण, मत्स्य पालन, जलीय कृषि और बंदरगाहों के हरितकरण सहित समुद्री अर्थव्यवस्था साझेदारी को बढ़ाने का आह्वान किया है।
2: ग्रीनिंग ऑफ पोर्ट्स।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। अधिक जानकारी ओस्लो से हमारी संवाददाता से।
4: भारत और 5 नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। टीईपीए लागू होने के परिप्रेक्ष्य में यह शिखर सम्मेलन व्यापार और निवेश संबंधों को अधिक मजबूत करने का प्रयास करेगा। वर्तमान में इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 19 अरब डॉलर है। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से बातचीत भी करेंगे।
5: रोम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में बसे भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात करेंगे, जिनकी यहां उल्लेखनीय उपस्थिति है। वे भारतीय मूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखेंगे, जिसमें प्रवासी भारतीय समुदाय के बच्चों द्वारा गाया गया एक पंजाबी लोकगीत शामिल है। ये बच्चे रोम के पास स्थित फोंदी कस्बे से आते हैं, जहां उनके माता पिता कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। ये पंजाबी लोक शैली का गीत एक जट किसान के

0: गर्व, शक्ति और उत्साहपूर्ण जीवन का उत्सव मनाता है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
4: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले 6 दशकों के दौरान नक्सलवाद के कारण बस्तर को बड़े पैमाने पर जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अगले 5 वर्षों में करेगी। उन्होंने कहा कि अगले 1.5 वर्षों के दौरान बस्तर में स्थापित सुरक्षा बलों के करीब 200 कैंपों में से 70 कैंपों को जन सेवा केंद्रों में बदलकर उन्हें आदिवासी कल्याण का केंद्र बनाया जाएगा। इन सेवा केंद्रों में बैंकिंग, आधार, राशन कार्ड, कौशल प्रशिक्षण सहित केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। एक रिपोर्ट।
5: उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पिछले वर्ष 12 अगस्त को एक समिति का गठन किया गया था। रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायाधीश जांच समिति के पीठासीन अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य ने श्री बिरला को न्यायाधीश जांच समिति की रिपोर्ट सौंपी। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आधिकारिक आदेश जारी कर निदेशालय को घोष के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। श्री अधिकारी ने कहा कि पूर्व की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इस मामले की जांच प्रक्रिया को लंबे समय तक जबरन और अनैतिक रूप से रखा था। ये मामला एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या से भी संबंधित है। सीबीआई ने 29 नवंबर 2025 को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमरीका ने समुद्र में पहले से मौजूद रूस के तेल पर प्रतिबंधों की छूट की अवधि को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। अमरीका के वित्त विभाग ने कल एक आदेश जारी कर 17 अप्रैल या उससे पहले समुद्र में फंसे रूसी तेल पर प्रतिबंधों से मिली छूट की समय सीमा को 17 जून तक बढ़ा दिया है। इससे पहले अमरीका ने 5 मार्च को एक महीने के लिए रूस का तेल खरीदने पर भारत को प्रतिबंधों से छूट दी थी। कुछ दिनों बाद ये छूट अन्य देशों को भी दी गई, जो 11 अप्रैल को समाप्त हो गई थी। अमेरिका इस वर्ष 30 और 31 अक्टूबर को जॉर्जिया के अटलांटा शहर में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल घोषणा की कि इस

0: से शाम 7:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में दिन के समय मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। राजस्थान, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज रात भी गर्मी बने रहने का अनुमान है। जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आज बादल गरजने के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मनोज।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपना शीर्षक बनाया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका प्रतिबंध हटाए या लगाकर रखे, रूस से तेल खरीद जारी रखेगा भारत, सरकार की दो टूक, अपने देश की ऊर्जा जरूरत के हिसाब से तेल खरीदेंगे। हिंदुस्तान ने अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के दावे को प्रमुखता दी है। ईरान का नया शांति प्रस्ताव भी खारिज। पंजाब केसरी ने लिखा है, ट्रंप ने युद्ध पूरी तरह खत्म करने के लिए रखी 5 शर्तें, जवाब में तेहरान ने भी 5 शर्तों की सूची थमाई। देशबंधु की खबर है, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर लागू की नई व्यवस्था, स्ट्रेट के प्रबंधन के लिए नया निकाय बनाने की घोषणा की गई है। नवभारत टाइम्स के अनुसार नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने सोमवार को महाराष्ट्र के लातूर से 10वीं गिरफ्तारी की। सीबीआई का दावा, नीट से 10 दिन पहले मिले थे सवाल। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा पर विश्लेषण दिया है। नए समीकरणों की उम्मीद शीर्षक से पत्र लिखता है, गहरे भू राजनीतिक संकटों और आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की 6 दिवसीय यात्रा सिर्फ औपचारिक राजनयिक दौरा भर नहीं है, बल्कि इसके व्यापक कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक निहितार्थ भी हैं। दैनिक भास्कर की विशेष खबर ध्यान आकर्षित करती है, स्मार्ट से उबे लोग, बेसिक चीजों में सुकून की तलाश, जो गैजेट चुपचाप काम करे अब वही ज्यादा समझदार।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत EFTA समझौते के तहत $100 अरब अमरीके निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्स फॉर $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट एंड 1 मिलियन जॉब्स अंडर इंडिया EFTA एग्रीमेंट एट बिजनेस एंड रिसर्च समिट इन ओस्लो, नॉर्वे। Prime Minister Modi to meet leaders of all 5 Nordic nations at 3rd India-Nordic summit today. Defence Minister Rajnath Singh describes Operation Sindoor as testament to India's transformation into strong, confident and capable nation. Judges Inquiry Committee investigating allegations against Justice Yashwant Verma submits report to Lok Sabha Speaker Om Birla. West Bengal government allows ED to prosecute former principal of RG Corps Medical College Sandeep Ghosh in financial irregularity case. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad secure playoff berth, beating Chennai Super Kings by 5 wickets. Prime Minister Narendra Modi attended the India-Norway Business and Research Summit in Oslo. Crown Prince Haakon and the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, also participated in the summit. Addressing the business and research community, Prime Minister Modi appreciated the growth in bilateral trade and investments following the entry into force of Trade and Economic Partnership Agreement, TEPA. He underlined that stakeholders on both sides should make efforts to achieve the investment target of $100 billion under and the consequent creation of 1 million jobs in India.
3: EFTA countries se Bharat mein अगले 15 वर्षों में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है। यह एम्बिशियस टारगेट

0: की कोशिश करें।
1: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: जनाब मोदी ने मुल्क के पैमाने, बढ़ती हुई तवानाई की ज़रूरतों, आबोहवा में तब्दीली के तहत अज़्म और काबिले तजदीद तवानाई में तेज़ी से उसत, ग्रिड बुनियादी ढांचे, ग्रीन हाइड्रोजन और साफ तवानाई पर जोर देते हुए भारत के उमंगों से भरे माहौल दोस्त तरीक़ेकार की जानिब मुंतकली के एजेंडे का भी जिक्र किया।
1: 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूँ।
0: सरबराह मीटिंग में नॉर्वे और भारतीय कारोबारियों के अलावा तहकीकी बिरादरियों के 250 से ज्यादा शुरका और 50 से ज्यादा कंपनियों के सीईओज ने भी शिरकत की। इससे पहले करीबी ताल्लुकात के तहत खैर सगाली के तौर पर नॉर्वे के इज्जत माब शाह हेराल्ड वी की तरफ से वजीर आजम मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द नॉर्वियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के एजाज से नवाजा गया। वजारत खारजा में मगरबी मुल्कों के उमूर के शोबे के सेक्रेटरी सीबी जॉर्ज ने वजीर आजम के नॉर्वे दौरे पर कहा कि भारत नॉर्वे के भारत बहरुलकाहल समुद्री पहल में शामिल होने का खैर मकदम करता है, क्योंकि दोनों मुल्क बहरी मुल्कों की सरबराही कर रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ओस्लो में आज भारत और नॉर्डिक के दरमियान तीसरी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, जिसका मकसद टेक्नोलॉजी, काबिल तजदीद तवानाई, दिफा, पायदारी और तजारत जैसे शोबों में शुमाली यूरोप के सभी 5 मुल्कों के साथ भारत की क्लीदी शराकतदारी को मजबूत करना है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: वजीर आजम नरेंद्र मोदी शुमाली यूरोप के सभी 5 मुल्कों के अपने हम मनसबों के साथ आज भारत और नॉर्डिक के दरमियान तीसरी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ये सरबराह कॉन्फ्रेंस भारत और शुमाल यूरोप के मुल्कों के दरमियान बढ़ती हुई शोभा जाती ताउन में मददगार साबित होगी। साबिका सरबराह कॉन्फ्रेंस सन 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में हुई थी। सरबराह कॉन्फ्रेंस में जिन शोबों पर तवज्जो दी जाएगी, उनमें तकनीक और इख्तिरा, पायदारी, काबिल तरजीह तवानाई और डिजिटाइजेशन शामिल हैं। तिजारत और माशी शराकतदारी समझौते के निफाज के साथ सरबराह कॉन्फ्रेंस में इस बात की कोशिश की जाएगी कि तिजारत और सरमायाकारी के रबतों को मजीद बढ़ाया जाए। फिलहाल इस ब्लॉक में भारत की दो तरफा तिजारत 19 अरब डॉलर है। यह सरबराह कॉन्फ्रेंस खित्ते के साथ कसीर रुखी ताउन में भी मददगार साबित होगी और ये आपसी मफाद के आलमी और इलाकाई उमूर पर ख्यालात का तबादला करने का एक मौका फराहम करेगी। वजीर आजम मोदी तीसरी भारत नॉर्डिक समिट के मौके पर डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के वजीर आजम के साथ भी बाहमी मीटिंगें करेंगे। ओस्लो नॉर्वे से संगीता गोड़बोली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: 5 मुल्कों के अपने दौरे के आखिरी मरहले के तहत वजीर आजम नरेंद्र मोदी इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी की दावत पर आज 2 रोजा सरकारी दौरे के सिलसिले में इटली के शहर रोम पहुंचेंगे। वजीर आजम मोदी इटली की वजीर आजम मेलोनी के साथ 2 तरफा बातचीत करेंगे। वो इटली के सदर सर्जियो मैटरेला से भी मुलाकात करेंगे। जनाब मोदी कारोबारी सरबराहों के साथ भी गुफ्तगू करेंगे, ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत और सरमायाकारी को फरोग दिया जा सके। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत को एक मजबूत, पुरेतमाद और बासलाहियत मुल्क में बदलने की अलामत करार दिया है। कल हनोई में गैर मुकीम भारतीयों से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने जोर देते हुए कहा कि भारत न्यूक्लियाई हथियारों के पहले इस्तेमाल न करने की अपनी पॉलिसी पर पूरी तरह कारबंद है। वो किसी भी तरह से न्यूक्लियाई ब्लैक मेलिंग में नहीं आएगा और दुश्मन की किसी भी मुहिमजुई का सख्ती से जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में हासिल की गई बेमिसाल तरक्की और कामयाबी की वजह से बैन अलाक्वामी सतह पर भारत की बढ़ती हुई साख को उजागर किया। صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا نے تھائی لینڈ، ایران، نیدرلینڈ، سویڈن اور موریشس کے اپنے ہم منصبوں اور نمائندوں کے ساتھ اعلیٰ سطحی باہمی میٹنگیں کیں۔ یہ میٹنگ کل جنیوا میں صحت کے 79

0: आलमी इजलास के मौके पर हुई थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब नड्डा ने कहा कि मीटिंग में डिजिटल सेहत, दवासाजी, रेजिलियंट पब्लिक सेहत निज़ाम और जदीद यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में ताउन को मुस्तहकम करने पर तवज्जो दी गई। मरकजी वजीर सेहत JP नड्डा आलमी सेहत के 79वें इजलास में शिरकत के लिए फिलहाल स्विट्जरलैंड में हैं। ये मीटिंग कल शुरू हुई थी जो इस माह की 23 तारीख तक जारी रहेगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। जस्टिस यशवंत वर्मा से मुतालिक इल्जाम की जांच कर रही जजेज इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट हाउस में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दी है। ये रिपोर्ट जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत कानूनी तकाजों के मुताबिक पेश की गई है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: लोकसभा स्पीकर की जानिब से हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इल्जाम की जांच के लिए ये कमेटी गुज़िश्ता साल 12 अगस्त को तश्कील दी गई थी। कमेटी की रिपोर्ट मुनासिब वक्त पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पेश की जाएगी। ये रिपोर्ट जजेस इंक्वायरी कमेटी के प्रेसाइडिंग अफसर और सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरविंद कुमार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट BV आचार्य ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पेश की। आनंद कुमार और प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह जगदलपुर में आज सेंट्रल जोनल काउंसिल की मीटिंग की सदारत करेंगे जो छत्तीसगढ़ में बस्तर का डिवीजनल हेडक्वार्टर है। इस मीटिंग में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के उजरायाला और सीनियर अहलकार शिरकत करेंगे। जनाब शाह ने बस्तर जिले में नेतनार गांव में पब्लिक सर्विस सेंटर का इफ्तिताह किया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में हुकूमत गुज़िश्ता 6 दिहाइयों में नक्सलवाद की वजह से बस्तर के अवाम को बड़े पैमाने पर हुए समाजी, माशी और सकाफती नुकसान की अगले 5 साल में भरपाई करेगी। उन्होंने कहा कि बस्तर डिवीजन में कायम किए गए तकरीबन 200 सिक्योरिटी कैंपों में से 70 कैंपों को अगले 1.5 साल में अवामी खिदमत के मराकज में तब्दील कर दिया जाएगा और उन्हें कबायली फलाह बहबूद के हब में तब्दील किया जाएगा। जनाब शाह ने कहा कि ये मराकज मरकज और रियासती सरकारों के तमाम फलाही स्कीमों, बैंकिंग, आधार, राशन कार्ड्स और हुनरमंदी की तरबियत से मुतालिक सहूलियात फराहम करेंगे। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: मगरबी बंगाल हुकूमत ने ED को RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के साबिक प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाज़त दे दी है। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी की जानिब से जारी सरकारी हुक्मनामे ने मुबैना माली बेजाबतगियों और काले धन को जायज़ बनाने के मामले में घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने की राह हमवार कर दी है। इस सूरत हाल से निमटने के लिए साबिका TMC हुकूमत की जानिब से अपनाए गए तर्ज अमल पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए जनाब अधिकारी ने कहा कि साबिका तृणमूल कांग्रेस हुकूमत ने बजोर ताकत गैर अखलाकी तरीके से तवील अरसे तक इस केस की जांच को रोके रखा। जनाब अधिकारी ने कहा कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है और सच्चाई को हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक मगरबी बंगाल के गवर्नर RN रवि मजाज अथॉरिटी के तौर पर FIR, केस रिकॉर्ड और हकाइक की जांच से मुतमईन हैं और इस बात के हक में हैं कि कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के उस वक्त के प्रिंसिपल संदीप घोष पर अदालत में मुकदमा चलाया जाना चाहिए। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में वाटर मेट्रो खिदमात की शुरुआत से मुतालिक जायजा मीटिंग की सदारत की। मुल्क में इन खिदमात का तवील अरसे से इंतजार किया जा रहा है। मरकजी वजीर ने कहा कि मरकज का मुल्क के 18 शहरों में वाटर मेट्रो खिदमात शुरू करने का मंसूबा है जिसमें गुवाहाटी को मरहला 1 के तहत नामजद किया गया है। इसके अलावा श्रीनगर, पटना, वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज जैसे शहर भी मरहला 1 में शामिल हैं, जबकि आसाम के तेजपुर और डिब्रूगढ़ को प्रोजेक्ट के मरहला 2 में शामिल करने की तजवीज़ है। वजारत ने साथ ही साथ कौमी वाटर मेट्रो पॉलिसी 2026 का मसौदा बैन वजारती मशावरत के लिए तकसीम किया है, जिसमें शहरी आबी ट्रांसपोर्ट को हतमी शक्ल देने के कौमी फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाने की बात कही गई है। भारत के रिजर्व बैंक ने कमर्शियल बैंकों की जानिब से انویسٹمنٹ فلکچویشن ریزرو آئی ایف آر برقرار رکھنے کی ضرورت ختم کر دی ہے. آئی ایف آر اضافی بفر ہوتا ہے جو سرمایہ کاری کی قدر میں گراوٹ سے تحفظ کے لیے

0: कायम किया जाता है। हुकूमत ने ऑनलाइन गर्दिश कर रहे उन दावों को मुस्तरद किया है जिनमें कहा गया था कि हुकूमत मंदिरों में रखे सोने के बदले मंदिरों को गोल्ड बॉन्ड्स जारी करने जा रही है। हकाइक की जांच करने वाली प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की फैक्ट चेक यूनिट ने कहा कि यह दावा फर्जी है। पीआईबी ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो फर्जी दावों से दूर रहें और मुस्तनद मालूमात के लिए हमेशा सरकारी ज़राए का इस्तेमाल करें। भारतीय महकमे मौसमियात ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज शदीद गर्मी के हालात की पेशगोई की है। आज दिन में साहिली आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में मौसम के गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो कतर, सऊदी अरब और मुतहदा अरब अमारात के रहनुमाओं की दरख्वास्तों के बाद ईरान के खिलाफ मंसूबा बंद फौजी कार्रवाई करने से रुक गए हैं, जबकि मुतालिका फरीकों के दरमियान संजीदा मुजाकरात जारी हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने मुकर्रा 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स ने 19 ओवर में 5 विकेट खोकर जीत का अपना निशाना हासिल कर लिया। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं जमीर रजवी।
1: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से आज शाये होने वाले ज्यादातर उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को नुमायां जगह दी है। रोजनामा इनकलाब ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नॉर्वे के दौरे के दौरान उन्हें नॉर्वे के आला तरीन एजाज से सरफराज किए जाने की खबर को सफे अव्वल पर जगह दी है। वजीर आजम ने कहा कि आलमी अदम इस्तेहकाम के माहौल के दरमियान भारत और यूरोप के ताल्लुकात सुनहरे दौर में दाखिल हो रहे हैं। वहीं अखबार ने ईरान पर हमले की तैयारियों के तेज होने से मुतालिक खबर को सफे अव्वल की शहसुर्खी बनाया है। अखबार ने लिखा है कि मुजाकिरात में तातुल के बाद गुज़िश्ता 2 दिनों में इस बात के इम्कान बढ़ गए हैं कि अमरीका एक बार फिर ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का रास्ता इख्तियार कर सकता है। रोजनामा प्रताप ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के वियतनाम दौरे की खबर को अहमियत के साथ शाये किया है।
0: खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के ओस्लो में कारोबार और रिसर्च समिट के दौरान भारत EFTA मुआहदे के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी और 10 लाख मुलाजिमतों की बात कही है। वजीर आजम मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक समिट में शुमाली यूरोप के सभी 5 ममालिक के रहनुमाओं से आज मुलाकात करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत पुरएतमाद और सलाहियतों के हामिल मुल्क में बदलने का गवाह करार दिया है। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इल्जामात की जांच कर रही जजेज इंक्वायरी कमेटी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट पेश की। मगरबी बंगाल हुकूमत ने ईडी को मालियाती बेजाबतगी केस में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत दी है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। सुबह के ठीक 8:45 मिनट और पूरे 15 सेकंड्स हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इसमें आज आप सुनेंगे दिव्यांश श्रीवास्तव द्वारा संतूर पर बजाया राग, राग बसंत मुखारी। इनके साथ संगत कर रहे हैं तबले पर सचिन शर्मा।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे दिव्यांशु श्रीवास्तव का संतूर पर बजाया राग बसंत मुखारी। तबले पर संगति कर रहे थे सचिन शर्मा। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर आप हमारे प्रसारण सुन रहे हैं। सुबह के 9:15 और 25 सेकेंड हुए हैं। समय है कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका का।
1: विज्ञान पत्रिका के इस अंक में आप सबका स्वागत है। रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन RDI फंड स्कीम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख पहल है, जिसका कुल परिव्यय 1,00,000 करोड़ रुपए है। इसका मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र को उच्च प्रभाव वाले शोध, तकनीकी विकास और नवाचार, डीप टेक और रणनीतिक क्षेत्रों में निवेश करने के लिए दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस फंड योजना के मुख्य उद्देश्य अनुसंधान और विकास R&D में निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करना, क्योंकि भारत में ऐतिहासिक रूप से ये निवेश कम रहा है। तकनीकी आत्मनिर्भरता, क्वांटम कंप्यूटिंग, अंतरिक्ष, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन एनर्जी जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में भारत को आत्मनिर्भर बनाना, उन उच्च जोखिम वाली और परिवर्तनकारी परियोजनाओं का समर्थन करना जो व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण है। ये योजना मुख्य रूप से कोई अनुदान या छोटी अवधि का लोन नहीं है, बल्कि ये उच्च प्रौद्योगिकी तत्परता स्तरों वाली परियोजनाओं को वित्तीय प्रोत्साहन देती है। ये फंड 2 स्तरीय तंत्र के माध्यम से कार्य करता है। विशेष प्रयोजन कोष यानी SPF, इसका प्रबंधन अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन ANRF द्वारा किया जाता है। द्वितीय स्तरीय फंड मैनेजर यानी SLFMS, इसके तहत टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड TDB, वेंचर कैपिटल और अन्य वित्तीय संस्थाएं AIFS, NBFCs आती हैं, जो इन फंड्स के जरिए रियायती दरों पर लंबी अवधि का वित्त पोषण यानी लोन या इक्विटी के रूप में प्रदान करती हैं। वित्त पोषण आमतौर पर आंकलित परियोजना लागत यानी असेस्ड प्रोजेक्ट कॉस्ट के 50% तक कवर किया जाता है। 13 मई 2026 को नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में माननीय केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की गरिमामयी उपस्थिति में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड यानी TDB द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन RDI फंड स्कीम के तहत 5 परियोजना

0: के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। स्कीम के तहत पहला इलेक्ट्रॉनिक फंड डिसबर्समेंट जारी किया गया। आरडीआई स्कीम की स्टेटस रिपोर्ट पर एक संग्रह जारी हुआ और क्वेंटम सेफ इकोसिस्टम इन इंडिया पर एक रिपोर्ट आधिकारिक रूप से जारी की गई। इस अवसर पर प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के सचिव श्री राजेश कुमार पाठक ने आरडीआई पहल के तेजी से संचालन पर जोर दिया और कहा,
1: हमने प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर से गुजारिश की थी कि हमें 5,000 करोड़ दिया जाए, हम इसे 3 साल में खत्म करेंगे, मतलब कमिट करेंगे। तो सबको ये लगता था, अरे टीटीबी कैसे 2000 करोड़ खर्च कर लेगा। जब हमने कॉल लॉन्च की थी तो अपने दिल की बात कही थी, ये 2000 करोड़ मेरी आशा है कि हम 1 सितंबर जब हम अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रहे हों तब हम खर्च करें। तो माननीय मंत्री जी ने कहा था कि भाई ये देख लो कि क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने इसमें सेलेक्ट किया। हमने पिछले 1-2 महीने में कोई संडे ऐसा नहीं था कि हमने 8 घंटे मीटिंग न की हो आईसी की। क्वालिटी तो ऐसा है कि अब जो आईआईटी बॉम्बे में मैं गया था अभी जो भारत इनोवेट के उस देखने के लिए, तो मुझे ये लगा कि जो हमें 22 प्रोजेक्ट सेलेक्ट करे, करीब 15-16-17 के करीब हमारे स्टार्टअप वो भारत इनोवेट में जा रहे हैं। उसमें भी देखा जाए तो लिस्टेड कंपनी भी हैं, एमएसएमई भी हैं और स्टार्टअप भी हैं। फंडिंग का रेंज 3 करोड़ से लेकर के 285 करोड़ तक की फंडिंग की रेंज है, तो काफी वाइड रेंज की फंडिंग है। बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिली है इस पूरे आरडीआई स्कीम के तहत। विद इन 3 मंथ वी गॉट 124 प्रोजेक्ट प्रपोजल्स, मोर देन 25,000 करोड़ प्रोजेक्ट वर्थ एंड मोर देन 10,000 करोड़ आस्क फ्रॉम आरडीआई फंड। आरडीआई फंड आज की तारीख में 9-10 महीने के अंदर 1 जुलाई में ये पूरा कैबिनेट अप्रूवल के बाद आज फंड डिसबर्स कर रहे हैं। ये पहली बार 2024 में अनाउंस हुआ था, तो हम लोगों की ये थी कि इसको टीडीबी एज ए फंड मैनेजर लेके आए, लेकिन एनआरएफ में आए हम सेकेंड लेवल फंड मैनेजर उसके साथ जुड़े। लेकिन जो जर्नी हमने 1 जुलाई से शुरू की, मुझे अभी भी वो सारी डेट्स कंठस्थ याद है। 7 जुलाई को जब हमने पहली स्टेक होल्डर मीटिंग की थी, उसके बाद हमें ये टारगेट दिया गया था कि 10 दिन के अंदर में हमें पूरी स्कीम की गाइडलाइंस बनानी है। हम लोगों ने फिर इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस करके बनाई, हमने कुछ बैकग्राउंड वर्क किया हुआ था, 3-4 दिन के अंदर में हम लोगों ने एसएफआर भी बना ली। और जब हम फाइनेंस मिनिस्ट्री में भेजे तो वहां से करीब 75 क्वेरी हमको पहली बार आई थी, जिसमें एसएफआर पे 3-4 क्वेरी ही थी, बाकी सारी क्वेरी इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस और जो हमारा एसजीएमटी डॉक्यूमेंट था उस पे थी। खैर जब ये बन गया तो 3 नवंबर को लॉन्च होना, अब एनआईए डॉक्यूमेंट पे काम करो। तो पहली बार तो किसी को पता ही नहीं था ये नई चीज है, इसमें कौन सी डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट के लगेगी। नॉर्मली हम लोग एनआईटी निकालते हैं टेंडर, इसमें टेंडर है नहीं। आरएफपी निकालते हैं, आरएफपी इसमें है नहीं, क्योंकि आरएफपी का वो हमें पता है कि क्या आउटकम है, देन वी जीरो डाउन की एनआईए डॉक्यूमेंट बनाएंगे। तो एनआईए का कोई हवा ही नहीं, एनआईए डॉक्यूमेंट बनती क्या है, कैसे बनेगी। और ताकि 3 नवंबर तक इसको प्रधानमंत्री जी से वहां पर लॉन्च कराना है, दैट्स द काइंड ऑफ टाइमलाइन वी वर्क। एनआईए डॉक्यूमेंट भी हम लोगों, चूंकि हम टेलीकॉम में काम किए थे तो उसकी एनआईए डॉक्यूमेंट का मेरे पास थोड़ा आइडिया था, हमने उससे स्टार्ट किया। बाद में वो स्पेस फंड के भी एनआईए डॉक्यूमेंट बन गया, सब हो गया, लॉन्च हो गई। अब एसएलएफएम को कॉल फॉर करना है तो आप एसएलएफएम पोर्टल पे लग जाओ, कि ना तो वेंडर रेडी है ना हमारे पास कोई टर्म वगैरह रेडी है, बट हम लोगों ने फिर वो भी किया, एसएलएफएम पोर्टल भी बनी और हम सारे करीब 200 प्लस हमारे एसएलएफएम ने अप्लाई भी किया, अभी उनकी इवेल्युएशन चल रही है। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, अकल्पनीय यात्रा हम लोगों ने पिछले 8-9 महीने में तय की है, चाहे वो दिन हो या रात। और जब हमने अपनी फर्स्ट कॉल लॉन्च की, उसके बाद हमें एक्सपेक्टेशन ही नहीं था कि इतनी ज्यादा हमारे पास ओवरवेलमिंग एप्लीकेशन आएंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि इस पूरे आरडीआईएफ जर्नी में हम लोगों ने बहुत ही एक, उसको कह सकते हैं कि जो एक्सपीरियंस है, कैसे एक प्रोजेक्ट को, एक पूरे स्कीम को इस लेवल पे लेके आना। जब आप देखेंगे 22 कंपनी, उन कंपनियों को तो आपको लगेगा कि हमने क्या अचीव किया है। जैसे पहले अश्वमेध जग होती थी, चक्रवर्ती सम्राट हम तभी बनते थे जब उसका घोड़ा दौड़ता था, उसको कोई पकड़ा नहीं आगे। जो हम लोग विकसित भारत की बात कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, वो एक यज्ञ है। उसको यदि अश्वमेध यज्ञ से हम तुलना करें तो वो जो दौड़ने वाला घोड़ा है आरडीआई ही है। ये यदि ये संघ से चल गया, ये घोड़ा आपने खड़ा कर दिया, अब इसे आगे दौड़ना है, बहुत सारी बाधाएं आएगी। इंटरनल बाधाएं भी होंगी, एक्सटर्नल भी होंगी। जिस कंपनी को हमने फंड किया, पता चला उसको एक्वायर करने की एक, वो एक्सटर्नल बाधाएं होंगी। यदि ये आरडीआई रूपी घोड़ा दौड़ गया तो मुझे पूरा विश्वास है कि भारत को विकसित भारत 2047 तक बनने से कोई नहीं रोक सकता।
0: टीडीपी इस स्कीम के तहत प्रोजेक्ट प्रस्ताव कॉल लॉन्च करने, अग्रीमेंट साइन करने और फंड जारी करने वाला पहला सेकंड लेवल फंड मैनेजर बन गया। उन्होंने बताया कि इस पहल को कम समय में 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के 124 प्रोजेक्ट प्रस्ताव मिले। चुने गए प्रोजेक्ट्स में स्टार्टअप्स, एमएसएमई और स्वास्थ्य, ऊर्जा, क्वांटम प्रौद्योगिकी और उन्नत निर्माण जैसे क्षेत्रों की लिस्टेड कंपनियां शामिल हैं। हैं। रिसर्च डेवलपमेंट

0: इनोवेशन यानी RDI फंड के तहत फंडिंग के लिए TDB द्वारा चुनी गई 22 कंपनियां देश के कुछ बेहतरीन स्टार्टअप्स में से हैं और उनमें से कुछ 15 को भारत इनोवेट्स 2026 के हिस्से के तौर पर देश भर में खोज के जरिए चुना गया है, जो कि जून में फ्रांस के नीस में होने वाला भारत के टेक्नोलॉजी इनोवेशन का एक ग्लोबल शोकेस है। प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड TDB भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना सितंबर 1996 में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम 1995 के तहत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य स्वदेशी अनुसंधान के परिणामों को वाणिज्यिक उत्पादों या सेवाओं में परिवर्तित करना है, ताकि देश आत्मनिर्भर बन सके। बोर्ड स्टार्टअप्स, औद्योगिक चिंताओं और अनुसंधान संस्थानों को स्वदेशी तकनीक विकसित करने या आयातित तकनीक को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए अनुदान, सॉफ्ट लोन, रियायती ऋण और इक्विटी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ये फार्मास्यूटिकल, बायोटेक, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी, चिकित्सा उपकरण, कृषि, रक्षा, एरोस्पेस और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे उच्च प्रभाव वाले क्षेत्रों में तकनीकी उद्यमियों का समर्थन करता है। अनुसंधान और विकास R&D को बढ़ावा देने के लिए ये बोर्ड फिनलैंड, स्पेन, इसराइल, UK, सिंगापुर और कनाडा जैसे देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सहयोग करता है। भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष 11 मई को मनाया जाता है, जो वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में हुई महत्वपूर्ण प्रगति, विशेष रूप से 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण, ऑपरेशन शक्ति और स्वदेशी हंसा 3 विमान की पहली उड़ान को याद करने और नवाचार के क्षेत्र में भारत की प्रगति को मान्यता देने के लिए है। इस वर्ष इसे नई दिल्ली स्थित ब्रिक राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान NII में आयोजित विज्ञान टेक 2026 नामक एक भव्य राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ मनाया गया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विकसित भारत के लिए भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण विषय पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। भारत में हमेशा से वैज्ञानिक प्रतिभा और सक्षम मानव संसाधन मौजूद रहे हैं, लेकिन 2014 के बाद विज्ञान और नवाचार को अभूतपूर्व राष्ट्रीय प्राथमिकता मिली है, जिसके परिणाम स्वरूप सभी क्षेत्रों में तीव्र तकनीकी प्रगति हुई है। भारत का स्टार्टअप परितंत्र 2014 में मात्र 350 से 400 स्टार्टअप से बढ़कर आज 2 लाख से अधिक हो गया है, जिससे भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप परितंत्र बन गया है। भारत की वैश्विक नवाचार सूचकांक रैंकिंग 80 से सुधरकर 38 हो गई है, जबकि देश आज पेटेंट के मामले में विश्व स्तर पर 6ठे स्थान पर है, जहां 1 लाख से अधिक पेटेंट दर्ज किए गए हैं। इनमें से 55% से अधिक पेटेंट भारतीय नागरिकों के नाम दर्ज किए गए हैं। वैज्ञानिक प्रकाशनों और नवाचार आधारित अनुसंधान में भी भारत विश्व के अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। पिछले दशक में शुरू की गई कई महत्वपूर्ण पहलों की वजह से भारत को अग्रणी वैज्ञानिक देशों में स्थान मिला है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, भारत AI मिशन, अनुसंधान राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन, अनुसंधान विकास और नवाचार पहल, महिला वैज्ञानिकों के लिए वाइज किरण योजना और स्टार्टअप के लिए निधि कार्यक्रम ने नवाचार, उद्यमिता और समावेशी वैज्ञानिक विकास के अवसरों का लगातार विस्तार किया है।
1: हम सब जानते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे हर साल DST द्वारा मनाया जाता रहा है, लेकिन इस बार ये सेलिब्रेशन का कार्य डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को दिया गया है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी में ये समारोह आयोजित किया गया है। हमारे साथ है RCB फरीदाबाद, जो कि DBT की एक अनुसंधान संस्था है, और उसके साथ है हमारे वैज्ञानिक। हम इन्ही से जानते हैं इनके बारे में, इनके कार्यों के बारे में और इनका जो यहाँ प्रदर्शित उत्पाद है उसके बारे में।
2: नमस्कार, मेरा नाम कुणाल है, मैं फोर्थ ईयर PhD स्टूडेंट हूँ RCB फरीदाबाद में, और हम लोग काम करते हैं यहाँ पर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पर, जैसे कि फिनाइलकेटोन्यूरिया। फिनाइलकेटोन्यूरिया एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो कि जन्म के साथ ही होती है, जिसका कोई अभी तक इलाज नहीं है, जिसमें आपको जो प्रोटीन होता है, नॉर्मल प्रोटीन आप नहीं ले सकते, जैसे दाल, चावल या फिर ये चीज आप नहीं खा सकते, तो आपको एक स्पेशल डाइट चाहिए होती है, जिस पर हम काम कर रहे हैं। अगर ये डाइट ना मिले तो जो बेबी होता है, जो उसको बहुत ज्यादा मेंटल प्रॉब्लम होती है, उसको IQ प्रॉब्लम, मूवमेंट, चलना फिरना और कॉग्निटिव फंक्शन से संतुलन वाले जो भी काम करने होते हैं उसमें बड़ी दिक्कत होती है, तो इसलिए हम इसके लिए स्पेशल फूड बना रहे हैं जो कि वो प्रोटीन से ले सके। तो उसके लिए हम एक एंजाइम यूज कर रहे हैं, जिससे हम नॉर्मल प्रोटीन जो होता है, जैसे सोया प्रोटीन हो गया या फिर आपका मिल्क प्रोटीन हो गया, उससे हम उस जो माइनो एसिड जो प्रॉब्लम करता है, फिनाइल एलेनिन प्रॉब्लम करता है उसमें, उसको हम रिमूव करते हैं, जिससे वो आप फिर पेशेंट को दे सके, जिससे कि वो आराम से नॉर्मल जिंदगी जी सके थ्रू आउट एज अ नॉर्मल किड।
1: क्या इसका कुछ पेटेंट वगैरह किया गया है या इस इनोवेशन टेक्नोलॉजी को कहीं ट्रांसफर किया गया? क्या है, लोगों को कैसे मिलेगा?
2: जी, हमने एक्चुअली इसको पेटेंट करा दिया था। पहले इसमें प्रीक्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, प्रीक्लिनिकल ट्रायल्स करे हमने और माइस के ऊपर।

0: क्योंकि इनका पीक्यू जो फिनाइलकेटोनुरिया डिसीज है उसी का माउस मॉडल होता है। उस पर हमने हमारी जो बनाई हुई डाइट है वो टेस्ट करी, जिसमें हमने देखा कि काफी इम्प्रूवमेंट था, जो नॉर्मल फंक्शन थे माइस के कम्पेयर टू जो माइस नॉर्मल डाइट पे थे उनसे काफी ज्यादा बेटर थे। और उसके बाद फिर हम अब उसको जो फूड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है लाइक जैसे FSSAI वहां से हम अप्रूवल पे उसमें जा रहे हैं, जिसमें हम लार्ज प्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद हम एम्स जैसी जगह पर इसके क्लिनिकल ट्रायल्स भी करेंगे। उसके बाद हम इसको पैकेज कर एज अ नॉर्मल फूड सप्लीमेंट जो कि आपका प्रोटीन सप्लीमेंट और ये सब होता है वैसे प्रोवाइड करेंगे। इससे पहले भी इंडिया में था बट वो बाहर से इम्पोर्ट होता था इसलिए उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा था। बट हमारा वाला जो इसके हमने साइंटिफिक पब्लिश भी करा और इसको हम इंडस्ट्रियल लेवल पे टेस्ट भी करा है तो इसकी कॉस्ट उससे 8-10% सस्ती है। फिर बाद में इन द एंड ये आपको एज अ फूड सप्लीमेंट ही अवेलेबल होगा एज अ स्पेशल मेडिकेटेड फूड।
1: मैं सुमन गुर्जर वैज्ञानिक भारत मौसम विज्ञान विभाग, हमने मल्टी हजार डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बनाया है। इसी के अंतर्गत हमारे पास में एक और पोर्टल है जिसे हम मौसम ग्राम के नाम से जानते हैं। यदि आप उसे गूगल में मौसम ग्राम टाइप करेंगे तो आपको पहला लिंक जो मिलेगा वो मौसम ग्राम ही मिलेगा। इस पे आप अपने किसी भी क्षेत्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप मैप पे कहीं पे भी क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको आवरली, 3 आवरली, 6 आवरली, जो अगले 5 दिन, अगले 10 दिन और अगले 1 घंटे में आपकी जगह का कैसा मौसम होने वाला है उसकी आपको जानकारी प्राप्त हो सकती है। आप इसमें अपनी ग्राम पंचायत तक को जाके सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं और उस पे क्लिक करके आप वहाँ की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
2: मैं अंशुल चौहान वैज्ञानिक, इस प्रदर्शनी में नेशनल टेक्नोलॉजी डे के अवसर पर हम लोग मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम शोकेस कर रहे हैं। ये कम्प्लीटली आत्मनिर्भर और पूरी तरीके से IMD द्वारा ही डेवलप किया गया है। इसमें हमने डिफरेंट सेक्टोरियल एप्लीकेशन बनाए हैं, जैसे मरीन के लिए अलग है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए अलग है, एविएशन के लिए अलग है, इंडियन रेलवेज के लिए अलग है, नेशनल हाईवेज के अलग है। डिफरेंट सेक्टर्स के लिए डिफरेंट स्पेसिफिक टूल हमने बनाया है। रिसेंटली हम चारधाम पोर्टल को भी यहाँ पे शोकेस कर रहे हैं, जिसमें हमने रूट फोरकास्ट दिया है, जिससे यात्री एडवांस में 5 दिन पहले आपको वार्निंग देख के अपने टूर और उस तरीके से यात्रा को प्लान कर सकते हैं। ये सिस्टम पूरा कम्प्लीटली ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी बेस्ड है। मोर देन 250 करोड़ पैसा हमने इसमें सेव किया है। इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्टिंग, ऑटो फोरकास्ट एंड AI एंड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ऑलरेडी इसमें इंटीग्रेटेड है और हम इसको फर्दर एनहांस कर रहे हैं। इस इनिशिएटिव के लिए हमें ऑलरेडी नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2025 मिला है और हम इसको फर्दर इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं।
3: इसी के साथ विज्ञान पत्रिका का ये अंक यहीं संपन्न होता है। वाचन स्वर निशा भारद्वाज और प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विज्ञान पत्रिका कार्यक्रम और आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्तुत चैनल पर। अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक, क्योंकि समय हुआ है 9:30 का।

चरित्र तो गिरेताई उठाया जा नहीं सकदा। ओ हस हस के तेरा मिलना, जुदा होना ओ रो रो के, ओ हस हस

ਜੇ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹਵਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ।

selam ahire taban yeho geta ki e penda pyar da inj ta

ਦੂਜੀ ਗਜ਼ਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਧੱਕੇ ਧੋੜੇ ਖਾਂਦੇ

ਬੀਣ ਵਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ

தக்கே தோழே காந்தே பேயாம் ரோப்பிட்டு

0: ਤਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਰਾਂਝਣਾ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਦੀ ਮੋਰੀ। ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੀਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
1: ਯੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਕਾ ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਚੈਨਲ ਹੈ। 10 ਵਜਨੇ ਕੋ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੀ ਕਸ਼ਣੋ ਮੇ ਆਪ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੇਂਗੇ।
2: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਮਨੋਜ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। अधिक जानकारी ओस्लो से हमारी संवाददाता से।
3: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण, यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
2: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हाकोन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोरे भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
4: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
2: प्रधानमंत्री ने भारत के हरित परिवर्तन पर बल देते हुए देश के विकास, बढ़ती ऊर्जा मांग, जलवायु प्रतिबद्धताओं और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड अवसंरचना, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार का उल्लेख किया। शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत तथा नॉर्वे के व्यापार और अनुसंधान समुदायों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से भी मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वो परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आधिकारिक आदेश जारी कर निदेशालय को घोष के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन शोधन के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Neena Arkel. Prime Minister Narendra Modi attended the India-Norway Business and Research Summit in Oslo. Crown Prince Haakon and the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, also participated in the summit. Addressing the business and research community, Prime Minister Modi appreciated the growth in bilateral trade and investments following the entry into force of Trade and Economic Partnership Agreement, TEPA. He underlined that stakeholders on both sides should make efforts to achieve the investment target of $100 billion and the consequent creation of 1 million jobs in India.
4: एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है। ये एम्बिशियस टारगेट है लेकिन अचीवेबल है, और भारत में आपके इन्वेस्टमेंट को आउटकम्स में बदलना, मैं आपको विश्वास से कहता हूँ, ये हमारी गारंटी है।
3: On the second day of his visit to Norway, Prime Minister Modi, along with his counterparts from 5 Nordic countries, will attend the 3rd India-Nordic Summit in Oslo today. The summit will build upon the increased sectoral cooperation between India and the Nordic countries since the previous summit held in Copenhagen in Denmark in 2022. With TEPA in force, the summit will try to forge deeper trade and investment linkages. India's bilateral trade with this bloc is currently at $19 billion. The Prime Minister will also hold bilateral meetings with the Prime Ministers of Denmark, Iceland and Finland on the margins of the 3rd India-Nordic Summit. On the last leg of his five-nation visit, Mr. Modi will arrive in Rome, Italy on a two-day state visit today at the invitation of his Italian counterpart, Giorgia Meloni. Prime Minister Modi will have bilateral talks with the Prime Minister Meloni. He will also call on the President of Italy, Sergio Mattarella. Defence Minister Rajnath Singh has described Operation Sindoor as a testament to India's transformation into a strong, confident and capable nation. Addressing the Indian diaspora in Hanoi yesterday, Mr. Singh asserted that while India remains committed to the no-first-use policy, it will not succumb to nuclear blackmail and stands ready to respond firmly to any enemy misadventure. Judges Inquiry Committee investigating allegations concerning Justice Yashwant Verma submitted its report to

0: Lok Sabha Speaker Om Birla at the Parliament House. It was presented in accordance with the statutory requirements under the Judges Inquiry Act 1968. The committee was constituted on August 12 last year by the Lok Sabha Speaker to inquire into allegations against former High Court Judge Justice Yashwant Verma. The report will be laid in both Houses of Parliament in due course. The West Bengal government has sanctioned the Enforcement Directorate ED to prosecute Sandeep Ghosh, former principal of RG Kaur Medical College and Hospital. The official government order released by Chief Minister Suvendu Adhikari clears the deck for ED to prosecute Ghosh for alleged financial irregularities and money laundering. Petrol and diesel prices in Delhi has been increased by around 90 paise per litre today. According to Indian Oil, petrol prices in the national capital rose to 98.64 rupees per litre from 97.77 earlier, while diesel rates increased to 91.58 rupees per litre from 90.67. In IPL cricket, Sunrisers Hyderabad defeated Chennai Super Kings by 5 wickets in Chennai last night to secure a playoff berth. Put into bat first, Chennai Super Kings posted 180 for 7 in 20 overs. In reply, Sunrisers Hyderabad overhauled the target, losing 5 wickets in 19 overs. Today, Rajasthan Royals will face Lucknow Super Giants in Jaipur at 7:30 p.m. A California jury ruled against billionaire entrepreneur Elon Musk in his high-profile lawsuit against OpenAI, delivering a major legal victory for OpenAI in a closely watched courtroom battle over the future of artificial intelligence. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर श्रोताओं आप हमारे प्रसारण सुन रहे हैं। डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर भी आप हमसे जुड़े हुए हैं। साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म AIR लाइव न्यूज 24x7 मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भी आप हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं। सुबह के 10:10 हुए हैं और श्रोताओं ये समय है आपकी पसंद के फिल्मी गाने सुनवाने का। तो आपके ईमेल्स लगातार आने लगे हैं और आपके जो ईमेल्स आ रहे हैं दोस्तों उसमें मैं आपसे फिर से अपील करूंगा, जैसा कि हम लोग प्रायः करते हैं, कि आप एक बार एक ईमेल भेजें एक प्रोग्राम में, ताकि बाकी सभी श्रोताओं का भी खत उनका भी मेल हम शामिल कर पाएँ और उनकी पसंद के भी गीत हम आपको सुनवा पाएँ। और कई बार जब बार बार मेल भेजते हैं या एक ही श्रोता के बहुत सारे मेल आ जाते हैं, तो कुछ श्रोताओं के ईमेल या कुछ श्रोताओं की पसंद के गाने हम सुनवा नहीं पाते हैं और वो फिर नाराज़ होते हैं। तो दूसरों का भी ध्यान रखें, अपना भी ध्यान रखें। और आपसे निवेदन है कि अगर आप प्रोग्राम सुन रहे हैं तभी आपके ईमेल भेजें और उन ईमेल्स को हम शामिल करें। पहला गाना जो आज के इस कार्यक्रम में हम सुनवा रहे हैं, श्रोताओं के नाम थोड़ी देर में बताते हैं, पहले गाना सुनते हैं। और ये गीत है महेंद्र कपूर के स्वर में, बहारें फिर भी आएंगी फिल्म का नाम है। और दोस्तों

के नाम थोड़ी देर में बताते हैं, पहले गाना सुनते हैं। और ये गीत है महेंद्र कपूर के स्वर में, बहारें फिर भी आएंगी फिल्म का नाम है। और दोस्तों, इस गीत को सुरों में ढाला है ओपी नैयर ने, बहुत ही खूबसूरत संगीत और बहुत ही खूबसूरत संगीत। आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, ये खूबसूरत संगीत जिसे ओपी नैयर ने तैयार किया, इसे आपने सुना। और हम सभी जानते हैं कि इस धरती पर जो भी सुंदर चीज़ें हैं, खूबसूरत चीज़ें हैं, जो हमें सुकून और आनंद देती हैं, उनमें साहित्य, संगीत और कला भी है। तो खूबसूरत शब्द, वो बोल, वो सुंदर बोल जो हमारे दिलों को छू जाते हैं, और वो सुर, वो साज जो बजते हैं, तो ऐसा लगता है कि मन उनके साथ झूम रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमें आनंद देते हैं। और प्रकृति का संगीत भी हम सभी सुनते हैं कभी कभी, जब चारों तरफ शांति होती है, सुबह वो चिड़ियों की आवाज़ें, या पत्तों की, जो पत्तों के द्वारा निकलता संगीत, या नदी की कलकल धारा में जब आवाज़ सुनाई देता है, जो प्रकृति का संगीत है, वो भी कहीं ना कहीं हमें सुकून की ओर लेकर जाता है। तो खूबसूरत नगमा आप सभी की पसंद पर हमने सुना है। आइए नाम जान लेते हैं। अनिल ताम्रकार, अमर, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कन्नौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, सुनील जैन, रजक और लालू, सोना, मोना, हनी, यश और उनके मम्मी पापा, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन, कविता, राधा नामदेव, संजय ढींगिया, संदीप मक्कड़, अनिल जैन और दर्शन भाई, मेरठ से ही अनिल जैन, और संयम, मुस्कान, जीवियम आदि, अंश और भव्य जैन की पसंद भी हमने इसमें शामिल की। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिहार, रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विर्क, जयतीग और मीका विर्क, चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज और साहिल तथा बिट्टा बजाज, आप सभी के पसंद पर ये गीत हमने सुना। अगला गाना हम सुनवा रहे हैं आप सभी श्रोताओं के पसंद पर। नवाशहर पंजाब से हमें ईमेल किया गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी और प्रियंका, प्रशांत थांदी, प्रियम, वामिका और वाणी थांदी ने। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सिटी दीवाना, राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, आराध्या साहू, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल, सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंघेल, खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश, दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीणा मस्कीन, आशीष राजा, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचित खुराना, केशु रिधान खुराना। तो आप सभी की पसंद पर हम सुनने जा रहे हैं आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ में, वक्त फिल्म का ये गीत। साहिर के बोल हैं और संगीत रवि का है।

अच्छा भोसले और महेंद्र कपूर के स्वर में ये गीत आपने सुना वक्त फिल्म का। और कार्यक्रम का अगला गाना सुनवाने से पहले श्रोताओं के नाम पढ़ूंगा, उन जिनकी फरमाइश हमें मिली है और जिनकी पसंद पर अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। और इसमें एक ईमेल चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा जी ने भेजा है, और उन्होंने लिखा है कि एक विचार साझा करना चाहूँगा। हमारा रिश्ता तो आँख और पलक जैसा गहरा होना चाहिए। जब पलक कुछ देर ना झपके तो आँख रो देती है, और अगर आँख में कुछ चला जाए तो पलक तड़प उठती है। बहुत ही खूबसूरत विचार आपके, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से आपने ईमेल किया है, इसके लिए आपको बहुत शुक्रिया। तो आप सभी की पसंद पर आइए सुनते हैं ये गीत जो हमने लिया है हिमालय की गोद फिल्म से, मुकेश के स्वर में ये गाना, बहुत ही खूबसूरत सा गाना, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है। और सुनने के लिए आप सभी ख्वाहिशमंद श्रोता हैं। राजू अग्रवाल, केशव, चरणदास, रेखा, आप सभी ने चौधरीवास हरियाणा से, हिसार से चिट्ठी ईमेल लिखा हमें। गंज डुंडवारा से शमशुल कमर राही, शाहीन, फातिमा, अदनान खान, फैज़ान और अनु खान। बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत, परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अब्बान अब्बासी। बिलाईगढ़, छत्तीसगढ़ से कौशल्या देवांगन, रोशनलाल देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन। रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा। मुल्लापुर दाखा से राजेश जैन, बिट्टू जैन, संजीव जैन। जलालाबाद पश्चिम से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। आप सभी की पसंद पर हम सुनने जा रहे हैं ये बहुत ही प्यारा सा नगमा।

श्रोताओं, आनंद बख्शी ने ये गीत लिखा था, और आपको क्या लगता है कि आते जाते यादें छोड़ जाता है कि नहीं? आपकी कुछ यादें हैं जो आपने कहीं किसी के साथ, जो दूर हो गए हैं आपसे, किसी और शहर, किसी और राज्य, किसी और देश में, लेकिन यादें आपके साथ हैं, आपकी यादें उनके साथ हैं। अपनी यादें ज़रूर साझा करिए, लेकिन ईमेल एक ही करिए।

ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आप सभी श्रोताओं की पसंद पर, उदयपुर से बाबू भाई, भारती देवी, नजफगढ़ से शाहरुख फारूख, शबनम शहनाज, जगराओं से कमल पाठक, सुनील पाठक, गाव्या मल्होत्रा और सुच्चा सिंह, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू और पप्पी भाटिया, संदीप मक्कड़, ज्योति मन्नत, भरत मक्कड़, कमल साहनी, आप सभी ने जालंधर पंजाब से लिखा, हरियाणा से विनोद छिपा, ममता पनिहाल और साहिल ने लिखा, ईमेल हमें हिसार से किया राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी, कुवात बिहार से अकरम हुसैन, इशरत अकरम, वसीम रूबीना वसीम और आरिज नदीम शमीम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा ने।

और अगला गाना भी दोस्तों हम आपको सुनवा रहे हैं इसी कॉम्बिनेशन का, इसी जोड़ी का। जी हाँ, आनंद बख्शी ने गीत लिखा है और लक्ष्मीकांत की तर्ज है, मोहम्मद रफ़ी है। हालांकि साथ में हम आशा भोसले को सुनवा रहे हैं, लता मंगेशकर के साथ अभी आपने सुना, और अगला ये जो गीत है ये मोहम्मद रफ़ी के साथ है। आइए सुनते हैं, ये भी बहुत ही प्यारा सा गीत है और ये सावन की बात करता है। मौसम इस समय बहुत जगहों पर बहुत गर्म हो रहा है और ऐसे में सावन की बात सुन के ही लगता है कि कुछ सुकून तो मिला। तो सावन अभी आने में दूर है, लेकिन इस गाने में थोड़ा सुकून है, आइए सुनते हैं।

दोस्तों, ये गीत भी लता मंगेशकर के साथ ही है। मैंने आपको बताया कि आशा भोसले के स्वर में है, मैं माफी चाहूंगा इसके लिए। ये लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को आप सुन रहे हैं, बहुत ही प्यारा सा गीत, और जिसे

जी, आशा फिल्म का नाम था और लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी के स्वर में ये गीत आप सुन रहे थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आनंद बख्शी के बोल, और आशा दिलाता ये गीत, सावन की उम्मीद जगाता ये गीत, इस भयंकर गर्मी में, इस

तेज चलती लू में जो हमें परेशान कर रही है। अब ये लू, ये गर्मी सभी के लिए परेशानी का कारण बन रही है, वनस्पति, पशु, पक्षी और मनुष्य सभी के लिए। तो हम सभी तो अपना बचाव कर लेते हैं, और लेकिन कई बार हमारे आसपास जो छोटे छोटे पंछी उड़ते हुए रहते हैं, शहरों में तो पंछियों को दिखना बहुत कम हो गया है, लेकिन अगर थोड़ी सी कोशिश की जाए तो हमारे आसपास ये खूबसूरत पंछी जो प्रकृति का संगीत बजाते हैं वो भी नज़र आते रहेंगे। इसके लिए थोड़ा सा काम कर सकते हैं, अपनी बालकनी, अपने घर के आसपास छोटे से बर्तन में पानी रखें जिसमें वो पानी पी सकें और वो भी अपने जीवन का आनंद ले सकें और हमारे लिए प्रकृति का संगीत बजाते रहें। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले बताते हैं किन श्रोताओं की पसंद पर ये गीत हमने सुना। सीतामढ़ी बिहार से मुसर्रत जहां नाज, तलत जहां, फरहत रिफत और नुजहत जहां नाज, साजिया शाहीन और नाजिया नूरी नाज। सतप्रकाश सनोठिया ने रोहिणी से हमें ईमेल किया है। अशोक तुलानी, लाला, सोनी, शेर सिंह, राजपूत, मोहन कसारा, बाबू भाई चांदीवाला, आपने क्लॉक टावर उदयपुर राजस्थान से हमें मेल किया। व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भरत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण और संस्कृति तथा पौरुष ने ईमेल किया। दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू का ईमेल मिला। और ईमेल पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानक चंद्र मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल डुग्गू और भाविका सिक्का का भी मेल आया। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आप सभी ने आज़ाद नगर लक्सर से ईमेल किया, हरिद्वार से। तो आप सभी की पसंद पर यह गीत सुना, और कार्यक्रम का अगला गाना वो भी बहुत ही प्यारा सा है। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, जिसे लिया है फिजा फिल्म से। और किन श्रोताओं की पसंद पर यह गीत हम आपको सुनवा रहे हैं इस गीत के बाद आपको बताते हैं। और आप सभी को मैं ये भी बता दूं कि हम हर किसी श्रोता का नाम शामिल करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनकी पसंद हो सकता है शामिल ना हो पाए। कई ईमेल में से एक गाना जो चुन लेते हैं, जो कॉमन हो, जो सबको पसंद आ सकता है, ऐसा हम प्रयास करते हैं। तो आपका नाम शामिल कर ले रहे हैं, हो सकता है आपकी फरमाइश नहीं शामिल हो पाए, इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, लेकिन आप ईमेल हमें करते रहिए और सिर्फ एक ईमेल भेजिए। लगातार हमारे साथ बने रहिए, आप सुन रहे हैं अपनी पसंद के फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से।

ये गाना आप सभी की पसंद पर हम सुन रहे हैं। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, आपने सोनीपत, शांति नगर सोनीपत हरियाणा से ईमेल किया। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास और आशा देवी का मेल मिला। स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह गिल, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह का ईमेल भी हमें मिला। मलोट पंजाब से ही राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी सौरव, साइना और निमान शर्मा, राजू बिंदल, मांगेराम, माया देवी, आपने चौधरीवास हरियाणा से ईमेल किया। और मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी और लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलबीर सिंह, आप सभी की पसंद पर हम सुन रहे हैं फिजा फिल्म का अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में ये गीत।

दोस्तों, एक और ईमेल इस गीत के लिए मैंने शामिल किया, डीबी राणा का, नेहरू विहार, दिल्ली से। आपने बहुत अच्छी बात लिखी है, प्रकृति का दोहन नहीं होना चाहिए, यह हमारे जीवन रक्षक हैं। बिल्कुल आपने ठीक बात कही जब हमने जिक्र किया कि हमें प्रकृति किस प्रकार सुकून और आनंद देता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि जब हम अपनी रोज़ की ज़िंदगी से थक जाते हैं, हार जाते हैं, या लगता है कि अब थोड़ा सा सुकून चाहिए, थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, तो ऐसी जगह की तलाश में रहते हैं जहाँ सिर्फ प्रकृति का सौंदर्य हो, जहाँ सिर्फ प्रकृति का संगीत हो और कोई शोर न हो। तो इसलिए बिल्कुल ठीक आपने कहा कि प्रकृति का संरक्षण होना चाहिए। और कार्यक्रम का अगला और आखिरी गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, बहुत ही प्यारा सा गीत है ये, उदित नारायण और लता मंगेशकर के स्वर में, मोहब्बतें फिल्म का ये गीत है, आनंद बख्शी ने लिखा है और जतिन ललित का संगीत। आइए सुनते हैं और उसके बाद बताते हैं आपको उन श्रोताओं के नाम जिनकी पसंद पर ये गीत आज आपकी फरमाइश का हिस्सा बना।

छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिलू नायक, कैथल हरियाणा से मधु नायक और जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन नौरीन आसना, मोहम्मद कैफ अंसारी, कृष्णा कॉलोनी हासी से सुभाष योगी, सुशील योगी, बब्बू डब्बू, राजू मिगलानी, बबिता मिगलानी, दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी वर्मा, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा, कानपुर से रामेश्वर कठेरिया, उमा कांति कठेरिया, करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, स्प्रीत शर्मा, हरिपाल कौर और जग्गी दुआ, पंजाबी बाग दिल्ली से परमजीत कौर, दिलबाग सिंह, दिलजोत सिंह और दिलजोत सिंह, आप सभी की पसंद पर हम मोहब्बत फिल्म का ये गीत सुन रहे हैं।

0: कार्यक्रम में आपकी फरमाइश यहीं संपन्न करने की अब अपने दोस्त देवेंद्र त्रिपाठी को दीजिए अनुमति। 11 बजने को हैं, थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार तथा अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हाकोन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोरे भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
3: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
1: प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेरल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जो मत्तारेला से भी मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग पर आधारित मजबूत संबंध साझा करते हैं। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला न करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वो परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के

0: In IPL cricket, Sunrisers Hyderabad defeated Chennai Super Kings by 5 wickets in Chennai last night to secure a playoff berth. Put into bat first, Chennai Super Kings posted 180 for 7 in 20 overs. In reply, Sunrisers Hyderabad overhauled the target, losing 5 wickets in 19 overs. Today, Rajasthan Royals will face Lucknow Super Giants in Jaipur at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। हमारे प्रसारण आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर भी आप हमसे जुड़े हुए हैं। साथ ही आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है AIR लाइव न्यूज़ 24x7, जिसके माध्यम से आप कहीं से भी अपने मोबाइल पर इंटरनेट के माध्यम से इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं और इस एप्लीकेशन पर हमारा ये कार्यक्रम भी और आकाशवाणी के अन्य चैनल भी सुन सकते हैं। सुबह के 11:10 हुए हैं, ये समय है सुगम संगीत के कार्यक्रम सबरस का, और सबरस कार्यक्रम की आज की पहली प्रस्तुति संगीता पंत के स्वर में ये है।

श्रोताओं, अभी आपने लता मंगेशकर और जगजीत सिंह के स्वर में सबरस कार्यक्रम की ये प्रस्तुति सुनी, और कार्यक्रम का अगला जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं वो है सोनू निगम का गाया हुआ।

है प्यार तो मुसाफिर मर्जी से आए जाए। शुभा मुद्गल के स्वर में ये प्रस्तुति, ये गीत आपने सुना सबरस कार्यक्रम के अंतर्गत। और अब आज का सबरस कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्तुत चैनल से बोल रहे हैं। हमारे प्रसारण आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स पर। सुबह के 11:30 हुए हैं। ये समय है कार्यक्रम सुरमंजरी का। इसमें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आज आप सुनने जा रहे हैं मिथिलेश कुमार सिंह का राग मुल्तानी में गायन।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुरमंजरी में अभी आप सुन रहे थे मिथिलेश कुमार सिंह का गायन राग मुल्तानी में। शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। हमारे प्रसारण आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। दोपहर के 12 बजने को हैं, कुछ ही क्षणों में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारत और 5 नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं।
3: इटली के विभिन्न हिस्सों से आए भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए यह अवसर किसी ऐतिहासिक पल से कम नहीं है। शिक्षा, कृषि, डेयरी फार्मिंग, रियल एस्टेट और अन्य व्यवसायिक क्षेत्रों से जुड़े ये लोग दोनों मित्र देशों के शीर्ष नेताओं के बीच होने वाली इस उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक से अपनी अपनी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं लेकर आए हैं। भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन नागरिक भी भारत में उभरते व्यवसायिक अवसरों को लेकर उत्साहित हैं। आकाशवाणी के लिए रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: भारत और स्वीडन ने फैसला किया है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग साझा समृद्धि और सतत भविष्य का रास्ता तय करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया के सामने एक निर्णायक विकल्प है, या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाना या फिर अपनी साझेदारियों को मजबूत बनाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और यात्रियों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि ये समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने जनता और निर्वाचन आयोग की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है।
4: दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपए है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपए और डीजल 94.08 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रुपए और डीजल की 96.07 रुपए दर्ज की गयी, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपए और डीजल की 96.11 रुपए प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और हुर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi will attend the third India-Nordic summit in Oslo today, aimed at strengthening India's strategic partnership with Nordic nations in areas such as technology, renewable energy, defence, sustainability and trade. We have more from our correspondent.
2: This summit will build upon the increased sectoral cooperation between India and the Nordic countries since the previous summit held in Copenhagen in 2022. The areas in focus are tech and innovation, sustainability, renewable energy and digitization. With TEPA in force, the summit will try to forge deeper trade and investment linkages. India's bilateral trade with this bloc currently stands at $19 billion. This summit will help in expanding our multifaceted cooperation with the region. It will also provide an opportunity to exchange views on global and regional issues of mutual interest. Prime Minister Modi will also hold bilateral meetings with the Prime Ministers of Denmark, Iceland and Finland on the margins of this summit. Sangeeta Godbole, Akashvani News, Oslo.
5: Earlier, Prime Minister Modi attended the India-Norway Business and Research Summit in Oslo. Crown Prince Haakon and the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, also participated in the summit. Addressing the business and research community, Prime Minister Modi appreciated the growth in bilateral trade and investments following the entry into force of Trade and Economic Partnership Agreement. The summit was also attended by CEOs of over 50 companies and more than 250 participants from the Norwegian and Indian business and research communities. Prime Minister Modi will travel to Italy today on the fifth and final leg of his five-nation tour. India and Sweden have emphasized that cooperation will define the pathway to shared prosperity and a sustainable future at this moment of global uncertainty. In an article written by Prime Minister Narendra Modi and his Swedish counterpart Ulf Kristersson, it was highlighted that at a time of global uncertainty, energy insecurity and economic divisions, the world must choose between working alone or strengthening international partnerships. In the article, both the Prime Ministers noted that as the United Nations marks its 80th anniversary, the value of international cooperation and multilateralism has become even more evident. They emphasized that at the same time, the need to reform global governance institutions to reflect contemporary realities has become impossible to ignore. The Supreme Court today refused to recall its earlier directions that stray dogs picked up from public places must not be released back after vaccination or sterilization. A bench headed by Justice Vikram Nath dismissed pleas seeking modification of the November 2025 order and directed authorities to confine such dogs to shelters. The court cited deeply disturbing incidents of dog attacks on children, elderly persons and travellers and said the menace had reached critical public areas. Petrol and diesel prices have been hiked by around 90 paise per litre today, marking the second increase in less than a week. In Delhi, petrol now costs 98.64 rupees per litre, while diesel is priced at 91.58 rupees. The latest hike comes days after a 3 rupee per litre increase. On May the 15th, the first fuel price revision in over 4 years. The rise follows a sharp surge in global crude oil prices amid the Iran conflict and disruptions in the Strait of Hormuz. Defence Minister Rajnath Singh has called on President of Vietnam Tho Lam in Hanoi and reaffirmed India's commitment to further deepen defence cooperation.

Çağındır. आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड चैनल एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, कार्यक्रम है घर आंगन। आप हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर भी। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो सखी राधा पाठक। स्वीकार करें मेरा नमस्कार। दोस्तों, इंसान की जिंदगी में संगीत का रिश्ता हमेशा से अटूट रहा है। ऐसे में अगर आप तनाव से दूर और खुशहाल रहना चाहते हैं तो जितनी जल्दी हो सके संगीत यानी म्यूजिक से रिश्ता कायम कर लीजिए। कहने का मतलब यह है, अगर आप संगीत सुनना पसंद करते हैं तो इस आदत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो संगीत सुनिए। संगीत की खूबी भी यही है कि जब चाहें जैसा चाहें सुने और फिर अपना मूड बदल लें। कह सकते हैं कि संगीत हमारी जिंदगी के हर पल का साथी है, हमारा हम सफर है। जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पौष्टिक खाने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी तरह हमारी आत्मा को स्वस्थ और सकारात्मक रखने के लिए संगीत की आवश्यकता पड़ती है। आप चाहे कितने भी बिजी हों, कितने भी व्यस्त हों, हम यही कहेंगे कुछ समय अपने लिए निकालिए, संगीत का संग अपनाइए। वजह कई शोध भी यही बताते हैं कि संगीत का असर हमारे शरीर और मन दोनों पर पड़ता है। अगर आप सोच रहे हैं कि सोते वक्त आपको गाना सुनना चाहिए या खाते वक्त गाना सुनना चाहिए, तो बस संगीत के लिए सोचिए मत। हर वक्त आप संगीत सुन सकते हैं। सोते समय सुखदायक संगीत सुनना शुरू कर दीजिए। एक सुखद नींद के लिए सोने से पहले अगर आधा घंटा आप संगीत सुनते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। आप पाएंगे कि तनाव मुक्त नींद और पर्याप्त नींद में ये कितना सहायक है। धीमा संगीत सुनने से आप आराम महसूस करते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, संगीत से चिंता भी दूर होती है और इससे आपको स्वस्थ जीवन मिलता है, क्योंकि स्वस्थ मन ही स्वस्थ जीवन की कुंजी है।

गूंज उठी शहनाई, इस फिल्म में अभी आपने लता मंगेशकर को सुना। संगीत के इन सुनहरे पलों को और भी शानदार बनाने के लिए बना रहे आकाशवाणी का साथ। जी हाँ, आकाशवाणी के 90 वर्षों के सफर में संगीत में ढेर सारे बदलाव आए हैं। आकाशवाणी के 90 वर्षों के सफर में संगीत न केवल मनोरंजन का साधन रहा, बल्कि इसने भारतीय संस्कृति को संरक्षित करने और आधुनिकता के साथ जोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1936 में अपनी स्थापना के बाद से संगीत में आए बदलावों को ऐसे समझा जा सकता है कि हम कह सकते हैं 1950 का जो दशक था वो शास्त्रीय संगीत का संरक्षण का दौर था। राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम 1952 में 20 जुलाई 1952 को राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी और कर्नाटक को आम जनता तक पहुंचाना और संरक्षित करना था। नेशनल ऑर्केस्ट्रा, दिल्ली में नेशनल ऑर्केस्ट्रा की स्थापना भी हुई, जिसका नेतृत्व महान सितार वादक पंडित रविशंकर ने किया था। शास्त्रीय संगीत के लिए एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करने हेतु 1954 में पहला रेडियो संगीत सम्मेलन आयोजित किया गया और आज तक इसके 67 यानी 67 से ज्यादा संस्करण पूरे हो चुके हैं। सुगम और फिल्म संगीत का उदय होता है तब आकाशवाणी की बात करें तो विविध भारती की शुरुआत 3 अक्टूबर सन 1957 को शुरू की गई विविध भारती सेवा। इसके माध्यम से फिल्मी गाने, सुगम संगीत और हवा महल जैसे लोकप्रिय कार्यक्रमों ने संगीत के प्रति आम लोगों का नजरिया बदल दिया। हवा महल कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 3 अक्टूबर 1957 को विविध भारती पर हवा महल कार्यक्रम शुरुआत किया गया। ये कार्यक्रम 15 मिनट के हल्के फुल्के रेडियो नाटक और स्किट्स पर आधारित था। इसमें भारतीय लोक कथाओं, सामाजिक विषयों और रोजमर्रा की जिंदगी के खट्टे मीठे अनुभवों को नाटकीय और रोचक अंदाज में पेश किया जाता था। 1970 और 1980 के दशक में अपनी लोकप्रियता के चरम पर पहुंच चुके इस कार्यक्रम का 25 अक्टूबर 1972 को 1000वां एपिसोड प्रसारित हुआ था। तो आप जान सकते हैं कि आकाशवाणी का ये सफर इतना लंबा आपके साथ यानी श्रोताओं के साथ के बगैर तो हिट हो ही नहीं सकता। आपकी पसंद ही तो आकाशवाणी के सफर में साथी बनी। हवा महल कार्यक्रम भारतीय रेडियो के स्वर्णिम दौर का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। आकाशवाणी ने भारत के दूर दराज के इलाकों के लोक संगीत को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। वर्तमान में यह 23 भाषाओं और 189 बोलियों में संगीत और अन्य कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहा है। हाल ही में 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उत्तर पूर्व भारत की संगीत विविधता को प्रदर्शित करने के लिए विशेष नॉर्थ ईस्ट म्यूजिक कंसर्ट भी आयोजित किए गए। अब आधुनिक बदलावों की बात करें तो डिजिटल और एप्स में ट्रांजिस्टर्स

शुरू हुआ संगीत का सफर आज मोबाइल ऐप्स यानी न्यूज ऑन एआईआर और डिजिटल प्लेटफॉर्म तक भी पहुंच गया है। नई सिग्नेचर ट्यून प्रतियोगिता रखी गई। अपनी 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आकाशवाणी ने नए युग के अनुरूप कार्यक्रमों के लिए एक नई सिग्नेचर ट्यून और जिंगल्स बनाने की प्रतियोगिता भी शुरू की। आधुनिक श्रोताओं के लिए अब संगीत और बातचीत को आकाशवाणी पॉडकास्ट के माध्यम से भी उपलब्ध कराया जाता है। आकाशवाणी आज भी अपनी परंपराओं को संजोए हुए है और इसे भारतीय शास्त्रीय संगीत का सच्चा संवाहक माना जा रहा है। तो वही हम आपसे बातें कर रहे थे आकाशवाणी के 90 सालों के सफर की कि संगीत में कैसे कैसे बदलाव हुए, लेकिन आकाशवाणी हमेशा अपने श्रोताओं से जुड़ा रहा। और हम तो यही कहेंगे, आकाशवाणी का ये सफर हमारे साथ यूं ही चलता रहे।

आई मिलन की बेला। इस फिल्म में अभी आपने लता मंगेशकर को सुना। दौर बदलते हैं, वक्त बदलते हैं और बदलता है समाज। आज के भारत में महिलाओं की शक्ति और उनकी भूमिका में एक क्रांतिकारी बदलाव आया है। नारियां, महिलाएं अब केवल समाज का हिस्सा नहीं बल्कि देश के विकास का मुख्य आधार बन चुकी हैं। आज की नारी शक्ति में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे निर्णय लेने की शक्ति। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों से लेकर पंचायत स्तर तक महिलाओं की भागीदारी बड़ी है। राजनीति की बात करें तो संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण और महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे वित्त और रक्षा का कार्यभार संभालकर महिलाओं ने साबित कर दिया कि वो देश की दिशा तय करने में सक्षम है। प्रशासन की बात करें तो आईएएस, आईपीएस और अन्य प्रशासनिक सेवाओं में महिलाओं की संख्या और उनके काम करने के जज्बे ने व्यवस्था में

पारदर्शिता और संवेदनशीलता बढ़ाई है। आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में भी बात कर लेते हैं। आज की महिला सिर्फ नौकरी नहीं कर रही बल्कि नौकरियां दे भी रही है। स्टार्टअप्स की बात करें तो भारत के कई सफल स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न कंपनियों का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं और बहुत सफलता से कर रही हैं। ग्रामीण सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूहों और के माध्यम से गांव की महिलाएं छोटे उद्योगों को वैश्विक पहचान दिला रही हैं। जी हाँ, एनजीओस में इतना काम होता है, इतनी सारी महिलाएं हैं जो गांव की, पंचायत की और आसपास के एरिया की सारी जो लोक कलाएं हैं, लोक संस्कृति हैं, उनको पहचान दिलवा रही हैं और विश्व यानी वैश्विक स्तर पर पहचान दिला रही हैं। इस बारे में बात करते रहेंगे, सुनते हैं, साथ साथ गीत भी सुनते चलते हैं।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत दिलीप मंदिर फिल्म से था और बात चल रही थी महिलाओं की आज की नारी शक्ति की। अब मंगलयान हो या चंद्रयान, इसरो की महिला वैज्ञानिकों ने यह साबित कर दिया कि अंतरिक्ष की ऊंचाइयां भी इनसे दूर नहीं है। स्टेम क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती रुचि नए भारत की आधुनिक सोच को दर्शाती है। डिफेंस की बात करें तो एक समय था जब सेना में महिलाओं की भूमिका सीमित थी, लेकिन आज महिलाएं फाइटर जेट उड़ा रही हैं, सीमाओं पर तैनात हैं और युद्धक भूमिकाओं में अपनी बहादुरी का परिचय दे रही हैं। ओलंपिक हो या विश्व चैंपियनशिप, देश को सबसे ज्यादा गर्व के क्षण महिला खिलाड़ियों ने दिए हैं। जी हां, खेल के मैदान में परचम लहराया है हमारी महिला खिलाड़ियों ने। क्रिकेट से लेकर कुश्ती और बैडमिंटन तक भारतीय बेटियां वैश्विक मंच पर तिरंगा लहरा रही हैं। सामाजिक परिवर्तन की बात करें तो आज की महिलाएं शिक्षा के माध्यम से पुरानी कुरीतियों को चुनौती दे रही हैं। वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं और समाज में समानता, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर खुलकर चर्चा करती हैं। आज की नारी बेचारी नहीं बल्कि शक्तिशाली है। वो अपनी परंपराओं को साथ लेकर आधुनिकता के पथ पर अग्रसर है। जैसा कि कहा जाता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का सम्मान होता है वहां सुख और समृद्धि का वास होता है। आज का भारत इसी मंत्र को हकीकत में बदल रहा है।

0: इस देश में गंगा बहती है, लता मंगेशकर, मुकेश, गीता दत्त और मन्ना डे की आवाज में आपने ये गीत सुना।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

आकाशवाणी FM गोल्ड यानी 100.1 MHz पर कार्यक्रम चल रहा है घर आंगन। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ, आपकी दोस्त राधा पाठक। बातें हमने इतनी सारी की हैं और ढेर सारी बातें हमारी बाकी भी हैं। और दरअसल महिलाएं हैं जो, क्योंकि हमारा ये जो घर आंगन कार्यक्रम है ये खास महिलाओं के लिए है, और हम चाहते भी हैं कि महिलाएं काम करते करते जो दिन भर की थान होती है वो हमारे इस कार्यक्रम के साथ थोड़ा सुकून महसूस करें। हम बहुत सारी चीज़ें लेकर आते हैं अपनी महिला सखियों के लिए, और हम चाहते हैं कि वो ये सारी चीज़ें जान पाएँ और जागरूक रह पाएँ समाज के प्रति। और हम बता दें अपना ईमेल आईडी fmgoldga@gmail.com, इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है, fmgoldga@gmail.com। जी हाँ, आप हमसे रूबरू हो सकते हैं, क्योंकि जो हमारी वार्तालाप है, हमारी बातचीत है, वन वे नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आपका जवाब ईमेल पर आना चाहिए कि आपको क्या लगता है इस कार्यक्रम में और क्या होना चाहिए, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है। तो ये हुई ना हमारी बातचीत का पूरा पूरा जो स्वरूप है वो यही रहना चाहिए। अब बात करेंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म की। आजकल जहाँ देखिए मोबाइल सबके हाथ में है, घर हो तो पति पत्नी सास ससुर दादा दादी नाना नानी मामा मामी चाचा चाची बच्चे भाई बहन सब अलग अलग मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं। जी हाँ, सबके हाथों में मोबाइल है, रील देख रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक, कुछ भी सोशल मीडिया, कोई भी प्लेटफॉर्म पर वो काम कर रहे हैं, लेकिन आपसी बातचीत जो है वो लगभग बंद हो चुकी है। किसी भी रिश्ते में, हर रिश्ते में यही चल रहा है। अब घर की क्या बात करें, आप बाहर निकलिए, आप किसी भी सरकार

अरे वाहन में आइए, मेट्रो से आते हैं तो देखिए मेट्रो में हर व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, स्कूल का स्टूडेंट हो, कॉलेज का स्टूडेंट हो, ऑफिस जाने वाली महिलाएं हो, ऑफिस जाने वाले युवक हो, पुरुष हो, सबके हाथ में मोबाइल है। महिलाएं जो घर में काम कर रही हैं, वो भी काम किया कुकर में सीटी आने वाली है, सीटी जब तक आएगी तब तक चलो मोबाइल देख लेते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना, वो ठीक नहीं है। आज की दुनिया में वो मोबाइल, सोशल मीडिया और लगातार आने वाले नोटिफिकेशन हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन चुके हैं। और अगर चाहते हैं सुकून और शांति और परिवार में आपसी बातचीत बनी रहे, तो ऐसे में डिजिटल उपवास यानी कुछ समय के लिए स्क्रीन और इंटरनेट से दूरी बनानी ही होगी। मानसिक और शारीरिक दोनों के स्वास्थ्य के लिए ये बहुत जरूरी है। लगातार स्क्रीन देखने से दिमाग थक जाता है, डिजिटल उपवास करने से मन को आराम मिलता है और चिंता कम होती है, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता भी बढ़ती है। आप अगर रात में मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी नींद को प्रभावित कर सकता है। स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट नींद के हार्मोन को बाधित करती है। डिजिटल उपवास जिसकी हम बात कर रहे हैं कि डिजिटल उपवास हो, नींद गहरी और बेहतर हो सकती है। यानी आज के ज़माने में जो कहते हैं ना, उपवास बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए, हफ्ते में एक दिन उपवास रहना चाहिए, व्रत रखना चाहिए कि आपका शरीर डिटॉक्स हो जाता है, तो ये डिजिटल उपवास भी ना बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। इससे रिश्तों में सुधार आता है, क्योंकि जब हम स्क्रीन से दूर होते हैं तो परिवार और दोस्तों के साथ वास्तविक बातचीत बढ़ जाती है, रिश्ते मजबूत होते हैं और भावनात्मक जुड़ाव बेहतर होता है। लगातार बैठकर स्क्रीन देखने से आंखों में, गर्दन में, पीठ पर असर पड़ सकता है, तो डिजिटल उपवास से शरीर को तो आराम मिलता ही है, एक्टिव रहने की प्रेरणा भी मिलती है और आसपास आप नजर डाल पाते हैं। अब मेट्रो में आप मेट्रो के सफर का मजा लीजिए ना, गाड़ी में बैठे हैं तो बाहर का मौसम का आनंद लीजिए, लोगों को देखिए, बहुत सारी चीजें हैं सीखने को। क्यों मोबाइल में या स्क्रीन देखनी है? डिजिटल दुनिया से हटकर हम खुद के साथ समय बिता पाते हैं, इसे सोचने, समझने और खुद को बेहतर बनाने का मौका मिलता है। अब ये किया कैसे जाए? बहुत मुश्किल लग रहा है ना, मुश्किल, लेकिन कुछ भी मुश्किल नहीं है। रोजाना कुछ घंटों के लिए फोन से दूरी बना लें, सोने से एक घंटा पहले स्क्रीन बंद कर दें, हफ्ते में एक दिन नो सोशल मीडिया डे रखें, मतलब जरूरी फोन और मैसेज आप देख लीजिए, लेकिन सोशल मीडिया के जो बाकी प्लेटफॉर्म से उनसे दूरी बनाइए। कोशिश कीजिए हफ्ते में एक दिन ऐसा करें, नोटिफिकेशन को सीमित करें। हम ये कह सकते हैं कि डिजिटल उपवास कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक स्मार्ट लाइफस्टाइल चॉइस है। थोड़ी सी दूरी आपको ज्यादा सुकून, बेहतर स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन दे सकती है।

अनुराधा फिल्म में ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में आपने सुना। और अब देखिए, ट्वेल्थ के एग्ज़ाम तो हो ही गए थे, अब तो रिज़ल्ट भी आ चुका है और CUET के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं बच्चों के रिज़ल्ट के बाद। और बच्चों के दिमाग में ये हो गया क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। नीट का एग्ज़ाम भी होने को है, CUET के एग्ज़ाम चल ही रहे हैं, फिर भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि अब हमारा करियर क्या हो, क्योंकि बहुत जद्दोजहद चलती है आपके रिज़ल्ट और आपकी अगली लाइफ के बारे में, क्या आपका करियर होना चाहिए। तो AI में करियर, हम आपको बार बार बताते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में करियर बनाना आज के समय का सबसे स्मार्ट फैसला हो सकता है। ये केवल कोडिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों के लिए भी है। आजकल कुछ ऐसे भी करियर हैं जिन्हें किसी भी स्ट्रीम के जो छात्र हैं वो चुन सकते हैं। डेटा एनालिटिक्स है, AI, डेटा की समझ रखने वालों के लिए इसकी हर क्षेत्र में ज़रूरत है, हर सेक्टर में ज़रूरत है। UI/UX डिज़ाइन, एप्स और वेबसाइट के डिज़ाइन को बेहतर बनाने का काम ये भी कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन और सोशल मीडिया, यूट्यूब, पॉडकास्ट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट एक फुल टाइम करियर बन चुका है। और AI की जो हम बात कर रहे हैं उसमें है टेक्निकल और इंजीनियर रोल्स हैं, कोर टेक है, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स हैं, मैकेनिकल के। ये इंजीनियर्स ऐसे एल्गोरिदम और मॉडल बनाते हैं जो डेटा से सीख सकते हैं, इसके लिए पाइथन और मैथ की अच्छी समझ होनी चाहिए। AI डाटा साइंटिस्ट हैं, इनका काम डेटा का विश्लेषण करके भविष्य के रुझानों का पता लगाना है, AI मॉडल को बेहतर बनाना है। AI सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हैं, ये पूरे AI सिस्टम का डिज़ाइन और ढांचा तैयार करते हैं और वो बिजनेस में कैसे काम करेगा ये भी सिखाते हैं। नए ज़माने के जो AI रोल्स हैं, यानी इमर्जिंग रोल्स हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियर ये सबसे नया और चर्चित रोल है। इसमें AI जैसे ChatGPT और भी चीज़ें हैं सही से काम करवाने के लिए सटीक और प्रभावशाली निर्देश प्रॉम्प्ट्स लिखना सिखाया जाता है। इसके लिए कोडिंग से ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग ज़रूरी है। AI एथिसिस्ट यानी नैतिकता विशेषज्ञ, AI पक्षपाती ना हो और नैतिक रूप से सही काम करे ये सुनिश्चित करना इनका ही काम है। फिलॉसफी और लॉ के छात्रों के लिए ये अच्छा क्षेत्र है। AI कंटेंट क्यूरेटर, AI द्वारा बनाए गए कंटेंट की जांच करना और उनसे ह्यूमन टच देना। जी हाँ, ह्यूमन टच भी तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों को सबसे पहले यही चाहिए होता है कि कोई भी करियर हो लेकिन वो हमें कामयाबी के साथ साथ हमें सुकून भी दे सके।

कुदरत फिल्म में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को। और अब देखिए ना, बच्चों की छुट्टियां हो चुकी हैं, अब महिलाएं ये सोच रही हैं, अब देखिए ना महिलाएं इतना काम कर रही हैं कि घर भी देखना है, ऑफिस भी देखना है, और अगर घर भी देखना है, बच्चों की छुट्टियां हो गई तो क्या किया जाए। बच्चे बिजी भी रहे और क्रिएटिविटी भी बने रहे। तो हम महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात लेकर आए हैं कि गर्मियों की छुट्टियों को कैसे प्रोडक्टिव बनाया जाए। गर्मियों की छुट्टियां माँ और बच्चों की बॉन्डिंग के लिए बहुत अच्छा समय होती हैं। इस समय को यादगार और प्रोडक्टिव बनाने के लिए कुछ मजेदार क्रिएटिविटी यानी एक्टिविटीज आप कर सकते हैं, जैसे फायरलेस कुकिंग, बच्चों के साथ मिलकर सैंडविच, फ्रूट चाट, लेमनेड और ओरियो शेक जैसी चीजें बनाएं। क्योंकि फायरलेस है, इसमें बच्चों को खतरा नहीं है कि वो जल सकते हैं, उन्हें किचन की बेसिक समझ हो जाएगी। DIY और क्राफ्ट, पुराने सामान से कुछ नया बनाना, पेंटिंग या क्ले मॉडलिंग, आप घर की एक दीवार को उनके आर्ट वर्क के लिए रख सकते हैं कि बच्चे आप जो बनाओगे ना इस दीवार पे लगाया जाएगा। बनाइए, लगाइए अपनी क्रिएटिविटी और बनाइए। किचन गार्डनिंग कर सकते हैं, छोटे गमलों में धनिया, पुदीना और एलोवेरा लगाना सिखाएं, बच्चों को पानी देने की जिम्मेदारी दें, धूप में रखने की जिम्मेदारी दें, बच्चों को गार्डनिंग की समझ आएगी। बोर्ड गेम्स खेल सकते हैं, स्क्रीन फ्री मनोरंजन कर सकते हैं, मतलब कि जैसे लूडो, कैरम, चेस, बिजनेस जैसे खेल दोपहर के समय के लिए बेहतरीन है। ये मत सोचिएगा कि बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिया या टीवी में लगा दिया, स्क्रीन फ्री मनोरंजन बहुत जरूरी है आज के समय में। कहानी सुनाना, अपने बचपन की कहानियां, दादी नानी की कहानियां सुनाएं, यानी उसी समय को वापस ले आएं जो बीत चुका है। हमारी दादी नानी हमें कहानियां सुनाती थी ना, कब कहाँ इतना स्क्रीन देखते थे, होता ही नहीं था कुछ भी, तो वो समय आना चाहिए। इससे बॉन्डिंग बढ़ती है, बच्चे को भाषा का ज्ञान होता है, उसकी कल्पना शक्ति बढ़ती है। घर को ठंडा और खुशनुमा रखें, इंडोर पिकनिक मनाएं, लिविंग रूम में चादर बिछाकर पिकनिक जैसा माहौल बनाएं, साथ में पसंदीदा स्नैक्स बनाएं और बच्चों के साथ गप्पे मारे हो ढेर सारे, पानी का खेल खेलें। शाम के समय बालकनी, आंगन में टब में पानी भरकर छोटे छोटे बच्चों के साथ मस्ती की जा सकती है। आजकल तो बड़े बड़े जो ये जो पानी में टब आ रहे हैं जिसमें बच्चे आप आराम से खूब एंजॉय करते हैं। स्किल डेवलपमेंट भी होती है, अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो कोडिंग, पेंटिंग या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी सिखाया जा सकता है। ऑनलाइन क्लासेस भी हैं और ऑफलाइन भी हैं। बच्चों के लिए एक डेली रूटीन जरूर बनाना चाहिए जिसमें जल्दी उठना, थोड़ा होमवर्क करना, थोड़ा खेल का समय, इससे वो अनुशासित रहेंगे और बोर भी नहीं होंगे। समर कैंप भी एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, और ट्रेन में कहीं घुमाइए, ट्रेन का मजा लीजिए और बच्चों को सफर का आनंद ले कहीं घूमने निकल जाइए।

गीत आप सुन रहे हैं आशा भोसले की आवाज में अनोखा रिश्ता फिल्म से। अब गर्मियों की बात चली गई है तो गर्मियों में घर को ठंडा रखना भी एक बहुत बड़ी अब देखिए बच्चे घर में रहेंगे, आप भी घर में हैं, अब घर को ठंडा कैसे रखा जाए? पूरा टाइम एसी चलाना ना तो सेहत के लिए अच्छा है ना कि आपकी आर्थिक स्थिति के लिए। बढ़ती गर्मी से आप परेशान हैं, तपती धूप में कहीं बाहर जाना आपके लिए बहुत मुश्किल है, तो दिन भर से तपे घर में चैन की सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं? तेज धूप के कारण दीवारें भी तप रही हैं, घर का तापमान बढ़ रहा है, तो ऐसा करते हैं घर की दीवारों पर जिन पर सीधी धूप पड़ती है उन्हें हरे नेट से ढक दें या शेड लगवा दें। दीवारों को धूप में गर्म नहीं होने देना है ताकि घर का तापमान न बढ़ पाए। घर की बाहरी दीवारों पर हीट प्रूफ पेंट करवाने से भी तापमान कम हो सकता है। बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स हैं जिससे आप गर्मी में घर को ठंडा रख सकती हैं। गर्मी के दिनों में भारी पर्दे लगवाने चाहिए। गहरे रंग के पर्दे तेज सनलाइट को गर्म हवाओं को कमरे में आने नहीं देते जिससे कमरे का तापमान कम रहता है। घर के अंदर इंडोर प्लांट्स भी लगाइए, पौधे के अंदर तापमान को कम करने में मदद भी मिलती है। ठंडे पानी से दो बार घर में पोंछा भी लगाना चाहिए, सफाई करनी चाहिए। घर साफ रहता है तो मौसम और तापमान कमरे का ना ठीक रहता है, आपको भी अच्छा लगता है। साधारण पीले बल्ब जो है बहुत गर्मी पैदा करते हैं, एलईडी बल्ब का इस्तेमाल कीजिए, ये ठंडे होते हैं। सूती कपड़ों का प्रयोग कीजिए, बेडशीट तकिए कवर सिर्फ सूती ही करें। छोटी छोटी टिप्स हैं जिससे आप इस्तेमाल करके घर को ठंडा रख सकती हैं और खुश रह सकते हैं।

0: रफूचक्कर फिल्म में ये आपने सुना आशा भोसले और उषा मंगेशकर को। कार्यक्रम घर आंगन से अब राधा पाठक को दे इजाजत, नमस्कार।
1: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन। आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं।
2: इटली के विभिन्न हिस्सों से आए भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए यह अवसर किसी ऐतिहासिक पल से कम नहीं है। शिक्षा, कृषि, डेयरी फार्मिंग, रियल एस्टेट और अन्य व्यवसायिक क्षेत्रों से जुड़े ये लोग दोनों मित्र देशों के शीर्ष नेताओं के बीच होने वाली इस उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक से अपनी अपनी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं लेकर आए हैं। भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन नागरिक भी भारत में उभरते व्यावसायिक अवसरों को लेकर उत्साहित हैं। आकाशवाणी के लिए रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हिस्सा ले रहे हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह परियोजना इस मार्ग पर लोगों की भीड़भाड़ कम करने और समय की पाबंदी तथा परिचालन दक्षता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ लाल रोजामा ने जनता और निर्वाचन आयोग की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: तो साथियों, आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम किस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म राजकुमार कोहली द्वारा निर्देशित 1969 की एक भारतीय हिंदी हॉरर फिल्म थी। इसमें अभिनय किया था सुनील दत्त, संजीव कुमार, जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद मेहरा, रीना रॉय, रेखा, नीतू सिंह और बिंदिया गोस्वामी जैसे बड़े सितारों ने। फिल्म की कहानी एक ऐसे राक्षस के इर्द गिर्द घूमती है जो कि लाल दुल्हन के परिधान पहने हुए महिलाओं का अपहरण और हत्या करता है। दोस्तों, जानी दुश्मन 25 मई 1969 को विश्व स्तर पर रिलीज हुई थी और ये फिल्म समीक्षकों से इसे मुख्य रूप से सकारात्मक समीक्षाएं मिली थी। साथियों, व्यावसायिक रूप से देखा जाए तो इसे बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था।

दोस्तों, ये अपने समय की बहुत ही सुपर डुपर हिट फिल्म थी। और बात करें इस फिल्म के अभिनय की, तो सुनील दत्त थे लखन के रूप में, संजीव कुमार थे ठाकुर के रूप में, जितेंद्र अमर के रूप में थे, शत्रुघ्न सिन्हा शेरा के रूप में, स्पेक्टर के रूप में थे विनोद मेहरा, चंपा के रूप में थी रेखा, रेशमा के किरदार में थी रीना रॉय, और लाखन की छोटी बहन के रूप में थी गौरी नीतू सिंह। योगिता बाली ठाकुर की दुल्हन के रूप में थी, शांति के रूप में बिंदिया गोस्वामी थी जो कि शेरा की छोटी बहन बनी थी, सारिका बिंदिया के रूप में थी, विक्रम मंकादर शंकर के रूप में थे और प्रेमनाथ पुजारी के रूप में था। दुल्हन जिसका अपहरण होता है और वो जो अपहरण करते हैं उसके रूप में थे अमरीश पुरी, रजा मुराद ठाकुर ज्वाला प्रसाद के रूप में थे, शक्ति कपूर एक दुल्हन के साथ घोड़े पर सवार व्यक्ति के रूप में थे, मैक मोहन टैक्सी ड्राइवर के रूप में था और जगदीप नाथुराम के रूप में थे।

दोस्तों, अब लेते हैं आपके संदेश जो कि आपने हमें बड़े प्यार से भेजे हैं। सबसे पहला संदेश आता है हमारे पास वीरम गांव गुजरात, अजीत भावसार, प्रमिला भावसार जी का। अगला संदेश जो हमारे पास आया है वो आया है पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से, अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और केथल हरियाणा से मधु नायक जी का। और अगला संदेश जो आया है हमारे पास गांव फरासी जिला हिसार से, राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी जी का। इन्होंने भी सही फिल्म पहचानी है और आप सभी ने हमें फिल्म को पहचान कर संदेश भेजे हैं। अगला संदेश है हमारे पास नलेश्वर नगर नरवील महाराष्ट्र से, पीएस नाकर, निर्मला नुहावकर, विशाल नुहावकर जी का। और अगला जो संदेश आया है वो आया है हमारे पास पीटीआई संसद मार्ग से, अनिल मोहन जी का। और हमारे पास जो हमारा अगला संदेश है वो है बागपत उत्तर प्रदेश से, संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया का। तो लीजिए सुनते हैं इसी फिल्म का अगला गीत।

दोस्तों इस फिल्म के अधिकांश जो दृश्य थे वो जम्मू और कश्मीर के भारतीय क्षेत्र उधमपुर जिले के चेनानी और पटनी टॉप हिल स्टेशनों जैसे स्थानों पर फिल्माए गए थे।

0: शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा, सतत विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में नॉर्डिक देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के अलावा डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने आज ओस्लो में आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टन म्योल फ्रॉस्टॉटिर और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। और जानकारी के लिए बात करते हैं नॉर्वे में मौजूद हमारी संवाददाता संगीता गोडबोले से। संगीता, नॉर्वे के साथ साझेदारी भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है?
1: कनकलता, नॉर्डिक देश अपनी 90% से अधिक बिजली ग्रीन स्रोतों से उत्पन्न करते हैं। भारत का अपना एक महत्वाकांक्षी ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्य है। इसी विषय में नॉर्डिक तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने में हो जाएगा। हरित भागीदारी की दिशा में उठाया गया सबसे ठोस कदम कल था। इससे नॉर्वेजियन कंपनियां हरित हाइड्रोजन, नीली अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में नवाचार और निवेश कर सकेंगी। भारत एक डेडिकेटेड पवेलियन के साथ नॉर शिपिंग 2027 में भी भाग लेगा। कल व्यापार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% करने का विजन साझा किया है।
0: धन्यवाद संगीता। भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे।
2: इस लेख में दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस बात का जिक्र किया है कि इस समय जब संयुक्त राष्ट्र अपनी 80वीं वर्षगांठ मना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद का महत्व और भी अधिक स्पष्ट हो गया है। दोनों नेताओं ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभु समानता पर आधारित नियमों से संचालित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ने दशकों तक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है। लेख में ये भी बताया गया है कि एक प्रमुख विकास इंजन और ग्लोबल साउथ की जिम्मेदार आवाज के तौर पर निकट भविष्य के लिए भारत के दो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। पहला 2047 तक विकसित देश का दर्जा हासिल करना और दूसरा 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का ये दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के व्यक्तिगत निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं। और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता सुपर्णा भाटिया से, जो इस समय रोम में मौजूद है। सुपर्णा, प्रधानमंत्री का आज इटली में क्या क्या कार्यक्रम है?
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुंचने वाले हैं, जो उनके 5 देशों के दौरे का अंतिम चरण है। इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में है। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत है और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। मुझे यहाँ भारतीय प्रवासी समुदाय से बात करने का भी अवसर मिला, जो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित हैं।
0: जानकारी के लिए धन्यवाद सुपर्णा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग से मुलाकात के लिए चीन की यात्रा पर हैं। क्रेमलिन के अनुसार दोनों नेता आर्थिक सहयोग और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये यात्रा चीन रूस मैत्री संधि के

0: 25वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित की गई है। ये वार्ताएं ऐसे समय में हो रही हैं जब वैश्विक भू राजनीतिक तनावों के बीच चीन, अमेरिका और रूस दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। यूक्रेन संघर्ष को लेकर पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और रूसी तेल तथा गैस का प्रमुख खरीदार बना हुआ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। एक रिपोर्ट।
1: न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और राह चलते लोगों पर कुत्तों की हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि यह समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: भारतीय रेलवे ने जम्मू श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा खंड पर 238 करोड़ रुपए की लागत से महत्वपूर्ण ढलान स्थिरीकरण, सुरंग पुनर्निर्माण और पुल संरक्षण कार्यों को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये कार्य देश के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण भूभागों में सुरक्षित और विश्वसनीय संपर्क सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चिंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट को 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर पर क्षमता को बढ़ाएगा और रेल सेवाओं की समय की पाबंदी और ऑपरेशन लचीलेपन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को स्मार्ट पावर का एक सटीक उदाहरण बताया है। वे आज राष्ट्रीय राजधानी में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज में सुरक्षा से समृद्धि सतत राष्ट्रीय विकास के लिए स्मार्ट पावर विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे।
2: ऑपरेशन सिंदूर डिलीवर्ड मिलिट्री प्रिसीशन इन्फॉर्मेशन कंट्रोल।
3: ऑपरेशन सिंदूर ने सटीकता, सूचना नियंत्रण, कूटनीतिक संकेत और आर्थिक संकल्प को सुसंगत राष्ट्रीय कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया। इसने दुश्मन पर गहरा प्रहार किया और आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया तथा एक लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक धारणा को भी तोड़ दिया। सेना ने फिर इसके बाद सोच समझ कर विवेक सम्मत ढंग से अपनी कार्रवाई रोक दी। 88 घंटे चला ऑपरेशन सिंदूर स्मार्ट पावर का सबसे पूर्ण और सटीक उदाहरण था।
2: स्मार्ट पावर इन इट्स मोस्ट कम्प्लीट एक्सप्रेशन।
0: मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने कहा कि संशोधन प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है क्योंकि अधिकारी सीधे तौर पर मतदाता सूचियों का काम संभालेंगे। उन्होंने अधिकारियों से पूरी ईमानदारी, सटीकता और सतर्कता के साथ काम करने का आग्रह किया ताकि मिजोरम के वास्तविक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रूपए प्रति लीटर है जबकि डीजल की कीमत 91.58 रूपए है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रूपए और डीजल 94.08 रूपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रूपए और डीजल की 96.07 रूपए दर्ज की गई, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रूपए और डीजल की 96.11 रूपए प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और हुर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भुवन चंद्र खंडूरी का आज एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। सेना के पूर्व मेजर जनरल रहे श्री खंडूरी ने दो बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भी रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन

0: को एक अपूर्णीय क्षति बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री खंडूरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @XHIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार और मराठवाड़ा में भी आज ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 5 दिन तक लू चलेगी। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिन के लिए भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार दिन के समय दिल्ली में कुछ स्थानों पर भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। एक रिपोर्ट।
1: विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कल मौसम विभाग के रिज क्षेत्र स्टेशन पर 44.6 डिग्री सेल्सियस, सफदरजंग स्टेशन पर 43.4 डिग्री सेल्सियस, लोदी रोड स्टेशन पर 43.8 डिग्री सेल्सियस और पालम स्टेशन पर 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: उत्तर प्रदेश में अगले सप्ताह भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बांदा 47 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ लगातार दूसरे दिन भी देश का सबसे गर्म स्थान रहा।
2: आज भी राज्य भर में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। बुंदेलखंड और अन्य इलाके तेज धूप और झुलसा देने वाली हवाओं की चपेट में हैं। धीमी हवा के कारण उमस और बढ़ गई है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। वहीं राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग ने 33 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की है। राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में अगले सप्ताह तक लू के हालात बने रहेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धरती माँ के लिए पूरी मानवता एक परिवार है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संपूर्ण विश्व एक घर की तरह है, जहां हर संस्कृति का अपना महत्व और सम्मान है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 136 अंक की वृद्धि के साथ 75,451, जबकि निफ्टी 42 अंक बढ़कर 23,692 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व आदेश को वापस लेने से इनकार। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:30 हुए हैं। वक्त है कार्यक्रम एक ही कलाकार का। श्रोताओं, एक ही कलाकार कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ, आपकी होस्ट और दोस्त रिया प्रकाश। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज जिस कलाकार के बारे में हम बात करेंगे, वो भारतीय सिनेमा की महानतम अभिनेत्रियों में से एक थीं। अपनी बेमिसाल सुंदरता, मनमोहक मुस्कान और बेहतरीन अभिनय के लिए उन्हें वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा और द ब्यूटी ऑफ ट्रेजेडी कहा जाता था। तो चलिए, इतनी जानकारियों के बाद तो आप समझ ही गए होंगे कि किस कलाकार के बारे में बातें हो रही है। तो आइए, आप सभी के लिए पेश है ये गीत। गीत सुनकर गेस कीजिए हमारे आज के इस कलाकार को।

श्रोताओं, आप सबके मेल्स हम तक पहुंच चुके हैं। आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो आज की जो हमारी कलाकार हैं वो कोई और नहीं बल्कि मधुबाला हैं। जी हाँ, मधुबाला जी का जन्म 14 फरवरी 1933 में दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में जन्मी और पली बड़ी मधुबाला 8 साल की उम्र में अपने परिवार के साथ बॉम्बे चली गई और कुछ ही समय बाद उन्होंने फिल्मों में छोटी भूमिकाएं निभाना शुरू कर दिया, जिसकी शुरुआत 1942 में आई बसंत से हुई। लेकिन बतौर अभिनेत्री उन्होंने 1947 में नीलकमल में काम किया, जिसे फिल्म मेकर केदार शर्मा ने बनाई थी। इसके बाद उन्होंने 1947 में दिल की रानी और 1948 में अमर प्रेम में काम किया। ये सभी फिल्में उन्होंने द शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर के साथ की। 1950 के दशक में देश की सबसे अधिक कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में से एक मधुबाला ने 2 दशक लंबे करियर में 70 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें कॉमेडी फिल्मों से लेकर ऐतिहासिक नाटक तक शामिल थे। छोटी उम्र से ही फिल्मों की शौकीन होने के कारण वह अक्सर अपनी माँ के लिए अपने पसंदीदा दृश्यों का अभिनय करती थीं और अपना समय नृत्य करने और फिल्मी किरदारों की नकल करने में बिताती थीं।

श्रोताओं, आप में से कई सारे लोग मधुबाला जी का असली नाम शायद ही जानते होंगे। उनका असली नाम मधुबाला नहीं बल्कि मुमताज जहां बेगम दहलवी था। बतौर अभिनेत्री फिल्मी करियर की शुरुआत करने पर उनका असली नाम बदलकर स्टेज नेम मधुबाला रख दिया गया। मधुबाला जी ने अपना अधिकांश बचपन दिल्ली में बिताया। उनके पिता की रूढ़िवादी सोच के कारण उनकी छोटी बहन जाहिदा को छोड़कर मधुबाला एवं उनकी अन्य बहनें कभी स्कूल नहीं गईं। फिर भी मधुबाला ने अपने पिता के मार्गदर्शन में उर्दू, हिंदी एवं पश्तो सीखी। अपने पिता की आर्थिक मदद करने के लिए 7 वर्षीय मधुबाला ने ऑल इंडिया रेडियो में काम करना शुरू किया, जहां वह ख्वाजा खुर्शीद अनवर की रचनाएं गाती थी। उन्होंने वहां कई महीनों तक काम किया और बॉम्बे में बॉम्बे टॉक स्टूडियो के महाप्रबंधक राय बहादुर चुन्नीलाल से परिचित हुई।

जिन्होंने उन्हें 1942 में रिलीज हुई फिल्म बसंत में बतौर बाल कलाकार के रूप में काम करने का मौका दिया। श्रोताओ, मधुबाला की प्रमुख फिल्मों में 1949 में आई फिल्म महल, 1951 की फिल्म तराना, मिस्टर एंड मिसेस पचपन जो 1955 में रिलीज हुई थी, 1958 की फिल्म हावड़ा ब्रिज, 1960 की फिल्म बरसात की रात, काला पानी एवं सबसे प्रतिष्ठित फिल्म मुगले आजम शामिल हैं। 1949 में आई फर्स्ट क्लासिकल हॉरर फिल्म महल जब रिलीज हुई तब उसमें बेहतरीन अभिनय के कारण मधुबाला जी रातों रात सुपरस्टार बन गई। फिल्म ने तो बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचा ही, साथ ही साथ मधुबाला जी को एक नई पहचान भी दे दी।

श्रोताओं, 1960 में रिलीज हुई के आसिफ द्वारा निर्देशित फिल्म मुगले आजम में मधुबाला जी का अभिनय विशेष उल्लेखनीय है। इस फिल्म में सिर्फ उनका अभिनय ही नहीं बल्कि कला के प्रति समर्पण भी देखने को मिलता है। इसमें अनारकली की भूमिका उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही। फिल्म के रिलीज होने के बाद फिल्म समीक्षकों को तथा दर्शकों को भी ये मेहनत और लगन साफ साफ दिखाई पड़ी। असल में ये मधुबाला और इनके ऑपोजिट दिलीप कुमार साहब की मेहनत ही थी जिसने इस फिल्म को सफलता के चरम पर पहुंचाया। इस फिल्म के लिए मधुबाला जी को फिल्मफेयर अवार्ड के लिए भी नामित किया गया। मधुबाला जी का लगातार गिरता हुआ स्वास्थ्य उन्हें अभिनय करने से रोक रहा था, लेकिन वो रुकी नहीं। उन्होंने इस फिल्म को पूरा करने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। फिल्म के निर्देशक वास्तविकता लाना चाहते थे। वे मधुबाला की बीमारी से भी अनजान थे, इसलिए उन्होंने शूटिंग के लिए असली जंजीरों का प्रयोग किया। नतीजा ये निकला कि फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म की लोकप्रियता के वजह से इस फिल्म को 2004 में पुनः रंग भर के पूरी दुनिया में प्रदर्शित किया गया।

श्रोताओं, अगर बात करें मधुबाला जी के पर्सनल लाइफ की, तो आपको बता दें कि 1951 में आई फिल्म तराना के सेट पर दिलीप कुमार और मधुबाला जी की मुलाकात हुई और उन्हें एक दूसरे से प्रेम हो गया। वे करीब 9 साल तक एक दूसरे के साथ गहरे रिश्ते में रहे। इस जोड़ी ने तराना, संग दिल, अमर और मुगले आजम जैसी कई फिल्मों में साथ काम किया। मधुबाला और दिलीप कुमार जी की प्रेम कहानी भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे चर्चित रही। जैसा कि हमने बताया कि ये रिश्ता लगभग 9 साल तक चला, जो अंततः पारिवारिक और व्यक्तिगत अहम की टकराहट के कारण अधूरा रह गया।

श्रोताओं, दिलीप कुमार से रिश्ता टूटने के बाद मधुबाला जी ने 1960 में किशोर कुमार से शादी कर ली, लेकिन ये रिश्ता एक बेहद दुखद और भावनात्मक रिश्ता था। मधुबाला जी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट VCD नाम जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित थी, जिसे आम बोलचाल में दिल में छेद होना कहते हैं। इस कारण से उन्हें बेहद तकलीफ होती थी तथा सांस लेने में परेशानी होती थी। उस दौर में इस बीमारी का इलाज ना होने के कारण महज 36 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पर आज भी मधुबाला जी हमारे दिल में बसती हैं। उनकी मासूमियत, खूबसूरती और टैलेंट जो हमने फिल्मों में देखी है, वो आज भी हमारे दिल के बेहद करीब है।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 3 बजे हैं, आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: सबदंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं उमंग कार्यक्रम में।
0: और मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी और बेबी पूजा मलिक जी ने।
2: शिक्षा जितनी रोचक होगी सीखना भी उतना ही रोचक और मनोरंजक होगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
0: नमस्ते।
2: उमंग कार्यक्रम में कहानी जुर्माना सुनी, कहानी पसंद आई। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जी पर केंद्रित कार्यक्रम बेहद पसंद आया। कार्यक्रम प्रस्तुति ने दिल जीत लिया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। उमंग कार्यक्रम का हर एपिसोड जरूर सुनते हैं। ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है। कहानी लालची कुत्ता, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी पर केंद्रित मेरी माँ एवं सम्राट अशोक पर प्रसारित कार्यक्रम सुने और पसंद आए। देश विदेश की जानकारी के साथ ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
2: साथ ही साथ हमें संदेश प्राप्त हुआ है जालंधर से संदीप कौर, प्रभा कौर और राधिका कौर।
0: और डोंडिया खेड़ा से प्रभा जटोलिया ने लिखा है चेतक कविता बहुत अच्छी लगी, आपको बधाई।
2: चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा लिखते हैं, ये भी जानिए के तहत उड़ान का इतिहास और कल्पना चावला पर जानकारी बेहद अच्छी लगी। आज का कार्यक्रम दिल छू गया। परीक्षा कहानी बहुत अच्छी लगी। विमलेश चौधरी जी और अजीत होरो जी को बहुत बहुत बधाई।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है दिल्ली से रेशमा अंसारी, शकीला अंसारी और सईद अंसारी जी का। और साथ ही साथ बागपत से सुंदर और सुंदरी और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का। धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए।
2: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए करते हैं शुरुआत एक कविता से।
0: श्रोताओं अंदाजा जरूर लगाइएगा कि यह कविता किस विषय पर है। आइए सुनते हैं कविता।
2: घने पत्तों की छाया गहरी, जंगलों की श्रृंखला घनेरी, प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत।
0: प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत। श्रोताओं आपने अंदाजा जरूर लगा लिया होगा कि हम एक ऐसे जंगल या वन की बात कर रहे हैं जहां अक्सर वर्षा होती रहती है। तो विमलेश जी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
2: जी अजीत जी, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी समुद्र की, आज हम चर्चा करेंगे ऐसे वनों की जहां वर्षा होती रहती है, जिन्हें हम वर्षा वन कहते हैं। अजीत जी, अब ये सवाल उठता है कि वर्षा वन किसे कहते हैं या दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा क्या है?
0: जी विमलेश जी, देखिए तकनीकी रूप से वर्षा वन या रेन फॉरेस्ट उसे कहते हैं जहां साल भर बहुत अधिक वर्षा होती रहती है
2: जी,
0: और जहां हर समय नमी पाई जाती है और साथ ही साथ घने सदाबहार पेड़ पौधों के साथ वन्य जीवन भी बहुत ही समृद्ध होता है
2: जी। एक बात और जोड़ दूं इस सूचना में कि यहां वर्षा सालाना औसतन 70 से 80 इंच तक होती है। पृथ्वी के कई वर्षा वन तो ऐसे भी हैं जहां साल भर लगातार वर्षा होती रहती है, कभी कभी ही रुकती है।
0: लेकिन एक और प्रश्न है विमलेश जी मेरे मन में कि वर्षा वनों में इतनी बारिश क्यों होती है, अन्य जगहों पर क्यों नहीं होती?
2: श्रोताओं को बता दें कि इसकी वजह है वर्षा वनों का भूमध्य रेखा या इक्वेटर के पास होना।
0: तो जरा श्रोताओं को बताइए ना कि इससे फर्क क्या पड़ता है?
2: फर्क ये पड़ता है कि भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में सूरज की किरणें इन क्षेत्रों पर सीधी पड़ती हैं
0: जी,
2: जिससे भूमि और जल दोनों बहुत गर्म हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं इससे क्या होता है।
0: तो इससे होता यह है कि इस क्षेत्र में भाप बहुत अधिक बनती है, समुद्रों और नदियों से बहुत अधिक भाप बनती है जो भाप आकाश में जाकर बादल बनाती है
2: जी।
0: और जब बादल भारी हो जाते हैं तो वर्षा होती है, इसीलिए इस क्षेत्र में गर्मी और नमी के कारण वर्षा बहुत अधिक होती है।
2: लेकिन श्रोताओ जरूरी नहीं है कि सभी वर्षा वन भूमध्य रेखा के पास ही हों, इसके अलग अलग कारण हैं, लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षा वन सबसे अधिक भूमध्य रेखा या पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षा वन सबसे अधिक भूमध्य रेखा यानी पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। आइए अब जानते हैं वर्षा वनों की और कुछ रोचक बातें।
0: तो श्रोताओ एक बड़ी रोचक बात है वर्षा वनों के बारे में, और वो ये है कि समुद्र के बाद वर्षा वनों को धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है
2: जी।
0: ऐसा इसलिए कि सदाबहार पेड़ पौधों के कारण ये वन भारी मात्रा में प्राणवायु यानी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसके कारण हम सुगमता से सांस ले पाते हैं, वर्षा बंद तो क्या, हमें पृथ्वी की सारी वनस्पतियों के प्रति हमेशा आभारी होना चाहिए।
2: जी, यही कारण है अजीत जी के चारों वेदों और पुराणों में वनस्पति की स्तुति की गई है। उन्हें नमन किया गया है। पुराणों में विशेषकर पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वृक्षारोपण को पुनीत कार्य बताया गया है।
0: जी।
2: और इससे पूर्व भी आदि मानव जनजातियां प्रकृति की पूजा करती रही हैं। हड़प्पा संस्कृति में भी वृक्षों को विशेष आदर दिया गया है। चलिए श्रोताओं, अब जानते हैं अजीत जी से वर्षा वनों की एक और बहुत रोचक बात।
0: जी विमृषि, श्रोताओं, एक और रोचक बात वर्षा वनों की ये है कि ये जैव और वनस्पति विविधता के अद्भुत भंडार हैं। यानी जितने पेड़ पौधे, जीव जंतु और अनोखे सूक्ष्म जीव इन वर्षा वनों में पाए जाते हैं, उतने कहीं और नहीं पाए जाते।
2: जी।
0: तो अब एक और रोचक बात जानते हैं विमलेश जी से।
2: जी श्रोताओं, आपने ऊंचे से ऊंचे पेड़ देखे होंगे, लेकिन वर्षा वनों के पेड़ों की ऊंचाई का तो कहना ही क्या। कुछ वर्षा वनों के पेड़ 40 से 60 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। और हाँ,

0: पृथ्वी के तापमान और जलवायु को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं।
1: तो श्रोताओं, ये थी सामान्य जानकारी वर्षा वनों की। श्रोताओं, वर्षा वन तो क्या, सभी वनों का यही संदेश है कि हमें ना काटो
0: जी,
1: जितना हो सकता है पेड़ लगाओ, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें शुद्ध हवा के लिए और फिर सांस लेने के लिए भी तरसना होगा।
0: जी हाँ, कल नहीं परसों नहीं, लेकिन आज ही अवसर है संभलने का और पेड़ों को बचाने का। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
1: तो आज का प्रश्न है, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लें।
0: अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
1: 8800440559 यानी हमारे IVRS नंबर और audio@cit.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक प्यारे डॉगी की रोचक कहानी है। वो एक पेड़ के नीचे सो गया था और जब जगा तो उसने देखा कि उसका सारा शरीर बैंगनी रंग का हो गया है। लेकिन क्यों, आइए जानते हैं एक मजेदार कार्यक्रम के माध्यम से।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
2: जोजो एक सफेद कुत्ता था। वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था।

0: वो जग गया।
1: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
0: उसने देखा एक बादल को आकाश में धीरे धीरे चलते हुए।
1: बादल बादल, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
2: नहीं, मैं तो सफेद हूं।
0: बादल हट गया। जोजो ने ऊपर सूरज को देखा।
1: सूरज सूरज, क्या तुमने मुझे दिए बैंगनी धब्बे?
2: नहीं, मैं तो पीला हूं।
1: कौवे कौवे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं नहीं, मैं तो काला हूं। गुब्बारे गुब्बारे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
2: नहीं, मैं तो लाल हूं।
1: घास घास, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
3: नहीं, मैं तो हरी हूं।
0: बेचारा जोजो।
1: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? आहा, तो वो जामुन का पेड़ था।
4: तो बच्चों, सुना आपने? अब जरा याद कीजिए कि जोजो किस किस के पास गया

0: और कुछ फलों के नाम लिखिए और उनका रंग बताइए। बैंगनी जोजो, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक तनु गुप्ता तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और साथ ही हमारे ईमेल पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है audio@cieet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। बैंगनी जोजो, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम। श्रोताओं, और प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री।
1: इस कार्यक्रम में महान पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के जीवन और पर्यावरण बचाने में उनके प्रसिद्ध अभियान चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है। ये कार्यक्रम हमें उत्तराखंड के रमणीक राज्य में ले चलता है और वहाँ की पर्वतीय संस्कृति की झलक भी प्रस्तुत करता है।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी एक महान पर्यावरण नेत्री। भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
1: लाटा गांव के ग्रामीण खेती बाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
0: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
2: मारो, मारो, ठीक से निशाना लगाओ।
3: नहीं, बार भी नहीं लगी।

0: पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
1: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
0: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
1: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
2: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
3: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
2: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
4: लेकिन मेरा आदमी तो अभी काम ही पे नहीं जाता।
2: आप तो काम करती है ना?
4: हाँ मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
2: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
0: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है, चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गांव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
1: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगू का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
0: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांवों के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
1: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
0: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थी। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
1: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
5: गौरमा, गौरमा,
2: क्या बात है चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहां से आ रही हो?
5: गौरमा,

0: वो लोग आ रहे हैं।
1: कौन लोग आ रहे हैं?
0: अरे कहाँ आ रहे हैं, कुछ तो कहो।
2: गौरमा,
0: हाँ?
2: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
0: क्या?
2: हाँ गौरमा, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ, रस्सियाँ और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके, उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
1: अच्छा, तो ये बात है। बहनों, चलो हम सब तैयार हो जाएं।
3: बिल्कुल,
1: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
4: हाँ, हम सब तैयार हैं।
5: किसी भी हाल में जंगल कटने
3: नहीं कटने देंगे।
5: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
6: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ऊंच था।
1: ये है जंगल के उपकार,
7: मिट्टी पानी और बयान।
1: मिट्टी पानी और बयान।
8: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
3: अरे क्या कर रहे हो? मुंह के ताक रहे हो? बजाओ शुरू। अरे भाई कौन है? रुको, इस चल जाएंगे पहले से।
1: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे, जिस जंगल ने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म आनी चाहिए तुझे।
9: सुनो, आगे बढ़ो।
3: अरे कहाँ से?
9: दो मिनट की बातों में बताओ। मैंने तुम्हें पेश की थी, पेश की इस काम के लिए। बोलो शुरू।
3: चिपक जाएंगे, ऐसा ही होने देंगे हम।
1: आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम। एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे आज।
5: नहीं लगाने देंगे।
1: बहनों, आगे बढ़कर चिपक जाओ पेड़ों से।
3: हाँ, चिपक जाएंगे।
9: ठीक है, तो वहाँ चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
6: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भाग कर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
8: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
9: ठीक है, तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
6: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में ये आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
8: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
6: जुलाई सन 1991 में

0: 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
1: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
2: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहाँ से हमें फल, फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
0: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था, जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार बाबला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा प्रवीण शर्मा और गीतांजलि। आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो। निर्माण सहायक कुसुम लता। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी। आशा है श्रोताओं, यह कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।

0: हमारे साथ हैं मोहतरम जनाब नौशाद आलम साहब, जो पेश कर रहे हैं साइंस नामा।
1: खला हमेशा से इंसान के लिए हैरत और तजस्सुस का एक वसी मैदान रहा है, जहां हर नई दरियाफ्त हमें कायनात के मजीद करीब ले जाती है। इंसान ने कदीम ज़माने से ही सितारों और सैारों को देखकर यह सवाल उठाया कि क्या हम इस वसी कायनात में अकेले हैं या कहीं और भी ज़िंदगी मौजूद है। आज के जदीद दौर में साइंसदान जदीद दूरबीनों और खलाई मिशंस के ज़रिए इस सवाल का जवाब तलाश करने में मसरूफ़ हैं। खुसूसन सैारा मरीख तहकीक का मरकज़ बना हुआ है, क्योंकि इसकी कुछ खसूसियात ज़मीन से मिलती जुलती हैं। हालिया साइंसी तहकीक से ये इशारे मिले हैं कि मरीख की सतह के नीचे पानी के ज़खायर मौजूद हो सकते हैं, जो ज़िंदगी के इम्कानात को तकवीत देते हैं। इसी वजह से साइंसदान ऐसे सैारों की तलाश भी कर रहे हैं जिन्हें काबिल रिहाइश कहा जाता है, यानी जहां ज़िंदगी के लिए साजगार माहौल हो। नई टेक्नोलॉजी और खलाई तहकीक ने इस मैदान में गैर मामूली तरक्की की है, जिसके नतीजे में हम दूर दराज कहकशाओं तक भी मालूमात हासिल कर रहे हैं। दुनिया भर की खलाई एजेंसियां मुस्तकबल में इंसान को मरीख तक पहुंचाने के मंसूबों पर काम कर रही हैं। साइंसदान अब ऐसे सैारों की तलाश में हैं जो ज़मीन जैसे हों, जहाँ ज़िंदगी मुमकिन हो। सोचिए, वह दिन दूर नहीं जब इंसान किसी और सैारे पर रिहाइश इख्तियार करेगा। ये कोशिशें सिर्फ साइंसी कामयाबी ही नहीं, बल्कि इंसानी हिम्मत, जस्तजू और इल्म की ताकत की अक्कासी भी करती हैं। यकीनन वह वक्त शायद ज़्यादा दूर नहीं जब इंसान ज़मीन के अलावा किसी और सैारे पर कदम रखेगा या हत्ता के वहाँ रिहाइश इख्तियार करेगा। ये तमाम हकायक हमें ये सबक देते हैं कि इंसान की तलाश और सीखने की ख्वाहिश की कोई हद नहीं, और यही जस्तजू हमें नई दुनिया की तरफ ले जा रही है। मसनूई ज़हानत, जैसा कि आपको मालूम है, आज के दौर में मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है। मसनूई ज़हानत एक जदीद टेक्नोलॉजी है जो मशीनों को इंसानों की तरह सोचने और सीखने की सलाहियत देती है। इसकी मदद से कंप्यूटर मसाइल हल करते हैं, फैसले लेते हैं और मालूमात का तज्ज़िया करते हैं। ये तालीम, सेहत, तिजारत और मवासलात समेत कई शोबों में इस्तेमाल हो रही है। मसलन स्मार्टफोन, चैटबोट्स और खुदकार गाड़ियाँ इसकी मिसालें हैं। मसनूई ज़हानत वक्त और मेहनत की बचत करती है और काम को ज़्यादा मुअस्सर बनाती है। ताहम इसके इस्तेमाल में एहतियात भी ज़रूरी है, ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो। मुस्तकबल में ये टेक्नोलॉजी इंसानी ज़िंदगी को मज़ीद आसान और तरक्की याफ्ता बना सकती है। यही नहीं, AI अब इंसानों की तरह बात कर सकती है, पेचीदा मसाइल हल कर सकती है, हत्ता के तस्वीरें और वीडियोस भी बना सकती है। मसलन डॉक्टर AI की मदद से बीमारियों की तशखीस कर रहे हैं, तलबा पढ़ाई में मदद ले रहे हैं, लेकिन इसके साथ कुछ खदशात भी हैं, जैसे रोज़गार पर असर, गलत मालूमात का फैलाव। इसलिए ज़रूरी है कि हम इस टेक्नोलॉजी को समझदारी से इस्तेमाल करें। मौसमी तब्दीली, ज़मीन के दर्जे हरारत और मौसमों में तवील मुद्दती तब्दीली को कहते हैं। यह ज़्यादातर इंसानी सरगर्मियों जैसे फैक्ट्रियों के धुओं और दरख्तों की कटाई की वजह से होती है। इसके असरात में गर्मी में इजाफा, ग्लेशियर्स का पिघलना और शदीद मौसमी हालात शामिल हैं। यह इंसानों, जानवरों और पौधों की ज़िंदगी को मुतासिर करती है। मौसमी तब्दीली को कम करने के लिए हमें दरख्त लगाने और आलूदगी कम करने की ज़रूरत है। मौसमी तब्दीली के बारे में हम ये कह सकते हैं कि दुनिया को दरपेश मसाइल में से एक बड़ा मसला मौसमी तब्दीली है। मेडिकल साइंस की तरक्की, मेडिकल साइंस ने हैरत अंगेज़ तरक्की की है, इंसानी ज़िंदगी को पहले से ज़्यादा महफूज और तवील बना दिया है। नई दवाओं और जदीद इलाज के तरीक़ों से कई ख़तरनाक बीमारियों का इलाज मुमकिन हो गया है। टेक्नोलॉजी जैसे MIR, CT स्कैन और रोबोटिक सर्जरी ने तशखीस और इलाज को आसान बनाया है। वैक्सीनों की बदौलत कई मुहलिक बीमारियों पर काबू पाया गया है। कैंसर के इलाज में बेहतरी आ रही है। रोबोटिक सर्जरी आम होती जा रही है। अब डॉक्टर रोबोट्स की मदद से इंतहाई बारीक और मुश्किल ऑपरेशन भी आसानी से कर लेते हैं। इसी तरह जनियाती तहकीक के ज़रिए बीमारियों को पहले ही रोकने की कोशिश की जा रही है। मेडिकल रिसर्च मुसलसल नई

और आइए सामने अब नजर डालते हैं साइंस की कुछ और सरगर्मियों पर। साइंसदानों ने तरबूज के हैरानकुन तिब्बी फवायद दरियाफ्त कर लिए। नई तहकीक से मालूम हुआ है कि तरबूज सिर्फ गर्मियों का एक मज़ेदार फल नहीं बल्कि सेहत के लिए बेहद फायदेमंद भी है। माहरीन के मुताबिक जो लोग बाकायदगी से तरबूज खाते हैं उनकी मजमूई गजाई आदात बेहतर होती हैं। उनके जिस्म में विटामिन, फाइबर और एंटी ऑक्सीडेंट की मकदार ज्यादा पाई गई, जबकि वो निस्बतन कम इजाफी चीनी इस्तेमाल करते। तहकीक में बताया गया कि तरबूज जिस्म को पानी की मुनासिब मकदार फराहम करने के साथ साथ दिल की सेहत और निज़ाम हाजमा के लिए भी मुफीद साबित हो सकता है। साइंसदानों ने इंकशाफ किया कि 7 दिन का मुसलसल रोज़ा इंसानी जिस्म में गैर मामूली तब्दीलियां पैदा करता है। साइंसदानों ने एक नई तहकीक में दरियाफ्त किया है कि जब इंसान 7 दिन तक बगैर कुछ खाए पिए, यानी कि रोज़े की शक्ल कह लें या फास्टिंग कह लें, इसी तरह रोज़ा रखता है तो उसके जिस्म में गहरी अंदरूनी तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। तहकीक के मुताबिक इब्तदाई 3 दिनों में जिस्म अपनी तवानाई के ज़खायर इस्तेमाल करता है, जबकि उसके बाद जिस्म चर्बी को तवानाई में तब्दील करना शुरू कर देता है। इस दौरान जिस्मानी खुलियात की मरम्मत, जहरीले मादों के अखराज और मेटाबॉलिज्म में नुमाया तब्दीलियां देखी गईं। माहरीन का कहना है कि ये नतायज मुस्तकबिल में फास्टिंग के तिब्बी फवायद को समझने में मददगार साबित हो सकते हैं। जदीद नैनो टेक्नोलॉजी से चूहों में अल्जाइम्स की अलामत खत्म करने में कामयाबी। साइंसदानों ने एक अहम पेशरफ्त करते हुए नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से चूहों में अल्जाइम्स की अलामत को कामयाबी से कम कर दिया है। तहकीक में इस्तेमाल किए गए खसूसी नैनो जर्रात ने दिमाग में जमा होने वाले जहरीले अमाइलाइड प्रोटीन्स को साफ किया और दिमागी हिफाजती रुकावट ब्लड ब्रेन बैरियर को बहाल किया। इस इलाज के बाद चूहों की याददाश्त और दिमागी कारकर्दगी में नुमाया बेहतरी देखी गई। माहरीन का कहना है कि अगर यही नतीजे इंसानों में भी सामने आए तो अल्जाइम के इलाज में एक इनकलाबी पेशरफ्त हो सकती है। 15 करोड़ साल कदीम स्टेगोसार की खोपड़ी ने डायनासोर की इर्तका से मुतालिक तसव्वुरात बदल दिए। स्पेन में माहरीन आसार कदीमा ने स्टेगोसार डायनासोर की 15 करोड़ साल पुरानी एक नहायत महफूज खोपड़ी दरियाफ्त की है। ये यूरोप में मिलने वाली अपनी नौयत की सबसे मुकम्मल खोपड़ी करार दी जा रही है। इस दरियाफ्त ने साइंसदानों को स्टेगोसार की जिस्मानी साख्त, खुराक और इर्तकाई सफर को बेहतर अंदाज में समझने का मौका फराहम किया है। महक़िक़ीन के मुताबिक ये दरियाफ्त डायनासोर की तारीख के कई अहम सवालात के जवाब दे सकती है। 1200 साल कदीम गुमशुदा मखतूते में पहली अंग्रेजी नज्म दरियाफ्त। रोम में दरियाफ्त होने वाले कदीम मखतूते ने अंग्रेजी अदब की तारीख में नई रोशनी डाली है। ये 1200 साल पुराना नुस्खा तवील अरसे से गुमशुदा समझा जा रहा था, जिसमें अंग्रेजी जबान की अवलीन मारूफ नज्म कैडमिन्स हाइम महफूज पाई गई। माहरीन के मुताबिक ये दरियाफ्त न सिर्फ कदीम अंग्रेजी शायरी बल्कि इब्तदाई यूरोपी अदबी रिवायत को समझने में भी

अहम है। नई तहकीक ने यू डाइटिंग से मुतालिक सबसे बड़े खदशे को मुस्तरद कर दिया। एक जामे तहकीकी जायजे में बताया गया है कि बार बार वजन कम करने और दोबारा बढ़ने के अमल, जिसे यू डाइटिंग कहा जाता है, के बारे में पाए जाने वाले खदशात इतने दुरुस्त नहीं जितने पहले समझे जाते थे। माहरीन ने कई दहाइयों पर मुहित इंसानी और हैवानी मुतालियात का जायजा लिया और पाया कि इससे मेटाबॉलिज्म को मुस्तकिल नुकसान पहुंचने के वाज़ह शवाहिद मौजूद नहीं। साइंसदानों ने दरियाफ्त किया कि बाज कैंसर कीमोथेरेपी से कैसे बच निकलते हैं। एक नई तहकीक में इंकशाफ हुआ है कि बाज सरतान ज़दा खुलियात एक खास प्रोटीन यानी MYC की मदद से अपने खराब शुदा DNA की मरम्मत कर लेते हैं, जिसके बायस वो कीमोथेरेपी के बावजूद जिंदा रहते हैं। साइंसदानों को कहना है कि इस दरियाफ्त से कैंसर के इलाज के नए तरीके सामने आ सकते हैं, जिनके जरिए इन खुलियात को ज्यादा मौसर अंदाज में निशाना बनाया जा सकेगा। और आइए सामीन एक बार फिर सुनते हैं खूबसूरत गजल।

तो सामईन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम साइंस की दुनिया। इसी के साथ अपने मेज़बान यानी खिसाल मेहदी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उर्दू मजलिस। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। 4 बजने ही वाले हैं, आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा, सतत विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में नॉर्डिक देशों के साथ भारत की साझेदारी को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गोहरस्टोर्क के अलावा डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन, फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो, आइसलैंड के प्रधानमंत्री सुश्री क्रिस्टन फ्रॉस्टोडेटर और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री मोदी ने आज ओस्लो में आइसलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टन म्योर फ्रॉस्टोडेटर और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा, आर्थिक बिखराव के इस समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग

0: मजबूत करेगा। श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के व्यक्तिगत निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। और ब्यौरा रोम में मौजूद हमारी संवाददाता सुपर्णा भाटिया से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुंचने वाले हैं, जो उनके 5 देशों के दौरे का अंतिम चरण है। इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। मुझे यहाँ भारतीय प्रवासी समुदाय से बात करने का भी अवसर मिला, जो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित हैं।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने ये बात आज नई दिल्ली में आयोजित भारत व्यापार सुधार सम्मेलन में कही। श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वैश्विक स्थिति और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं को भारत के लिए व्यापारिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने, तेजी से सुधार करने, अधिक लचीलापन विकसित करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। श्री गोयल ने कहा कि व्यवसायों को उभरती प्रौद्योगिकी और वैश्विक विकास को अवसरों के रूप में देखना चाहिए। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे केवला झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट के लिए 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि यह प्रोजेक्ट हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर की क्षमता को बढ़ाएगा। रेलवे ने अरक्कोनम चिंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए भी 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज, बुरी तरह बीमार या खतरनाक कुत्तों को पहली बार मौत का इंजेक्शन देने की भी अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती जनसंख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। अंक तालिका में राजस्थान 5वें और लखनऊ 10वें नंबर पर है। प्लेऑफ के मद्देनजर ये मुकाबला राजस्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मौसम विभाग ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भीषण लू चलने का अनुमान लगाया है। बिहार और मराठवाड़ा में भी आज ऐसे ही स्थिति रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi will attend the third India-Nordic summit in Oslo this afternoon. The Prime Ministers of Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark will also be taking part in the summit. This summit will build upon the increased sectoral cooperation between India and the Nordic countries since the previous summit held in Copenhagen in Denmark in 2022. The areas in focus are tech and innovation, sustainability, renewable energy and digitization. With trade and economic partnership agreement in force, the summit will try to forge deeper trade and investment linkages. On the sidelines of the summit, Prime Minister Modi today held a bilateral meeting with Prime Minister of Iceland, Kristrun Mjok Frostadottir. Prime Minister Modi reached Norway yesterday after completing his visit to UAE, the Netherlands and Sweden. Our correspondent covering the Prime Minister's visit has filed this report.
3: The Nordic countries generate over 90% of their electricity from fossil-free sources. India has its own ambitious green transition goals, so it would help in harnessing renewable energy sources like wind, hydropower, biomass, geothermal with the help of their expertise. The most concrete step taken towards the collaboration was yesterday when India-Norway relations were upgraded to green strategic partnership. It will help Norwegian companies to innovate and invest in sectors like green hydrogen, blue economy and circular economy. India will also be participating in Nor Shipping 2022. 2027 with an India pavilion. This will ensure knowledge sharing in shipbuilding and also green shipping. Today's third India Nordic Summit will definitely give an impetus to this collaboration on the green energy front. Sangeeta Godbole, Akashvani News, Oslo.
2: From Norway, Prime Minister Modi will travel to Italy today on the fifth and final leg of his five-nation tour. We have more from our correspondent covering the Prime Minister's visit.
1: Prime Minister Narendra Modi is all set to arrive today in Italy for the final stop of his five-nation tour. And the visit is expected to give a fresh push to India-Italy's strategic ties across several important sectors. Collaborations related to trade, investment and industrial partnerships are likely to be announced as both countries are looking to strengthen their economic engagement and exploring new areas of cooperation. Trade ties that are already on strong footing are expected to grow even further after the high-level talks during the visit. Suparna Bhatia for Akashvani from Rome.
2: India and Sweden have emphasized that cooperation will define the pathway to shared prosperity and a sustainable future at a moment of global uncertainty. In an article written by Prime Minister Narendra Modi and his Swedish counterpart Ulf Kristersson, which was published in the National Daily today, it was highlighted that at a time of global uncertainty, energy insecurity and economic divisions, the world must choose between working alone or strengthening international partnerships. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today called for deeper collaboration between industry and government to advance ease of doing business, enhance India's competitiveness and accelerate the country's journey towards Viksit Bharat. The minister was speaking at the India Business Forum Reform Summit 2026 in New Delhi. The Supreme Court has allowed euthanasia for rabid, incurably ill or demonstrably dangerous stray dogs for the first time, citing the need to protect human life and public safety. A bench comprising Justice Vikram Nath, Justice Sandeep Mehta and Justice N. V. Anjaria issued a series of directions aimed at addressing the growing stray dog population across the country. Meanwhile, the top court dismissed pleas seeking a recall of its earlier order on the relocation and sterilization of stray canines, as it observed that the right to live with dignity encompasses the right to move freely without the threat of harm from dog bite attacks. The IMD has issued a yellow warning for heat wave conditions in national capital for the next 3 days. In Uttar Pradesh, orange alert for heat wave to severe heat wave conditions has been issued again for the coming week. According to IMD, heat wave conditions are likely to prevail over Punjab, Haryana, Chandigarh for next 5 days. Benchmark domestic equity indices reversed their intraday gains and ended with marginal losses today. The Sensex dropped 114 points to close at 75,201. And in IPL cricket today, Rajasthan Royals will take on Lucknow Super Giants in Jaipur at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर. श्रोताओं, अब वक्त है गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में सूचना देने का. सबसे पहले खोए व्यक्ति का नाम है काजल. अंतिम बार इन्हें तुगलपुर में देखा गया है 30/4/2026 9 बजे. इनकी आयु 24 वर्ष है. कद 5 फुट 5 इंच है. शरीर की बनावट आंख नाक कान औसत है और इकहरा मजबूत शरीर है. काजल अपने घर से काम के लिए निकली थी और अभी तक घर वापस नहीं आई हैं. यदि इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आप थाना प्रभारी, थाना नॉलेज पार्क, कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में सूचना दे सकते हैं. खोए व्यक्ति का नाम है रविंद्र. इनके पिता का नाम है रामकेश. रविंद्र को अंतिम बार सदर सराय सेक्टर 46 नोएडा में देखा गया है. इनकी आयु 26 वर्ष है. शरीर की बनावट सामान्य शरीर है. कद 5 फुट 6 इंच है. रविंद्र बैंक के काम से बाहर गए थे, फिर घर वापस नहीं आए हैं. यदि इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आप
4: थाना प्रभारी, थाना सेक्टर 39, गौतम बुद्ध नगर में सूचना दे सकते हैं।

और साथ ही साथ इस मोबाइल नंबर पर भी सूचना दे सकते हैं, 9792289208। खोए व्यक्ति का नाम है सोनू, इनके पिता का नाम है भुवनेश। सोनू को अंतिम बार ग्राम तुसियाना में देखा गया है। सोनू 18 वर्षीय पुरुष हैं। इनकी शरीर की बनावट आंख नाक कान औसत हैं और रंग गेहुआ है। कद 5 फुट है। सोनू घर से घूमने के लिए निकले थे और अभी तक घर वापस नहीं आए हैं। यदि इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आप थाना प्रभारी, थाना इकोटेक 3, कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में सूचना दे सकते हैं। खोए व्यक्ति का नाम है ममता गुप्ता। ममता को अंतिम बार दिनांक 23/3/2026 को हरोला सेक्टर 5 नोएडा में देखा गया है। आयु 38 वर्ष है। शरीर की बनावट मजबूत सामान्य शरीर है। कद 5 फुट 4 इंच है। ममता के बाएं हाथ पर मुकेश गुदा हुआ है। ममता अपने घर से बिना बताए चली गई हैं और अभी तक घर वापस नहीं आई हैं। प्रार्थी का पता है अजीत सिंह, थाना फेस 1, नोएडा। मोबाइल नंबर है 9759271932। यदि इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आप थाना प्रभारी, थाना फेस 1, नोएडा, कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में सूचना दे सकते हैं। लापता व्यक्ति का नाम है निक्की, पिता का नाम है भूपेंद्र, निवासी ग्राम खटाना, थाना जारचा, गौतम बुद्ध नगर। अंतिम बार इन्हें दिनांक 30/3/2026 को ग्राम खटाना में देखा गया है। इनकी आयु 24 वर्ष है। शरीर की बनावट आंख नाक कान औसत हैं। रंग गेहुआ है और कद 5 फुट 2 इंच है। निक्की ने टी शर्ट, टॉप व पजामा पहन रखा है। प्रार्थी का पता है शिवम, पुत्र भूपेंद्र, निवासी ग्राम खटाना, थाना जारचा, गौतम बुद्ध नगर। अनिल कुमार, थाना जारचा, गौतम बुद्ध नगर। मोबाइल नंबर है 8218261975 और दूसरा नंबर है 9454403385। यदि इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आप थाना प्रभारी, थाना जारचा, गौतम बुद्ध नगर में सूचना दे सकते हैं। खोए व्यक्ति का नाम है सपना देवी। इनके पिता का नाम है राकेश, निवासी सदरपुर सेक्टर 44, नोएडा। अंतिम बार इन्हें 24/3/2026 को सेक्टर 44 के पार्क में देखा गया है। इनकी आयु 20 वर्ष है। शरीर की बनावट दुबला शरीर है। कद 5 फुट है। सपना के निचले सामने के दांत थोड़े से टेढ़े हैं। दिनांक 24/3/2026 को सपना बिना बताए सेक्टर 44 में स्थित पार्क से कहीं चली गई हैं और अभी तक घर वापस नहीं आई हैं। यदि इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आप थाना प्रभारी, थाना सेक्टर 39, गौतम बुद्ध नगर में सूचना दे सकते हैं। खोए व्यक्ति का नाम है रितु, इनके पिता का नाम है अगनपाल। रितु को अंतिम बार अपने घर ग्राम बहलोलपुर, थाना सेक्टर 63, नोएडा, दिनांक 14/3/2026 तक देखा गया है। रितु की आयु 22 वर्ष है। शरीर की बनावट आंख नाक कान औसत है। रितु का रंग गोरा है। कद

तिम्बार कस्बा से आना, दिन रविवार, दिनांक 19/4/2026 तक देखा गया है। आयु 35 वर्ष है, कद 5 फुट है। शरीर की बनावट सामान्य शरीर है, चेहरे का रंग गेहुआ है। आवेदक का पता है सुमित कुमार, थाना से आना, बुलंदशहर। मोबाइल नंबर है 6396269251। यदि इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आप थाना प्रभारी, थाना से आना, जनपद बुलंदशहर में सूचना दे सकते हैं। श्रोताओं, ये तो थे कुछ खोए व्यक्तियों के बारे में जानकारी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।

0: National Tuberculosis Institute, NTI Bangalore, under the Ministry of Health and Family Welfare, has invited applications for one post of junior bacteriologist on deputation basis for an initial period of 3 years. Applications from eligible officers working in central, state government departments, PSUs and autonomous bodies must be submitted through proper channel within 60 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. Full details available on the website, that is at www.nti.gov.in. I repeat, www.nti.gov.in. Indian Bureau of Mines, IBM, Ministry of Mines, has invited applications for the post of a director in pay level 15 on deputation or short-term contract or promotion basis. Eligible officers from government departments, PSUs, universities and research institutions can apply within 60 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. Details available on the website at www.ibm.gov.in. Delhi Urban Art Commission, DUAC, under the Ministry of Housing and Urban Affairs, has invited applications for the post of an administrative officer and private secretary on deputation basis. Interested candidates can check eligibility conditions and application details on the official website. Applications must reach within 60 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. For details, kindly refer to the website, that is at www.duac.org.in. Hemavati Nandan Bahuguna Garhwal University, Srinagar Garhwal, Uttarakhand has invited online applications for the post of a registrar, executive engineer civil and section officer on direct recruitment, tenure and deputation basis. The university is seeking experienced and qualified candidates with a strong academic and administrative background. Online applications, last date to apply is 25th May 2026. Candidates should regularly check the official university website for details. And the website is www.hnbgu.ac.in. I repeat, www.hnbgu.ac.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के साथ हाजिर हूँ मैं विनीता। आइए कुछ जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या फिर स्वायत्त निकायों या सांविधिक संगठनों या फिर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के पात्र अधिकारियों से सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद प्रतिनियुक्ति के आधार पर मुख्य ड्रिल प्रशिक्षक के एक पद को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इस पद के लिए वेतन, आवश्यक योग्यताएं, अन्य पात्रता मानदंड और आवेदन प्रपत्र एकेडमी की वेबसाइट पर मिल जाएगी, जो है www.svpupa.gov.in/vacancies। इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज IDS जयपुर, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली और राजस्थान सरकार द्वारा संयुक्त रूप से निशिबद्ध राजस्थान में अनुसंधान में संलग्न एवं स्वायत्त प्रमुख सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान है। यहाँ पर कुछ पद के लिए आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। लेखा कार्यपालक, ये पद का नाम है, पदों की संख्या होगी एक और आयु सीमा की बात करें तो 18 से 40 वर्ष। पदों की प्रकृति होगी संविदागत आधार पर और श्रेणी है अनारक्षित। इन्हें मिलेंगे 62,000 रूपए और PF। कनिष्ठ कार्यालय सहायक, एक पद यहाँ पर भी रिक्त है, 18 से 40 वर्ष के बीच इनकी आयु होनी चाहिए और ये स्थायी पद होगा, अनारक्षित है। ये ग्रेड पे 2400 के लिए है। 18 से 40 वर्ष में एक और पद रिक्त है।

0: वो है कनिष्ठ कार्यालय सहायक का, संविदागत आधार पर अनारक्षित। इन्हें मिलेंगे 33,000 रूपए प्लस PF। चालक एक स्थान रिक्त है, 18 से 40 वर्ष, स्थायी होगा ये, अनारक्षित है। इसमें आपका ग्रेड पे होगा 2400। एक स्थान यहाँ रिक्त है, 18 से 40 वर्ष की उम्र, स्थायी अनारक्षित, और ये ग्रेड पे 1700 के अंतर्गत आते हैं। आयु में छूट पर राजस्थान राज्य सरकार मानकों के अनुसार विचार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त संस्थान IDSJGB निर्माण के अनुसार आयु में मानदंड में छूट देने का अधिकार सुरक्षित रखता है। सभी पदों के लिए निर्धारित आवेदन पत्र आपको मिल जाएगा वेबसाइट पर, जो है www.idsg.org/vacancies। इस विज्ञापन के प्रसारण के 15 दिनों के अंदर आप आवेदन कर सकते हैं। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, भारतीय खान ब्यूरो। भारतीय खान ब्यूरो IBM में सामान्य केंद्रीय सेवा, अराजपत्रित राजपत्रित समूह B के स्तर 7 के अंतर्गत सहायक भंडार अधिकारी के एक पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने के लिए केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार या फिर संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या फिर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या सांविधिक निकायों मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधीन अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। विभाग में इन पद के लिए आवेदन की अंतिम तारीख होगी इस विज्ञापन के प्रसारण के 60 दिनों के अंदर। आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
2: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे एम्प्लॉयमेंट न्यूज। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। और अब प्रस्तुत है समाचारों के अंतर्गत कार्यक्रम परिक्रमा। समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार श्रोताओं, जिंदगी की एक नई शाम में हम आ गए हैं न्यूज मैगजीन परिक्रमा का एक नया अंक लेकर। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, रोजाना की तरह चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास भी और जानेंगे कि उनके पास आज हमारे लिए क्या खास जानकारी है। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और उन खास व्यक्तित्वों को भी हम याद करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है। आज के अंक में मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ हैं अनुजा।
2: यस हेलो एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून सरफिरोजी। वी ऑल नो दैट आवर प्राइम मिनिस्टर इज ऑन द टूर टू द नॉर्डिक रीजन एंड रेफरिंग टू आवर प्राइम मिनिस्टर बीइंग ऑनर्ड देयर, इट इज हार्ट वार्मिंग एंड अ वेलकम्ड जेस्चर बाय स्वीडन एंड नॉर्वे। दे कन्फर्ड देयर हाईएस्ट सिविलियन एंड स्टेट ऑनर्स ऑन द इंडियन प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग हिज बायलैटरल विजिट टू द नॉर्डिक रीजन डे बिफोर यस्टरडे एंड यस्टरडे एज वेल, ब्रिंगिंग हिज टोटल इंटरनेशनल एक्लेड्स टू 32। The recognition has bolstered his political standing as supporters and the ruling party highlight his global popularity and rising international clout as well. Political representatives in India have praised the development, stating that the accolades elevate India's global prestige and signify how the country is acknowledged and respected on the world stage nowadays. PM Modi also dedicated these prestigious honors to the people of India and the historic friendships his country shares with the Nordic nations. Isn't it, Sir Firozi?
1: Bilkul, Anuja.
2: It's a matter of great pride. And now shall we begin with a real parikrama? Let's begin with the news making headlines at this hour of the day, Sir Firozi.
1: बिल्कुल अनुजा, बात हो रही थी पीएम मोदी की यात्रा की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे।
2: Prime Minister Modi and his Swedish counterpart Ulf Kristersson in a joint newspaper article stress on partnerships in times of global uncertainty.
1: सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व आदेश को वापस लेने से इनकार।
2: IMD shows yellow alert for heat wave in national capital for the next 3 days.
1: और IPL क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से।
2: And Sir Firozi, it's now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we will talk about World Fair Play Day. We welcome you all to our special segment dedicated to a brand new global celebration, that is World Fair Play Day, which is observed for the very first time on 19th of May 2025. Now, when we hear the words fair play, most of us immediately think of sports, a footballer helping an injured opponent, a cricketer walking off the field honestly, even before the umpire gives her decision, players shaking hands after an intense match. But fair play is much more than that. It is about respect, honesty, equality, kindness, discipline, and of course, humanity. And today's program will explore how sports and fair play can transform not just the games, but society itself.
1: बिल्कुल अनुजा, और बात करें वर्ल्ड फेयर प्ले डे के इतिहास की, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1 जुलाई 2024 को अपनाए गए एक प्रस्ताव के माध्यम से आधिकारिक तौर पर 19 मई यानी आज के दिन को विश्व फेयर प्ले दिवस के रूप में घोषित किया। और ये प्रस्ताव दोस्ती, एकजुटता, सहिष्णुता, समावेशन और खासतौर पर भेदभाव रहित व्यवहार जैसी खेल भावनाओं को बढ़ावा देते हैं। खेल महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाते हैं, दिव्यांग व्यक्तियों को सहयोग देते हैं और युवाओं को जिम्मेदार वैश्विक नागरिक बनने के लिए प्रेरित करते हैं।
2: सो लिसनर्स, लेट्स बिगिन विद अ सिंपल क्वेश्चन, व्हाट एग्जैक्टली इज फेयर प्ले? Fair play means following the rules honestly, respecting teammates and opponents, accepting victory with humility, accepting defeat with dignity, and rejecting violence, cheating, racism, and doping. Fair play reminds us that how we win matters just as much as विनिंग इटसेल्फ।
1: बिल्कुल अनुजा, जैसा कि आपने कहा कि फेयर प्ले जो शब्द है उसे सुनकर खासतौर पर हमारे दिमाग में स्पोर्ट्स ही आता है, पर हम सभी को पता होना चाहिए कि आज सिर्फ स्टेडियम में नहीं बल्कि हर जगह निष्पक्षता यानी फेयर प्ले की जरूरत है, चाहे वो स्कूल हो, आपके वर्क प्लेस हो, ऑनलाइन आप कोई ओपिनियन दे रहे हैं या ओवरऑल सोसाइटी की बात हो। जब लोगों के साथ बराबरी और सम्मान से पेश आया जाता है तो लोग ज्यादा मजबूत और खुशहाल बनते हैं, और खेल हमें ये सबक अपने आप सिखा देते हैं। खेलों को अक्सर इंसानियत की यूनिवर्सल भाषा कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम चाहे कहीं से भी आए हों, खेल हमें तुरंत आपस में जोड़ देते हैं। ब्राजील में फुटबॉल मैच, भारत में क्रिकेट, यूएसए में बास्केटबॉल, केन्या में एथलेटिक्स, अलग अलग खेलों की भावनाएं एक जैसी होती हैं। इनमें एक जैसी खुशी होती है, टीम स्पिरिट होता है, जीतने का पक्का इरादा, और खेल मनोरंजन से हटकर हमारे सर्वांगीण विकास के लिए भी जरूरी होते हैं।
2: And at a time when many young people spend hours on phones and computers, sports do encourage active and healthy lifestyles. Sports also build mental strength. They teach us confidence, patience, focus, discipline, and resilience. Athletes learn how to handle pressure, recover from failure, and keep trying despite setbacks. That's a lesson valuable in every aspect of life. Other than this, sports also teach teamwork. In sports, no one succeeds alone. Players learn how to cooperate, how to communicate, the trust, the leadership and responsibility. Whether you are on a football field or in an office meeting later in life, Teamwork remains essential, isn't it?
1: बिल्कुल अनुजा, और खेल यानी स्पोर्ट्स की जो सबसे खूबसूरत बातों में से एक है वो ये है कि ये अलग अलग कल्चर और सीमा के पार लोगों को भी एक साथ लाते हैं। जब एथलीट इंटरनेशनल लेवल पर मुकाबला करते हैं तो हमें मैच के दौरान स्टेडियम में या खेल के मैदान में इन देशों के बीच की दोस्ती भी दिखती है। अलग अलग बैकग्राउंड के फैंस एक साथ जश्न मनाते हैं, जो ये साबित करता है कि स्पोर्ट्स यानी खेल दूरियों को कम कर सकते हैं।
2: Now let's talk about some moments where fair play touched hearts around the world. There have been athletes who stopped running to help injured competitors. There have

0: been teams who refused unfair advantages even when victory was at stake. And there have been players who used their fame to fight racism, discrimination, and injustice. These moments remind us that sports are not just about trophies. They are about character.
1: बिल्कुल अनुजा, जो सच्चे विजेता होते हैं उनके लिए सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि उनकी कैरेक्टर, उनकी वैल्यू के लिए भी उन्हें याद किया जाता है और खेल वैश्विक विकास लक्ष्यों में भी योगदान देते हैं. वर्ल्ड फेयर प्ले डे कई सतत विकास लक्ष्यों का भी समर्थन करता है जिन्हें SDGs के नाम से भी जाना जाता है.
0: Yes, and these sustainable development goals, they include good health and well-being. Quality education, that sports teach life skills such as discipline and teamwork, gender equality, sports empower women and girls and challenge stereotypes. They also reduce inequalities. Sports include people from all backgrounds and abilities. Peace, justice, strong institutions, fair play promotes all these things, respect, justice and peaceful communities as well.
1: यही कारण है कि दुनिया भर की सरकारों, स्कूलों और खेल संगठनों को इस दिन को मनाने और जागरूकता फैलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि खेलों के माध्यम से हम सोसाइटी में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं. निष्पक्ष खेलों को बढ़ावा देने में युवाओं की खासतौर पर बहुत बड़ी भूमिका होती है. और अनुजा, ऐसा ही कहा जाता है कि जो आज के युवा हैं वो कल के नेता हैं. जब बच्चे खेलों के जरिए ईमानदारी, समावेश और सम्मान जैसे मूल्यों को सीखते हैं तो वे बड़े होने पर भी उन मूल्यों को अपने जीवन में बनाए रखते हैं. और कैसे स्कूल और माता पिता निष्पक्ष खेल को बढ़ावा दे सकते हैं अनुजा?
0: Yes, just to look into the few points. They promote participation over unhealthy competition, celebrating effort and also teamwork, and teaching children to respect everyone equally. And listeners, sports should be accessible to everyone, boys and girls, rich and poor, able-bodied persons and persons with disabilities. The spirit of fair play means nobody should be left behind. Inclusive sports create inclusive societies.
1: बिल्कुल अनुजा. और श्रोताओं, फेयर प्ले सिर्फ एथलेटिक फील्ड के लिए नहीं है. आप दूसरों की बात सुनकर, दूसरों की मदद कर, भेदभाव से बचकर, एग्जाम या वर्कप्लेस पर ईमानदार रहकर और खासतौर पर बुलिंग के खिलाफ खड़े होकर भी फेयर प्ले की भावना को बढ़ावा दे सकते हैं.
0: एंड दैट्स द रियल मैसेज ऑफ वर्ल्ड फेयर प्ले डे. नॉट जस्ट play fair in sports, but also live fair in life. Dear listeners, every game teaches us something. Sometimes we win, sometimes we lose.
1: बिल्कुल अनुजा, लेकिन हर बार जब हम ईमानदारी और सम्मान के साथ खेलते हैं तो एक इंसान के तौर पर भी हम बेहतर बनते हैं. खेल हमें सिखाते हैं कि असफलता अस्थाई होती है लेकिन आपकी कड़ी मेहनत मायने रखती है.
0: Of course, whether you are a professional athlete, a student, a coach, or simply someone who enjoys playing for fun, remember, fair play makes sports beautiful, and sports make life healthier, happier, and more united. Let's play fair, live fair, and build a better world together.
1: और श्रोताओं, अब आपको लेकर चलेंगे देश दुनिया की परिक्रमा पर और जानेंगे कि अपने हमारे क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास आज हमारे लिए क्या खास जानकारी है. सबसे पहले बात कर रहे हैं गुजरात की. गुजरात के कच्छ की सदियों पुरानी पारंपरिक कॉपर बेल हस्तकला को GI टैग मिलने के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल चुकी है. ये ऐतिहासिक कला अब ग्रामीण कारीगरों की किस्मत बदलने के साथ साथ विश्व स्तर पर भी भारत का गौरव बढ़ा रही है.
2: गुजरात के सीमावर्ती कच्छ जिले की सदियों पुरानी पारंपरिक कॉपरबेल हस्तकला को GI टैग मिलने के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई और अनूठी पहचान मिली है. कच्छ की यह अद्भुत और ऐतिहासिक कला आज एक बड़ा वैश्विक ब्रांड बन चुकी है जिससे स्थानीय ग्रामीण कारीगरों को वैश्विक बाजार में अपनी कला का प्रदर्शन करने का सुनहरा अवसर मिला है. लोहे के कबाड़ से बेहद मधुर और सुरीली गूंज पैदा करने वाली ये कलात्मक घंटियां अब अमेरिका और ब्रिटेन जैसे विकसित देशों के आलीशान घरों के ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ा रही है. GI टैग मिलने के बाद इन घंटियों की मांग विदेशों में काफी तेजी से बढ़ी है और वर्तमान में इन्हें 500 से अधिक नई और आधुनिक डिजाइनों में तैयार कर बड़े पैमाने पर निर्यात किया जा रहा है. कच्छ का झूरा गांव इस ऐतिहासिक कॉपर बेल हस्तकला का मुख्य केंद्र माना जाता है जहाँ कई पीढ़ियों से कारीगर परिवार लोहे के कबाड़ को बड़ी कुशलता से हथौड़े से पीट कर सुंदर घंटियों का आकार देते हैं. इस निर्माण प्रक्रिया के तहत सबसे पहले घंटी की मुख्य बॉडी, कैप और हैंडल तैयार किया जाता है और फिर उस पर तांबे या पीतल की परत चढ़ाई

0: जाती है। इसके बाद इसे भट्टी में पूरी तरह तपाकर अंतिम रूप दिया जाता है और अंत में कारीगर अपने पारंपरिक अनुभव से घंटी के भीतर एक अत्यंत मधुर रणकार पैदा करता है। इस प्राचीन कला को पुनर्जीवित करने में राज्य सरकार की गरवी गुर्जरी संस्था, कार्यशालाओं और लोन योजनाओं का बड़ा योगदान रहा है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और नई पीढ़ी के युवा भी इस गरिमापूर्ण व्यवसाय की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। परिक्रमा के लिए भुज से परेश मारू।
1: And Sir Firozi, spices, they serve to enhance the flavor of food.
2: Bilkul.
1: And among spices, the chili pepper holds the top spot. Our country boasts a wide variety of chili peppers. In the Parbhani district of the Marathwada region lies a village called Kapsi, which is currently making headlines thanks to its red chilies. Let's listen to what our correspondent has to say.
3: भारत में आज भी कई लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती किसानी ही है। किसी भी गांव के पास खेतों में जाकर देखें तो कई तरह की फसलें दिखाई देती हैं। लेकिन परभणी जिले में कापसी नाम का एक गांव ऐसा है जहां के अधिकतर किसान मिर्च की पैदावार लेते हैं। लगभग 1200 आबादी के इस गांव की उगाई लाल मिर्च इन दिनों काफी चर्चा में है। गाँव में 450 हेक्टेयर की कुल खेती में से पूरे क्षेत्र पर खरीफ मौसम में केवल मिर्ची की पैदावार ली जाती है। इस पैदावार के लिए लगने वाले 100% बीज यही की मिर्ची के होते हैं, जो इन किसानों ने पारंपरिक रूप से कई सालों से संजोए हैं। हर वर्ष लगभग 25 जुलाई के बाद बुवाई शुरू होती है और जनवरी के मध्य में मिर्ची तैयार होती है। हरी मिर्च को पौधों पर ही पकने के लिए रखा जाता है। सुर्ख लाल रंग आने पर ही मिर्ची की तुड़ाई होती है। इस काम के लिए आसपास के कई गाँव की महिलाएं आती है, जिन्हें दिन भर 14-15 किलो मिर्च तोड़ने के बाद मेहनताने के रूप में 1 किलो मिर्च या 350 रूपए दिए जाते हैं। तोड़ने के बाद इस मिर्च को घरों के छतों पर कम से कम हफ्ता भर के लिए सुखाया जाता है। गांव में हर एकड़ में 8 से 9 क्विंटल तक मिर्च का उत्पादन होता है और सूखी मिर्च को लगभग 350 से 380 रुपए किलो तक दाम मिलते हैं। कापसी गांव के किसान पहले अपनी मिर्च को आसपास के गांव में ही बेचते थे। कई व्यापारी सीधा इनके खेतों में जाकर किसानों से मिर्च खरीदते भी थे, लेकिन किसानों को इस मिर्च के तब अच्छे दाम नहीं मिलते थे। कुछ युवा किसानों ने कुछ वर्ष पूर्व मुंबई और दूसरे शहरों के मार्केट में जाकर अपनी मिर्च बेचने का निर्णय लिया और उन्हें उसके अच्छे दाम मिले। आज कापसी गांव की मिर्च को मुंबई के साथ साथ आखाती देशों से भी अच्छी मांग है। इस बार खरीफ मौसम में कापसी गांव ने 1200 क्विंटल मिर्च की उपज की है। तीखे लाल मिर्च के माध्यम से इस गांव के किसानों के जीवन में मिठास आई है। परिक्रमा के लिए छत्रपति संभाजी नगर से मैं हर्षवर्धन दीक्षित।
2: हर साल की तरह इस बार भी गोवा में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया गया। राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और युवाओं में संग्रहालयों के प्रति रुचि बढ़ाना इसका उद्देश्य था। एक रिपोर्ट।
4: गोवा विज्ञान केंद्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस समारोह के दौरान गोवा की समृद्ध संस्कृति और इतिहास की झलक देखने को मिली। माय ओन कलेक्शन नामक प्रदर्शनी का आयोजन 16 से 18 मई तक किया गया, जिसमें पुराने सिक्के, 50 देशों की मुद्रा, मिनिएचर, चॉकलेट रैपर के विविध संग्रह और कई अनोखे संग्रहणीय वस्तुएं प्रदर्शित की गई, जिन्हें हॉबी कलेक्टर्स ने प्रस्तुत किया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि
5: हमने म्यूजियम डे इस फंक्शन किया था माय ओन कलेक्शन, जो गोवा के बच्चों से लेके सीनियर सिटीजन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो चीज स्टैम्प से लेके ट्रेडिशनल गिफ्ट आइटम्स जो है उसका बहुत ही अच्छा कलेक्शन यहाँ पे लगाया था। हमने गोवा सरकार की तरफ से जो प्राइवेट म्यूजियम है उनके लिए 2 स्कीम अनाउंस किए थे। एक वन टाइम ग्रांट्स ऑफ द 5 लाख रुपीज वो आज से हमने स्टार्ट की टू मेंटेन द प्राइवेट म्यूजियम, ये भी स्कीम आज हमने स्टार्ट की।
4: मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि संग्रहालय पर्यटकों और युवाओं को गोवा की विरासत से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने राज्य के निजी संग्रहकर्ताओं और संग्रहालयों को सहयोग देने का भी आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने अभिभावकों से बच्चों को विज्ञान केंद्रों और संग्रहालयों में ले जाने की अपील की, ताकि उनमें जिज्ञासा और सीखने के प्रति रुचि विकसित हो सके। परिक्रमा के लिए निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: And in the sports news today, in IPL cricket, Rajasthan Royals will take on Lucknow Super Giants in Jaipur at 7:30 p.m. Last night, Sunrisers Hyderabad confirmed its place in the playoff, defeating Chennai Super Kings by 5 wickets at M.A. Chidambaram Stadium. And if we talk about some business news, benchmark domestic equity indices reversed their intraday gains and ended with marginal losses today. The Sensex dropped 114 points to close at 75,201, while the Nifty dipped by 32 points to settle at 23,000.

0: commentator on the textual tradition of the Indian literature.
1: द्विवेदी जी की प्रत्येक रचना पर उनके इस व्यक्तित्व की छाप देखी जा सकती है. आपकी मुख्य रचनाएं सूर साहित्य, बाण भट्ट की आत्मकथा, कबीर, अशोक के फूल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, नाथ संप्रदाय, पृथ्वीराज, रासो आदि हैं. हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था.
0: एंड अलॉन्ग विद द पद्म भूषण ही वॉज ऑल्सो ऑनर्ड विद द 1973 साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर हिज कलेक्शन ऑफ एसेज कॉल्ड आलोक. And today we also pay tribute to Vijay Tendulkar, the Indian dramatist, screenplay writer for movies and television dramas, and social activist who died on this date at the age of 80. And he was India's leading Marathi language playwright for nearly half a century. Much of his work focuses on violence, both physical and psychological, as a tool of those with power. He came to prominence in 1972 with two controversial works, Sakharam Binder and also the musical Ghasi Ram Kotwal. And with more than 6,000 performances in India and abroad, Ghasi Ram Kotwal is a political satire set in 18th century Pune. And another very famous of his masterpiece was Shantata Kot Chalu Ahe. It is a piece in Marathi, a theatre in Marathi. It uses a mock trial to ruthlessly expose the hypocrisy of patriarchal societal norms. As a writer, he started on newspapers, but later on he shifted to writing screenplays, which formed part of India's new wave cinema movement of the 1970s. Just like movies of Govind Nehlani, like Akrosh and Ardh Satya were scripted by Vijay Tendulkar.
1: बिल्कुल अनुजा, इसके अलावा निशांत आदि कई समानांतर सिनेमा आंदोलन से जुड़ी फिल्मों की भी पटकथा इन्होंने लिखी. हम अपने श्रोताओं को सुनाते हैं निशांत फिल्म का एक डायलॉग.
2: कब से बोल रहा हूँ, पर ये गड़ा भरने का काम अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ?
3: वो सरकार वो ऐसा है.
2: ऐसा ऐसा क्या है?
3: ये गाँव वाले बहुत मस्ती भरे, फुकट काम करने को तैयारी नहीं होती.
2: झूठ बोलने की आदत तेरी पैदाशी है, काहिल है और कुछ नहीं. जल्दी से काम शुरू नहीं हुआ तो अच्छी खासी परेड होगी तेरी, ये ख्याल रखना.
3: मास्टर बड़े सरकार से मिले नहीं? बड़े सरकार इन्हों अपने स्कूल के मास्टर हैं, बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं.
2: जितने आदमी काम में लगे उनके नाम लिखो, बाकी मैं खुद देख लूंगा.
1: श्रोताओं, निशांत फिल्म में बहुत ही बड़े दिग्गज कलाकारों ने काम किया, चाहे बात हो अमरीश पुरी की या शबाना आजमी की. लेकिन एक और कलाकार था जिसने इस फिल्म में एक्टिंग करके अपनी अदाकारी की छाप छोड़ी, उनकी आज जयंती है. हम बात कर रहे हैं गिरीश कर्नाड की.
0: यस, गिरीश कर्नाड वॉज एन इंडियन प्ले राइट, ऑथर, एक्टर एंड अ फिल्म डायरेक्टर हुज मूवीज एंड प्लेज रिटन लार्जली इन कन्नड़ एक्सप्लोर द प्रेजेंट बाय वे ऑफ द past. Alongside contemporary dramatists such as Badal Sarkar and Vijay Tendulkar, as we mentioned earlier, Kannad transformed modern Indian theatre by making it socially relevant and stylistically innovative. Kannad was awarded the Padma Shri, one of India's top civilian honours, in 1974, and the Indian government also awarded Kannad another of its big highest honours, the Padma Bhushan as well. He was the recipient of the Gyanpeeth Award in 1999 for his contributions to literature and theatre. But who can forget his role in a movie, Swami, with the song. Let's hear this classic soulful Hindi song from that movie, Ka Karun Sajni Aaye Na Balam.

0: She was posthumously awarded the Padma Bhushan in 2006.
1: श्रोताओं अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का. इजाजत दीजिए सरफिरोजी और अनुजा को परिक्रमा कार्यक्रम में यहीं समाप्त करने की. नमस्कार.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शुरू हुआ। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्री शामिल हैं। बैठक का उद्देश्य भारत और नॉर्डिक देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना है। इस सम्मेलन में ऊर्जा, समुद्री अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार, स्थिरता, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण पर चर्चा होगी। भारत और नॉर्डिक क्षेत्र के बीच फिलहाल व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता लागू है। सम्मेलन में भारत और इस क्षेत्र के देशों के बीच व्यापार और निवेश का विस्तार करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। नॉर्डिक ब्लॉक के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 19 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया है। सम्मेलन से भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बहुआयामी सहयोग को और विस्तार मिलने तथा पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आइसलैंड की प्रधानमंत्री सुश्री क्रिस्टरन फ्रॉस्टडॉटी, फिनलैंड के प्रधानमंत्री श्री पेटरी ओर्पो और डेनमार्क के प्रधानमंत्री सुश्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय प्रवासी समुदाय प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति

0: के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वैश्विक स्थिति और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं को भारत के लिए व्यापारिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने, तेजी से सुधार करने, अधिक लचीलापन विकसित करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज 6 लेन वाले एक्सिस नियंत्रित DND सोहना राजमार्ग संख्या 148NA का निरीक्षण किया। श्री गडकरी ने कहा कि दिल्ली NCR क्षेत्र में 87,000 करोड़ रुपए की लागत वाली लगभग 1,850 किलोमीटर की सड़क परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि 225 किलोमीटर लंबी 13,000 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाएं अभी निर्माणाधीन है। श्री गडकरी ने कहा कि एक्सप्रेसवे, रिंग रोड, सुरंगों और एलिवेटेड कॉरिडोर के माध्यम से सरकार दिल्ली NCR के पूरे परिवहन नेटवर्क का आधुनिकीकरण कर रही है और इसे भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार कर रही है। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन योजना के लिए 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ये परियोजना हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर की क्षमता को बढ़ाएगा। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए भी 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए ये फैसला लिया गया है। साथ ही जम्मू श्री माता वैष्णो देवी कटरा खंड पर 238 करोड़ रुपए की लागत से महत्वपूर्ण ढलान स्थिरीकरण, सुरंग पुनर्निर्माण और पुल संरक्षण कार्यों को मंजूरी दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित बुरी तरह बीमार या अत्यधिक खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा की गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और ऋषभ पंत की जगह KL राहुल को उप कप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एक दिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उप कप्तान होंगे। विराट कोहली, KL राहुल और ईशान किशन भी टीम में शामिल है। जयपुर में IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. The third India-Nordic summit began in the Norwegian capital Oslo today. Prime Minister Narendra Modi, along with his counterparts of Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark, are participating in the summit. The meeting is aimed at strengthening sectoral cooperation between India and the Nordic countries following the previous summit held in Copenhagen, Denmark in 2022. Our correspondent covering the Prime Minister's visit has filed this report.
2: The Nordic countries generate over 90% of their electricity from fossil-free sources. India has its own ambitious green transition goals, so it would help in harnessing renewable energy sources like wind, hydropower, biomass, geothermal with the help of their expertise. The most concrete step taken towards the collaboration was yesterday when India-Norway relations were upgraded to green strategic partnership. It will help Norwegian companies to innovate and invest in sectors like green hydrogen, blue economy and circular economy. India will also be participating in Nor Shipping 2027 with an India pavilion. This will ensure knowledge sharing in shipbuilding and also green shipping. Today's third India-Nordic summit will definitely give an impetus to this collaboration on the green energy front. Sangeeta Godbole, Akashvani News, Oslo.
1: From Norway, Prime Minister Modi will travel to Italy today on the fifth and final leg of his five-nation tour. More from our correspondent covering the Prime Minister's visit.
3: Prime Minister Narendra Modi is all set to arrive today in Italy for the final stop of his five-nation tour. And the visit is expected to give a fresh push to India-Italy's strategic ties across several important sectors. Collaborations related to trade, investment and industrial partnerships are likely to be announced as both countries are looking to strengthen their economic engagement and exploring new areas of cooperation. Trade ties that are already on strong footing are expected to grow even further after the high-level talks during the visit. Suparna Bhatia for Akashvani from Rome.
1: India and Sweden have emphasized that cooperation will define the pathway to shared prosperity and a sustainable future at a moment of global uncertainty.

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। संध्या के 5:10 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोक रंजनी।

0: लोक संगीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: सच कहें तो लोकगीत जो होता है वो ग्रामीण जनजीवन की धड़कन है, आरती, है ना ऐसा। और जो ग्रामीणों को उनकी जड़ों, उनकी प्रकृति और एक दूसरे से जो है एक जोड़ करके रखते हैं। और जो लोकगीत की हम बात करते हैं ना, तो ग्रामीण जीवन की, चाहे वो संघर्ष हो, चाहे वीरा हो और चाहे दर्द हो, हर बात को व्यक्त करने का सबसे बेहतरीन जरिया होता है लोकगीत। तो चलते हैं, देखते हैं प्रियंका शर्मा अपनी इस लोकगीत के जरिए क्या व्यक्त कर रही हैं।

0: तो भाई प्रियंका शर्मा को अभी आपने सुना, और भाई कहते भी है ना कि लोकगीत
1: हम्म।
0: ऐसे होते हैं यमुना कि ये अपने भावों को व्यक्त करने का एक जरिया होते हैं, और अगर बात गर्मी की हो तो गर्मी में भी ये हमारी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो किस तरह की भावना जो हमारे अंदर उमड़ कर आती है, तो चलिए सुनते हैं अशोक कुमार को कि क्या कहना चाह रहे हैं कि गर्मी में किस तरह का हाल जो है वो हो जाता है।
1: अरे गर्मी से

0: अशोक कुमार ने शिमला घुमाने की बात कही आरती, क्योंकि वाकई गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन अगर घूमने का मौका नहीं निकाल पा रहे हैं कोई, तो फिर घर में ही एसी लगवाने की बात करते हैं। तो
1: बिल्कुल
0: एसी लगवाने की बात पुष्पा गोसाई अपने इस लोकगीत के जरिए और अपनी सखियों के जरिए कैसे कह रही है, चलिए सुनते हैं।

0: यमुना, जो लोकगीत होते हैं हमारे, ऐसे कुछ गीत होते हैं जिसमें खुशियों की मिठास होती है तो कहीं विरह की कसक भी देखने को
1: बिल्कुल होती
0: मिलती
1: है।
0: है। तो अगला जो लोकगीत हम सुनवाने जा रहे हैं वो भी कुछ इस तरह का ही है, तो आइए सुनते हैं वीणा ढिल्लों और उनकी सखियों को।

0: बिना ढिल्लोर और उसकी सखियों से अभी आप सुन रहे थे ये लोकगीत, और अगले कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे देंगे। जो अभी हमारा अगला कार्यक्रम होगा वो होगा ग्राम संसार और कृषि जगत। इसमें आज सजीव फोन इन कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा और विषय होगा गन्ना फसल का किसानों के लिए महत्व और लाभ। विशेषज्ञ हमारे होंगे डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्रा, जो कि प्रभारी हैं कृषि विज्ञान केंद्र अमरोहा से, और दूसरे जो वैज्ञानिक हैं,
1: बिल्कुल दूसरे वैज्ञानिक की बात करें तो वो हैं डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया, जो कि मुख्य कृषि वैज्ञानिक है इंडियन पोटाश लिमिटेड में। और फोन नंबर की बात करें तो हमारे फोन नंबर रहेंगे 2342-1082, 2342-1083। तो दिल्ली से बाहर के जो भी श्रोता हैं वो 011 लगाएं, या मोबाइल से भी जो भी हमें कॉल कर रहे हैं तो 011 ज़रूर लगाएं। तो आज का हमारा ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार प्रकाशर और संयोजक शिवनंदन लाल।
0: तो आज का लोक रंजनी कार्यक्रम बस यहीं तक। सभी सुनने वाले श्रोताओं को हमारा
1: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंजनी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। संध्या के 5:30 होने को हैं। आइए सुनते हैं दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
2: नमस्कार। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों की खबरों का खास कार्यक्रम खेल खिलाड़ी लेकर आज आपके साथ मैं हूं अजय तोमर, और मेरे साथ है मेरे युवा सहयोगी
3: शिवांश रक्षित।
2: तो शिवांश, कहां से आज शुरू किया जाए, क्योंकि ढेर सारी खेलों की खबरें हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं आईपीएल से। आईपीएल में जिस तरह से चीजें हो रही हैं, कई टीमें बाहर हो गई हैं, कई टीमें क्वालिफाई हो गई हैं, तो आईपीएल में जिस तरह से चीजें हुई हैं उसके लिए हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत भी आईपीएल से करते हैं। तो क्या क्या आईपीएल में हो रहा है, आइए सुनते हैं।

सनराइजर्स हैदराबाद ने सोमवार को इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 63वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से मात दी। जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ का टिकट तो हासिल किया ही है, साथ ही नॉकआउट के लिए गुजरात की जगह भी कंफर्म हुई। गुजरात और हैदराबाद के अब 16-16 अंक है और प्लेऑफ की रेस में मौजूद 5 टीमों में से अब सिर्फ राजस्थान ही इतनी अंकों तक पहुंच सकती है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 13 मुकाबलों में 9 जीत के साथ पहले ही प्लेऑफ में प्रवेश कर चुकी थी, जिसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस ने भी शीर्ष 4 में अपनी जगह बना ली है। वहीं इस मैच में इस सीजन में पहली बार महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी में नजर आए। MS चिदंबरम स्टेडियम में टॉस जीतकर बल्लेबाजी के लिए उतरी चेन्नई सुपर किंग्स ने 7 विकेट खोकर 180 रन बनाए। इसके जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवरों में जीत दर्ज कर ली। टीम में महज 18 की स्कोर पर ट्रेविस हेड का विकेट गवा दिया था, लेकिन इसके बाद अभिषेक शर्मा ने ईशान किशन के साथ 31 गेंदों में 38 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 56 के स्कोर तक पहुंचाया। अभिषेक 21 गेंदों में 26 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनकी इस पारी में 4 बाउंड्री शामिल रही। यहां से हेनरिक क्लासन ने ईशान किशन के साथ तीसरे विकेट के लिए 41 गेंदों में 75 रन जोड़कर टीम को जीत की पटरी पर ला दिया। क्लासन 26 गेंदों में 6 चौकों और 2 छक्कों के साथ 47 रन बनाकर आउट हुए। आखिरी में ईशान किशन ने मोर्चा संभाला। किशन 47 गेंदों में 3 छक्कों और 7 चौकों के साथ 70 रन की पारी खेलकर आउट हुए। जब तक ईशान का विकेट गिरा, तब तक टीम जीत की दहलीज तक पहुंच गई थी। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स ने 48 के स्कोर तक अपने 2 विकेट गवा दिए थे, जिसके बाद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने कार्तिक शर्मा के साथ तीसरे विकेट के लिए 42 रन की साझेदारी की। CSK ने 100 के स्कोर तक अपने 4 विकेट गवा दिए थे, जहां से

0: तक खेलते हुए आए हैं, तो वो बहुत अच्छा नहीं खेले हैं और एलिमिनेट हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये राजस्थान के लिए एक अच्छा मौका है कि आज वो मुकाबला जीते और क्वालिफाई कर जाएं। वहीं दूसरी ओर आरसीबी टीम जो है वो क्वालिफाई कर चुकी है, 13 मुकाबलों में 9 जीत 4 हार के साथ 18 पॉइंट के साथ वो टॉप पर बने हुए हैं, टेबल टॉप में। और गुजरात की टीम ने भी क्वालिफाई कर लिया है, जीटी ने 13 मुकाबले खेले, 8 जीते 5 हारे और 16 अंकों के साथ दूसरे पायदान पर हैं। सनराइजर्स की टीम भी क्वालिफाई हो चुकी है, 13 मुकाबलों में 8 जीत और 5 हार के बाद 16 अंकों के साथ वो तीसरे स्थान पर हैं। वहीं पंजाब की टीम के 13 मुकाबलों में 6 जीत 6 हार और 1 अनिर्णय के साथ 13 अंक उनके हैं। और वहीं राजस्थान रॉयल्स के 12 मुकाबलों में 6 जीत और 6 हार के बाद 12 अंक है। सीएसके के 13 मुकाबले हो चुके हैं और उनके 6 वो जीते हैं और 7 वो हारे हैं। तो एक ऐसी जगह पे हैं कि अगर कोई दूसरी टीम खराब खेले तभी वो क्वालिफाई हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर आज का मुकाबला राजस्थान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वहीं दूसरी ओर शिवांश, जिस तरह से भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है अफगानिस्तान के खिलाफ जो एक टेस्ट मैच और 3 एक दिवसीय मुकाबले होने हैं उसके लिए टीम की घोषणा कर दी गई है, तो शिवांश क्या क्या इस टीम में धमाके हुए हैं, या ये कहें कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो इस टीम में बदलाव लेके आई हैं।
1: जी अजय जी, टेस्ट की जो हमारे पास टीम आई है, यहाँ पे शुभमन गिल कैप्टन है और यशस्वी जायसवाल भी हैं, और साथ ही में जो केएल राहुल है वो हमारे वाइस कैप्टन के रूप में खेलेंगे। साई सुदर्शन, ऋषभ पंत, देवदत्त पदिकल, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, मानव सुथार, गुरनूर बरार और हर्ष दुबे, और साथ ही में ध्रुव जुरेल के साथ खेलेंगे टेस्ट मैच। और आपको बता दें कि ओडीआई की जो स्क्वाड है उसमें शुभमन गिल है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, श्रेयस अय्यर वाइस कैप्टन के रूप में रहेंगे, केएल राहुल, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्जदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर बरार और हर्ष दुबे।
0: क्रिकेट की बातों को अब देते हैं विराम और अब बात करते हैं हॉकी की। और हॉकी में अंडर 18 के जो मुकाबले चल रहे हैं उस पर खास रिपोर्ट तैयार की है हमारे सहयोगी शिवांश ने, तो सुनते हैं।
1: भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम ने आक्रामक खेल का दबदबा दिखाते हुए ऑस्ट्रेलिया को 6-3 से हराकर 4 मैचों की श्रृंखला में 1-1 की बराबरी कर ली, जबकि भारतीय अंडर 18 महिला टीम को सोमवार को भोपाल में मेहमान टीम के खिलाफ 1-2 से करीबी हार का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश के उद्धव दास मेहता सेंट्रल SAI सेंटर में खेले गए इस दोहरे मुकाबले ने एक बार फिर भारत और ऑस्ट्रेलिया की जूनियर टीमों के बीच बढ़ती तीव्रता और प्रतिस्पर्धा को उजागर किया। भारतीय पुरुष टीम के लिए श्रृंखला का पहला मैच हारने के बाद यह जीत विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी। इस शानदार जीत के साथ अब श्रृंखला 1-1 से बराबर हो गई है और अंतिम 2 मैच खेले जाएंगे। इस बीच भारतीय महिला टीम ने एक और करीबी मुकाबले में कड़ी टक्कर दी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की शुरुआती बढ़त को पलटने में नाकाम रही और मौजूदा सीरीज में 2-1 से पीछे हो गई। सीरीज की निराशाजनक शुरुआत के बाद भारतीय पुरुष टीम ने कहीं अधिक आक्रामक रूप और संयम के साथ वापसी की। मेजबान टीम ने आक्रामक शुरुआत की और मिडफील्ड में उच्च दबाव और तेज पासिंग कॉम्बिनेशन के जरिए जल्दी ही मैच में नियंत्रण स्थापित कर लिया और उनकी यह मंशा 10वें मिनट में रंग लाई, जब आकाशदीप ने पहला गोल करके भारत को शुरुआती बढ़त दिला दी। भारत ने आत्मविश्वास के साथ आक्रमण जारी रखा और महज 4 मिनट बाद शाहरुख अली ने शानदार गोल दागकर ऑस्ट्रेलिया को बढ़त में ढील दी। मेहमान टीम ने जवाबी हमले करने की कोशिश की और ओवेन टेलर ने 23वें मिनट में ऑस्ट्रेलिया के लिए एक गोल दागकर स्कोर कम किया। हालांकि भारत का आक्रमण लगातार जारी रहा। केतन कुशवाहा ने 25वें मिनट में पहला गोल दागा और उसके ठीक 1 मिनट बाद रोमित पाल ने एक और गोल करके भारत को 4-1 की शानदार बढ़त दिला दी। इन 2 गोलों ने ऑस्ट्रेलिया की रक्षात्मक कमजोरी को उजागर कर दिया, क्योंकि भारत ने मध्य मार्गी रास्तों में लगातार मौके बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 29वें मिनट में ऑस्कर फ्रीमैन और फिर 32वें मिनट में जैक वेलर के गोल से अंतर कम किया, लेकिन भारत ने मैच को फिर कभी प्रतिस्पर्धी नहीं बनने दिया। कुशवाहा ने 40वें मिनट में अपना दूसरा गोल दागा, जो एक और शानदार आक्रमण का नतीजा था। इसके बाद अंश ने 45वें मिनट में भारत का 6ठा गोल दागा। अंतिम क्वार्टर में भारतीय रक्षात्मक खेल कहीं अधिक अनुशासित रहा और मेजबान टीम ने बिना कोई और गोल खाए अपनी बढ़त को बरकरार रखा। भारत के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में केतन कुशवाहा के 2 गोल जूनियर टीम में उनके बढ़ते प्रभाव को दर्शाते हैं। सर्कल के अंदर उनकी सक्रियता ने

0: ऑस्ट्रेलियाई रक्षा पंक्ति को लगातार परेशान किया, जबकि श्रृंखला के पहले मैच की तुलना में भारत की मध्य क्षेत्र संरचना कहीं अधिक बढ़िया दिखाई दी। भारतीय टीम ने ट्रांजिशनल प्ले में भी उल्लेखनीय सुधार दिखाया, जो पहले ऑस्ट्रेलिया की शारीरिक रूप से मजबूत खेल शैली के सामने उनके लिए परेशानी का सबब बना हुआ था। गेंद पर दबदबा बनाए रखने को, गोल में बदलने की उनकी क्षमता को से कोचिंग स्टाफ अंतिम दो मैचों में पहले विशेष रूप से खुश होगा। वहीं दूसरी ओर भारतीय अंडर 18 महिला टीम को एक और निराशाजनक शाम का सामना करना पड़ा। हालांकि उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, ऑस्ट्रेलिया ने 5वें मिनट में एनलीज के गोल से बढ़त बना ली, जिन्होंने भारतीय टीम के रक्षात्मक कमजोरी का फायदा उठाया। हालांकि पिछले मैचों में विपरीत भारत ने रक्षात्मक रुख अपनाने के बजाय सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। पहले क्वार्टर के अंत में ठीक पहले संदीप कुमारी ने शांत स्वभाव से गोल दागकर स्कोर 1-1 कर दिया, जिससे स्टेडियम में जोश बढ़ गया। इस गोल से भारत के बढ़ते आक्रामक आत्मविश्वास और मैदान के ऊपरी हिस्से में जोखिम उठाने की इच्छा का पता चलता है। मेजबान टीम के लिए दुर्भाग्यवश ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे क्वार्टर में लगभग तुरंत ही स्टेला के गोल से बढ़त हासिल कर ली। 17वें मिनट में किए गए उनके गोल ने मेहमान टीम को फिर से बढ़त दिला दी। दूसरे हाफ में भारत की रक्षात्मक संरचना में काफी सुधार हुआ, जिससे ऑस्ट्रेलिया के स्कोर करने के अवसर सीमित हो गए और मेहमान टीम को मैदान के बाहरी क्षेत्रों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि भारतीय आक्रमण ऑस्ट्रेलिया की मजबूत रक्षात्मक व्यवस्था को भेदने में लगातार सफल नहीं हो पाया। भारत की पुरुष टीम के लिए 6 गोल का यह प्रदर्शन आत्मविश्वास को काफी बढ़ाएगा और पहले मैच के बाद किए गए आक्रामक रणनीति बदलावों को सही साबित करेगा। महिला टीम के लिए हालांकि परिणाम पूरी तरह से उनके पक्ष में नहीं रहे हैं, लेकिन करीबी स्कोर लाइन मजबूत विरोधियों के खिलाफ बढ़ती प्रतिस्पर्धा का संकेत देती है। ये मैच विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत भविष्य के विश्व कप, युवा ओलंपिक और वरिष्ठ राष्ट्रीय टीम में दीर्घकालिक एकीकरण से पहले अपने जूनियर स्तर के विकास को मजबूत कर रहा है। पुरुष सीरीज अब बराबरी पर है और महिला सीरीज भी बेहद प्रतिस्पर्धी बनी हुई है। बुधवार को भोपाल में होने वाले फाइनल मैच जूनियर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी के एक और रोमांचक दिन का वादा करते हैं। भारत के पुरुष खिलाड़ी अब अपने लय बरकरार रखते हुए सीरीज में बढ़त हासिल करने की कोशिश करेंगे। वहीं महिला टीम वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज बराबर करने की लक्ष्य रखेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह श्रृंखला उभरती हुई भारतीय जूनियर प्रतिभा की गहराई को उजागर करती रहती है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय हॉकी के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है।
1: अंडर 18 हॉकी लगातार जिस तरह से हमारे जूनियर खिलाड़ी आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हॉकी में निश्चित तौर पर पिछले कुछ सालों से बहुत काम हुआ है और ग्रास रूट लेवल पर जिस तरह से हॉकी में काम हुआ है, तो वो अब उसकी झलक हमारे प्रदर्शन में भी आने लगी है। और जिस तरह से हॉकी में भारतीय जूनियर खिलाड़ी बहुत शानदार परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, और इसका एक बहुत बड़ा कारण खेलो इंडिया जो भारत सरकार की स्कीम है, उसका भी इसमें एक बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि ग्रास रूट लेवल से जो खिलाड़ियों को लेकर आया जा रहा है और उनको तैयार किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खेलने के लिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वही दूसरी ओर भारतीय आर्चरी टीम यानी कि तीरंदाजी टीम की भी घोषणा अब हो चुकी है और आगामी विश्व कप के लिए भारतीय तीरंदाजी टीम की घोषणा कर दी गई है। और रिकर्व में जिस तरह से भारतीय टीम में अनुभवी ओलंपियनों के साथ साथ उभरते सितारे भी शामिल किए गए हैं, और पुरुष वर्ग में धीरज बोमदेवरा, अतनु दास, तरुणदीप रॉय और प्रवीण जाधव होंगी, तो वहीं दूसरी ओर महिलाओं के वर्ग में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और भजन कौर और कुमकुम मोहोड़ को भी स्थान दिया गया है। वह मिश्रित टीम में अभिषेक वर्मा, रजत चौहान, पुरुषों के लिए प्रियांश और प्रथमेश फुगे हैं, और वहीं महिला वर्ग में अदिति गोपी चंदस्वामी और ज्योति सुरेखा वेनम जैसे नाम भारतीय टीम में शामिल किए गए हैं। तो ये एक ऐसा समन्वय स्थापित करने की कोशिश की गई है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि भारत के अनुभवी और युवा दोनों को यहाँ पर मौका दिया गया है, और अनुभव से बहुत कुछ सीखते हैं युवा। इसी को मद्देनजर रखते हुए भारतीय तीरंदाजी संघ ने भारत के लिए जो तीरंदाजी टीम बनाई है उसमें इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है। और वहीं अब बात कर लेते हैं 64 खानों की बिसात यानी कि चेस की, और चेस में जिस तरह से मुकाबला चल रहा है, सुपर चेस क्लासिक रोमानिया में जो मुकाबले खेले जा रहे हैं उस पर खास रिपोर्ट शिवांश की।
0: सुपर चेस क्लासिक रोमानिया का 5वां दौर 5 ड्रॉ के साथ समाप्त हुआ। हालांकि दिन को अलीरेजा फिरोजा की खेल परिस्थितियों

0: खेलों के साथ साथ खुद खेलों में से भी काफी हद तक प्रभावित किया। चौथे दौर से पहले टखने में चोट लगने के कारण और रविवार को फैबियानो कारुआना के खिलाफ निर्धारित मैच में न खेल पाने के बाद फिरोज अजा ने होटल के कमरे में बिस्तर लेटकर जावोखेर सिंदेराव के खिलाफ वापसी की। सिंदारोव बिस्तर के ठीक सामने बैठे थे, जो शतरंज के खेल के लिए एक बेहद असामान्य स्थिति थी। ऐसी ही एक घटना 1985 के टिलबर्ग टूर्नामेंट में टोनी माइल्स के साथ हुई थी, जहां पीठ के तीव्र दर्द के कारण उन्होंने मसाज बेड पर लेटकर खेला था। ये मैच इस दौर का सबसे रोमांचक मुकाबला साबित हुआ। काले मोहरे से खेल रहे सिंदेराव ने स्पष्ट बढ़त हासिल कर ली, जबकि फिरोज अजा को मुश्किल परिस्थितियों में बचाव करना पड़ा। पिछले दो मैच हार चुके फ्रांसीसी खिलाड़ी ने कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के विजेता के खिलाफ ड्रॉ हासिल करने में कामयाबी पाई। ये नतीजा उनके आत्मविश्वास के लिए मददगार साबित हो सकता है, खासकर मैच की परिस्थितियों को देखते हुए। कारुआना के खिलाफ उनका स्थगित चौथे दौर का मैच मंगलवार को खेला जाएगा, जब बाकी खिलाड़ियों को आराम का दिन मिलेगा। बोगदान डेनियल डीएफ और मैक्सिम वाचिए लागरेव भी क्रमश फेबियानो कारुआना और जॉर्डन वैन फॉरेस्ट के खिलाफ सफेद मोहरे के साथ बेहतर स्थिति में पहुंच गए थे, लेकिन महत्वपूर्ण क्षणों में दोनों में से कोई भी सबसे सटीक चाल नहीं चल पाया। अनीश गिरी और विंसेंट कीमर ने बर्लिन वॉल गेम में प्रवेश किया, जिसमें गिरी ने शुरुआती चालों में मामूली बढ़त हासिल की। हालांकि डच ग्रैंड मास्टर ने बाद में स्थिति को ठीक से नहीं संभाला, जिससे कीमर को पहल करने का मौका मिल गया। खेल पूरी तरह से आक्रामक नहीं हो पाया, क्योंकि 32 चालों के बाद तीन बार दोहराव के साथ मुकाबला समाप्त हो गया। कीमर एकमात्र अग्रणी खिलाड़ी बने हुए हैं, जो गिरी, वैन फॉरेस्ट और प्रज्ञानंद से आधे अंक की बढ़त बनाए हुए हैं। अब आपको बता दें कि छठे दौर के लिए जोड़ियां किस प्रकार रहेंगी। फेबियानो कारुआना बनाम वेस्ली सॉ, अलीरेजा फिरोजा बनाम व्लादिमीर फेडोजेव, हंस नीमन बनाम मैक्सिम वाचिए लागरेव, जन क्रिस्टोफ डूडा बनाम आर प्रज्ञानंद, रेडोस्लाव बनाम जावो खेर सिंदारो। इसी के साथ अंक तालिका की स्थिति क्या है वो भी बता देते हैं आपको। सुपरचेस क्लासिक के पांचवें दौर के समापन के बाद विंसेंट कीमर 3.0 अंकों के साथ अंक तालिका में एकमात्र बढ़त बनाए हुए हैं। इनके बाद दूसरे नंबर पर प्रज्ञानंद रमेश बाबू हैं, जिनके 2.5 पॉइंट हैं, और इसी के साथ तीसरे स्थान पर हैं अनीश गिरी, जिनके भी 2.5 अंक हैं, और चौथे स्थान पर हैं जॉर्डन वैन फॉरेस्ट, उनके भी 2.5 पॉइंट हैं, और पांचवे स्थान पर है मैक्सिम वाचिए लागरेव, जिनके 2.0 पॉइंट हैं, छठे स्थान पर है वेस्ली, जिनके भी 2.0 पॉइंट हैं, और सातवे पायदान पर है फेबियानो कारुआना, जिनके 1.5 पॉइंट हैं, और आठवें स्थान पर है जावोखेर सिंदेराव, जिनके भी 1.5 पॉइंट हैं, और नवे स्थान पर है बोगदान डेनियल, जिनके 1.0 पॉइंट्स है, और जो आखिर पायदान पे है वो है अलीरेजा फिरोजा, जिनके भी 1.0 पॉइंट्स है।
1: चेस के बाद अब रुख करते हैं बैडमिंटन की ओर, जहां पर भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने शानदार उपलब्धि दर्ज की है। भारत के हरिहरन अमरा करुणन और एम आर अर्जुन की पुरुष युगल जोड़ी ने फ्रांस की सातवें वरीय जोड़ी क्रिस्टो पोपोव और तोमा जूनियर पोपोव को 21-19, 21-15 के सीधे सेटों में हराकर मलेशिया मास्टर सुपर 500 के दूसरे दौर में जगह बना ली है। और शिवाज, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये वो खिलाड़ी हैं जो फ्रांस की जोड़ी, जिसने बहुत बार भारतीय खिलाड़ियों को हराया है, और सातवीं वरीयता ये जोड़ी थी, और भारतीय जोड़ी की बहुत अधिक उनकी वरीयता नहीं उनको दी गई थी, लेकिन वो कहते हैं ना, अगर आप मेहनत करो तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, और वही करके दिखाया है हमारे इन खिलाड़ियों ने।
0: बिल्कुल अजय जी, बहुत सही बात बोली आपने।
1: और जिस तरह से बैडमिंटन में मलेशिया मास्टर्स में जो अन्य मुकाबले खेले जा रहे हैं, वहां पर आज जो मुकाबले खेले गए उसमें जो भारत के खिलाड़ी हैं, अश्मिता चालिया ने चाइनीज ताइपे की खिलाड़ी के साथ पहला सेट वो हार गई थी 23-21 से, उसके बाद उन्होंने वापसी की और 16-21 से वो मुकाबला जीता। दूसरे सेट में भी और तीसरे सेट में भी वो 21-16 से आगे रहीं, तो कुल मिलाकर वो आज क्वालिफायर ये मुकाबला खेल रही थी, तो उसमें वो अब आगे बढ़ गई हैं। वहीं दूसरी ओर भारत के जो अन्य खिलाड़ी थे उसमें भी कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने बहुत शानदार अपना प्रदर्शन किया है, लेकिन सबसे बड़ी जो बात थी वो तो यही थी जो मैंने आपको बताई। और वहीं दूसरी ओर मलेशिया के साथ भारत के एस रेड्डी और राधिका शर्मा के टीम के भी।

0: जो मुकाबला मिक्स डबल्स का ये मुकाबला खेला गया उसमें भारतीय खिलाड़ियों ने जीत दर्ज की है 21-15 और 21-17 से। सीधे सेटों में मलेशियाई टीम को भारतीय खिलाड़ियों ने हरा दिया, भारतीय मिक्स डबल टीम ने हरा दिया। तो ये दर्शाता है कि अब चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई भी मंच हो, वहां पर भारतीय खिलाड़ी पीछे नहीं हटते हैं और
1: जी।
0: लगातार जीत दर्ज करते हैं। तो शिवांश, एक समय था जब हमारे खिलाड़ी दूसरी जगहों पर जाते थे तो ये इस कहा जाता था कि भारतीय खिलाड़ी आए हैं, ये भी देखने आए हैं, लेकिन आज वो समय है जब भारतीय खिलाड़ी किसी मंच पर या किसी टूर्नामेंट में खेलने जाते हैं, हर किसी खेल में, तो आज वो पदक के प्रबल दावेदार होते हैं।
1: ये भारत ने बहुत बड़ा अचीवमेंट प्राप्त किया है।
0: और ये खेलों के क्षेत्र में जो क्रांति आई है, इसमें एक बहुत बड़ा योगदान भारत के जो लगातार हमारे पेरेंट्स, जिनको हम कहें कि जो अपने बच्चों को खेलों के प्रति प्रेरित कर रहे हैं, और सरकार भी, भारत सरकार भी उसमें पूरा योगदान दे रही है। बहुत सारी स्कीमें भारत सरकार की ऐसी हैं जो खिलाड़ियों के पक्ष में हैं। और वहीं एक और अच्छी खबर है सेपेक टैक्रो के क्षेत्र से, जहां पर भारत ने म्यांमार को हरा दिया है और फाइनल में जगह बना ली है। सेपेक टैक्रो ISTAF वर्ल्ड कप क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि इस मुकाबले में चार चार खिलाड़ियों की टीम थी और इसमें भारतीय टीम ने म्यांमार को हराते हुए सेमीफाइनल में म्यांमार को हरा दिया है और अब जगह बना ली है फाइनल मुकाबले में। इस मुकाबले में म्यांमार और भारत के बीच जो ये मुकाबला खेला गया, इसमें 8-15 से पहला सेट जीता म्यांमार ने, दूसरे सेट में पहला सेट जीता भारत ने, दूसरे सेट में म्यांमार ने कमबैक किया, 17-14 से उन्होंने पहला सेट, दूसरा सेट जीता, लेकिन तीसरे सेट में भारतीय टीम ने कोई भी कोताही नहीं बरती और 9-15 के बड़े अंतर से म्यांमार को हराते हुए 1-2 से ये मुकाबला जीत लिया है। और जिस तरह से ये मुकाबला खेला गया तो निश्चित तौर पर माना जा रहा था, क्योंकि म्यांमार भी बड़ा अच्छा खेलते हुए आ रहे थे और माना जा रहा था कि भारतीय टीम के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, लेकिन जिस तरह से ये मुकाबला खेला गया उसमें लगा कि भारतीय टीम बहुत ही सक्षम है। और सेपेक टैक्रो, मैं अपने सुनने वालों को बता दूं, एक ऐसा खेल होता है जिसमें एक नेट है जिसकी हाइट तकरीबन 6 फुट के आसपास होती है और एक गेंद होती है जिसको इस तरह से बनाया जाता है कि वो पैर पे लग के काफी तेजी से ट्रैवल करती है, और इसको एक जैसे हम वॉलीबॉल खेलते हैं हाथों से, ठीक उसी के तरह ये खेला जाता है, लेकिन इसको खेला जाता है पैरों से। तो शिवांश, पैरों से एक नेट के पार गेंद को वापस पहुंचाना है, इसमें स्मैश भी लगते हैं, इसमें ड्रॉप भी लगते हैं, इसमें लाइन पर भी गेंद डाली जाती है, इसमें नेट पर भी गेंद डाली जाती है, तो इतना टेक्निकल ये खेल है। इस खेल में, सेपेक टैक्रो में, खास तौर से अच्छी बात यह है कि इसमें आपकी एजिलिटी भी है, इसमें आपकी स्पीड भी है, इसमें आपकी एंड्योरेंस भी है और इसमें स्ट्रेंथ भी है।
1: जी बिल्कुल।
0: तो ये इस एक ऐसा खेल है जिसमें लगातार भारत आगे बढ़ता जा रहा है। और विश्व चैंपियनशिप दिल्ली में आयोजित हुई थी, उस समय हमने बात की थी भारतीय टीम के कोच, तो उस समय उन्होंने बताया था कि हम अभी उस स्थिति में हैं कि कभी भी हम एशिया में एक बड़ा नाम बन के उभर सकते हैं, और आज वो बात सत्य साबित होती हुई लग रही है। और वहीं जिस तरह से कुआलालंपुर में मुकाबला खेला गया और सेपेक टैक्रो की टीम अब भारतीय टीम चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में पहुंच गई है, जहां उनका मुकाबला मेजबान जो कुआलालंपुर में ये मुकाबला खेला जा रहा है, मलेशिया इसकी मेजबानी कर रहे हैं, तो उनसे अब भारतीय टीम को ये मुकाबला खेलना है। और जिस तरह से भारतीय टीम की परफॉर्मेंस रही है तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और विश्व के जो सेपेक टैक्रो के जनरल सेक्रेटरी हैं अब्दुल हलीम कदार, उन्होंने भी भारतीय टीम को बहुत मुबारकबाद दी है भारतीय टीम के इस शानदार परफॉर्मेंस पर। और सेपेक टैक्रो एक ऐसा खेल है जिसमें आपकी फिटनेस भी हो जाती है, आपकी एंड्योरेंस भी बढ़ती है और खेलने का भी बहुत अच्छा मौका मिलता है। तो अगर कोई सेपेक टैक्रो को देखे या खेले तो उसके लिए एक अलग ही जोश का अनुभव होता है। और जिस तरह से शिवांश, सेपेक टैक्रो में तैयारी की जाती है उसमें बहुत सारी स्ट्रेचिंग्स हैं, उसमें योगा का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ब्रीदिंग पावर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सेपेक टैक्रो एक ऐसा खेल है जिसमें अगर हम बात करें तो हेड टू टो, यानी कि सिर से लेकर पैर तक हमारे सभी मसल्स का इस्तेमाल होता है, और उसमें स्ट्रेटजी भी बनती है, उसमें हमारी एक जिसे हम क्या रणनीति
1: जी
0: बनाते
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: साथ ही हम उसमें अपनी ये रणनीति भी बनाते हैं कि कौन सा खिलाड़ी, क्योंकि चार

0: खिलाड़ी खेल रहे हैं, उसमें कई अलग अलग इवेंट होते हैं, दो खिलाड़ियों का इवेंट भी होता है, एक टीम इवेंट भी होता है, तो उसमें अलग अलग अलग अलग हम अपने खिलाड़ियों को रोटेट भी करते हैं कि सर्विस कौन सा खिलाड़ी कराएगा, कौन सा खिलाड़ी वहाँ के आने वाले स्मैश को रोकेगा। तो बहुत ही अच्छा खेल है सेपेक टैक्रो, और इसमें अब भारतीय टीम फाइनल मुकाबले की तरफ आगे बढ़ गई है।
1: जी अजय जी, और देखा जाए तो इस पूरे स्पोर्ट में कितनी मेहनत की जाती है, आप बताइए। आपने बोला कि हेड से लेकर टो तक कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तो आप देखिए श्रोताओं की हर एक स्पोर्ट्स में जो भी स्पोर्ट्स पर्सन होता है उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जिस मुकाम पे वो पहुंचते हैं उसके पीछे उनकी बहुत मेहनत रहती है और तभी जाके वो सक्सेस पा पाते हैं।
0: क्योंकि सबसे बड़ी बात यही होती है कि जब आप किसी खेल को खेलते हो तो उसमें आपकी डेडिकेशन कितनी है, और डेडिकेशन तो आपको सभी खेलों में चाहिए होती है। और वहीं जो डेडिकेशन के साथ मुकाबले चल रहे हैं वो चल रहे हैं डीपीएल के। डीपीएल हालांकि दिल्ली में बहुत गर्मी है और इस समय, लेकिन फुटबॉल के जो दीवाने हैं वो लगातार अपने मुकाबले खेल रहे हैं। दिल्ली के अम्बेडकर स्टेडियम में ये मुकाबले खेले जा रहे हैं, और डीपीएल के मुकाबलों में जिस तरह से सारी चीज़ें हो रही हैं तो वो एक बताता है कि दिल्ली में बहुत अधिक क्षमता है फुटबॉल के क्षेत्र में भी, और बहुत सारे खिलाड़ी हमारे ऐसे हैं जो फुटबॉल में काफ़ी नाम भी कमा चुके हैं दिल्ली से निकलकर। और डीपीएल के मुकाबले दिल्ली के अम्बेडकर स्टेडियम में खेले जा रहे हैं। आप सबसे अनुरोध है कि आप अम्बेडकर स्टेडियम में जाएं, डीपीएल के मुकाबले देखें, दिल्ली प्रीमियर लीग फुटबॉल के मुकाबले, और फुटबॉल का आनंद उठाएं। ढेर सारी खबरें खेलों की है, लेकिन अब स्टूडियो घड़ी में बता रही है कि हमें आपसे विदा लेनी होगी। मैं अजय तोमर, मेरे साथ मेरे सहयोगी
1: शिवांश रक्षित
0: और कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ आपसे विदा लेते हैं।
1: नमस्कार।
2: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शुरू हुआ। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्री शामिल हैं। बैठक का उद्देश्य भारत और नॉर्डिक देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना है। इस सम्मेलन में ऊर्जा, समुद्री अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार, स्थिरता, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण पर चर्चा होगी। भारत और नॉर्डिक क्षेत्र के बीच फिलहाल व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता लागू है। सम्मेलन में भारत और इस क्षेत्र के देशों के बीच व्यापार और निवेश का विस्तार करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। नॉर्डिक ब्लॉक के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 19 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया है। सम्मेलन से भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बहुआयामी सहयोग को और विस्तार मिलने तथा पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आइसलैंड के प्रधानमंत्री सुश्री क्रिस्टन फ्रस्टर आईटी, फिनलैंड के प्रधानमंत्री शिपेटेरी ओरपो और डेनमार्क के प्रधानमंत्री सुश्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय प्रवासी समुदाय प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित है।
3: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रणनीतिक भागीदारी को और सुदृढ़ करना है। इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने तथा परस्पर हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का अवसर मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ का बस्तर मंडल अगले 5 वर्षों में देश का सबसे विकसित आदिवासी मंडल बनकर उभरेगा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2031 तक बस्तर के लोगों की औसत आय को 6 गुना बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त कराने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में इस क्षेत्र के विकास के लिए संयुक्त रूप से एक वैज्ञानिक रूपरेखा तैयार की है।

0: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के 7 जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
1: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने विभिन्न कानूनों मंचों पर विचाराधीन मामलों का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के लंबित मामलों की संख्या पहली अप्रैल 2024 में लगभग 5,000 से घटकर इस वर्ष 31 मार्च तक 2,600 रह गई है। उन्होंने बताया कि ईपीएफओ व्हाट्सएप अपनाने की योजना बना रहा है ताकि संपर्क सुविधा को बढ़ाया जा सके। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज आम आदमी पार्टी नेताओं अरविंद केजरीवाल और अन्य से न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट करने के मामले में आपराधिक अवमानना मामले में उनका पक्ष पूछा है। मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज से भी उनका पक्ष पूछा गया है। न्यायालय की पीठ ने इन नेताओं को मामले के संबंध में नोटिस जारी किया। उन्हें अपना जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ। निफ्टी 32 अंक गिरकर 23,618 पर आ गया। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एकदिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। उधर जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सुभद्रा रामचंद्रन। The third India-Nordic summit was held in Norwegian capital Oslo today. Prime Minister Narendra Modi, along with his counterparts from Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark, participated in the summit. With the Trade and Economic Partnership Agreement, TEPA, now in force, the summit aimed to deepen trade and investment ties between India and the Nordic region. Key areas of focus included technology and innovation, sustainability, renewable energy and digitization. On the sidelines of the summit, Prime Minister Modi held bilateral meetings with his counterparts from Iceland, Finland and Denmark. Prime Minister Modi reached Norway yesterday after completing his visits to UAE, the Netherlands and Sweden. From Oslo, Prime Minister Modi will travel to Italy today on the fifth and final leg of his five-nation tour. More from our correspondent covering the Prime Minister's visit.
3: Prime Minister Narendra Modi is all set to arrive today in Italy for the final stop of his five-nation tour, and the visit is expected to give a fresh push to India-Italy's strategic ties across several important sectors. Collaborations related to trade, investment and industrial partnerships are likely to be announced as both countries are looking to strengthen their economic engagement and exploring new areas of cooperation. Trade ties that are already on strong footing are expected to grow even further after the high-level talks during the visit. Suparna Bhatia for Akashvani from Rome.
2: Union Home and Cooperation Minister Amit Shah today said Bastar Division of Chhattisgarh will emerge as the country's most developed tribal region within the next 5 years. Addressing the media in Jagdalpur, Mr. Shah said that after making Bastar free from Naxalism, the centre and the Chhattisgarh government have jointly prepared a scientific roadmap for the region's development. Union Education Minister Dharmendra Pradhan today chaired a high-level meeting in New Delhi to assess preparations for the forthcoming NEET UG re-examination for admission to undergraduate medical education. Stressing the need for complete integrity and transparency in the conduct of the examination, Mr. Pradhan directed that all gaps identified in the earlier examination process must be comprehensively addressed and eliminated. The minister emphasized that re-examination must be conducted in a secure, seamless and foolproof manner under stringent security protocols. The Supreme Court today for the first time allowed euthanasia for rabid, incurably ill or demonstrably dangerous stray dogs, citing the need to protect human life and public safety. Meanwhile, the top court also dismissed pleas seeking a recall of its earlier order on the relocation

0: धनस्य प्रमुखः क्रेता च अस्ति। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य सायं सार्धसप्तवादने जयपुरे राजस्थान रॉयल्स दलं लखनऊ सुपर जायंट्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटन्स, सनराइजर्स हैदराबाद दलानि च पूर्वमेव प्ले ऑफ क्रीडायां प्रविष्टवन्तः। मुंबई इंडियंस लखनऊ सुपर जायंट्स दले स्पर्धातः बहिः गतवन्तः। पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स दलानि अधुनापि अंतिम स्पर्धायां सन्ति। अन्ते मुख्य वार्ताः पुनः एकवारम्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ओस्लो नगरे तृतीये भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागं भजितवान्, यस्योद्देश्यं प्रौद्योगिकी पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा रक्षा व्यापार क्षेत्रे सुसहकारं सुदृढीकरणमस्ति। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना स्वीडन देशस्य समकक्षीयेण उल्फ क्रिस्टर्सन इत्यनेन सह संयुक्त लेखे वैश्विक अनिश्चिततावधौ सहभागितायाः विषये अवधानं प्रदत्तम्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य सायंकाले जयपुरे राजस्थान रॉयल्स दलं लखनऊ सुपर जायंट्स दलं सम्मुखी करिष्यति इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, अब चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम का नाम ग्राम संसार।

0: ज्ञान संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को
1: राम राम। क्या बात है आरती, राम राम बहन पीछे रह गई।
0: हाँ भाई, राम राम के लिए मैं पीछे रह गई। पर देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज मंगलवार है और आज के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम के प्रायोजक है इंडियन पोटाश लिमिटेड।

0: मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक IPL की पॉलीहेलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद। IPL की पॉलीहेलाइट।
1: तो यमुना, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ गन्ना केवल एक फसल नहीं बल्कि लाखों किसानों की आय और रोजगार का आधार है। जैसे कि आप देखेंगे कि चीनी, गुड़, शक्कर और पशुओं के चारे तक में गन्ने का उपयोग जो है वह कई रूपों में होता है। तो गन्ना हम कह सकते हैं कि एक ऐसी फसल है जिसने लाखों लोगों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया है।
2: और एक बात और है आरती, कि गन्ने के साथ दलहन और तिलहन जैसी सह फसली खेती भी की जा सकती है और अतिरिक्त आय का साधन भी बन सकता है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि अन्य फसलों की तुलना में गन्ना पूरे साल, मतलब 10 से 12 महीने का फसल है, उससे भी काफ़ी लाभ होता है क्योंकि लगातार चलता रहता है। और इसकी बिक्री से एक मुश्त हमारी बड़ी रकम होती है वो प्राप्त होती है और इसीलिए इसे कैश क्रॉप भी कहा जाता है। और गन्ने से सिर्फ चीनी ही नहीं बनती बल्कि इसके खोई का, जो इसका पत्ता होता है, जो खोई निकलता है, उसका उपयोग मिलों में बिजली बनाने और जैविक खाद के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। और गन्ने की पत्तियां खेत में ही सड़कर जैविक खाद का काम करती हैं, जिससे खेत की मिट्टी की जो उर्वरता और नमी है वो भी बढ़ती है। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो

0: गन्ने की पाठशाला के आज अंतर्गत जो बताई जाएगी, बहुत सी ऐसी बातें हैं। और जो आज का हमारा जो विषय है फोन इन कार्यक्रम का, वो है गन्ना फसल का किसानों के लिए महत्व और लाभ। और आज के जो हमारे विशेषज्ञ हैं,
1: हमारे आज के जो विशेषज्ञ हैं वो हैं डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्रा, जो कि प्रभारी हैं केवीके अमरोहा कृषि विज्ञान केंद्र अमरोहा से।
0: और गन्ना फसल का किसानों के लिए कितना महत्व है और कैसा लाभ उनको प्राप्त होता है, इस विषय से संबंधित अगर आपकी कोई समस्या हो तो आप विशेषज्ञों से सीधे फोन पर बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं।
1: जी, तो फोन नंबर जो हमारे हैं वो हम बता देते हैं। हमारे फोन नंबर है 2342-10-82। हमारा दूसरा फोन नंबर है वो है 2342-10-83। तो दिल्ली से बाहर के जो भी श्रोता हमें कॉल करेंगे, वो उससे पहले आप जो हमारा फ़ोन नंबर है, इससे पहले आप 011 लगाएं। मोबाइल से पहले भी जो हमें कॉल कर रहा है तो वो भी 011 ज़रूर लगाएं।
0: बिल्कुल, और एक बार फोन नंबर और हम बता देते हैं, 011 जो दिल्ली से बाहर के हमारे श्रोता वो लगा सकते हैं। और जो फ़ोन नंबर है 2342-10-82 2342-10-83। और जो विशेषज्ञ हैं इस समय हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं और जो हमारे साथी हैं जो संचालन कर रहे हैं कार्यक्रम का, नरेश पारासर जी इस समय मौजूद हैं। तो क्यों ना आप चलें अपने विशेषज्ञ के साथ हम जुड़ते हैं और उनसे ही बात करते हैं कि क्या क्या लाभ है और क्या होना चाहिए।
2: डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्रा जी, फोन इन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत।
3: मेरा भी, सभी किसान भाइयों का जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनका मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उनको नमस्कार करता हूं।
2: डॉक्टर साहब, जैसे कहते हैं ना कि जो परिवार है, परिवार में जो माता पिता हैं उनके लिए जितनी भी संतान है उनकी,
3: जी
2: भाई लड़के लड़की सब एक बराबर होते हैं, सबका महत्व उनके लिए जो है वो बराबर ही है जी। इसी तरह से अगर हम किसान की बात करें, फसल कोई भी लगा ले किसान, तो उसका फसल का जो महत्व है वो किसान के लिए तो मेरे ख्याल से सभी फसलों का बराबर है, लेकिन अगर विशेष तौर पे, क्योंकि आज हम गन्ने की बात कर रहे हैं
3: जी,
2: तो गन्ने की अगर हम बात करें तो गन्ना किसान के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है, क्या क्या ऐसी अलग बात है बाकी फसलों से?
3: देखिए, गन्ना किसानों के लिए तो एक आय का जरिया के रूप में देखा जा सकता है कि किसान जो अपना देश जो कृषि प्रधान देश है और उसमें जो हमारे कुछ राज्य हैं जिनमें गन्ना काफ़ी क्षेत्रफल में उगाया जाता है, तो एक किसान के लिए ये होता है कि उसको एक गवर्नमेंट के द्वारा एक उसकी MSP निश्चित की गई है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसके लिए निश्चित किया हुआ है। तो किसान को एक तो ये रहता है कि भाई हमको, हम अगर गन्ना करते हैं तो उसके ऊपर मार्केट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि ज़्यादा होगा या कम होगा, उसको मालूम है कि गवर्नमेंट ने इसका निश्चित किया हुआ है और इस रेट पे हमारा जो कोई भी शुगर मिल होगी वो हमारा इस रेट पे गन्ना लेगी और एश्योर हमको एक निश्चित प्राइस हमको इसका
2: मिलेगा ही मिलेगा।
3: तो एक सबसे बड़ी जो किसान के में के दिल में या उसके उसमें दिमाग में ये बात रहती है कि हमको एक निश्चित प्राइस हमको इसका मिल जाएगा, तो एक तो ये कारण है। और दूसरा, अगर इसको हम अब किसान के हित के हिसाब से देखा और उसको एक मुश्त उसके खाते में, अब चूंकि पहले तो पैसा उसको सोसाइटियों के माध्यम से मिलता था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने ज्यादातर स्टेटों में ये सिस्टम कर दिया है कि उसको मोबाइल के माध्यम
2: बैंक में
3: जाता है, उसकी SMS के माध्यम से पैसा जाता है, पर्ची डेवलप होती है, वही मोबाइल पर खबर मिलती है और वहीं से पैसा उसके खाते में सीधा चला जाता है।
2: डॉक्टर साहब, इस पे चर्चा हम अपनी जारी रखेंगे। एक फोन आ गया है, देखते हैं कौन किसान भाई है फोन पे। हेलो, नमस्कार जी, कौन साहब बोल रहे हैं?
4: मैं रमेश चंद बोल रहा हूँ।
2: रमेश जी, कहाँ से बोल रहे हो?
4: डिस्ट्रिक्ट बागपत से बोल रहा हूँ
2: जी। बताएं रमेश जी, बताएं क्या सवाल है?
4: सर, आप मेरी बात का इतराज तो मानिए ना, मैं बात तो माफ को
3: पहले आप पहले थोड़ा सा अपने जहाँ मोबाइल है ना उसका आवाज कम करें, आपकी आवाज गूंज रही है और हम लोग
2: रेडियो से दूर हो जाओ, थोड़ा रेडियो से दूर हो जाओ।
3: जी
2: जी बोलिए।
4: हाँ जी,
2: वॉल्यूम कम करो रेडियो की रमेश जी।
4: रेडियो तो बहुत दूर हूँ मैं।
3: हाँ ठीक है, बताएं आप, बताइए
4: जी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपको, आप किसानों से कहते हैं कि भाई आप खेत में जहर डाल रहे, इस तरह पानी भी खराब हो गया, हवा भी खराब होगी, मिट्टी भी खराब होगी
3: जी।
4: आप जितने डॉक्टर लोग हैं, प्रशासन है, आप ये जितनी जहर की कंपनी है इन्हें बंद क्यों नहीं करवा देते?

0: ये बंद हो जाएंगी, बाजार में बिकने नहीं आवेगा तो किसान कहाँ से डाल देगा, कहाँ से प्रदूषण खराब हो जाएगा।
1: ठीक है रमेश जी, आपने आपका प्रश्न पूरा हो गया, कभी और कुछ कहना चाहेंगे
2: जी? बताएं।
0: ठीक है, आप हमें ये बात तो बताओ, हर उसमें यही बात होती है कि भाई किसान जहर डाल रहा। अरे किसान तो जी अपनी आमदनी की बचत है, जहर तो गिरेगा जी, तुम बनवा के भेजोगे यहाँ से, तुम ये कंपनी बंद करवा दो जितनी भी है।
1: आपकी आपका
2: जी रमेश जी, आपने जो सवाल किया है ना, देखिए तो इस पे पहले भी हम कृषि वैज्ञानिक जो आते हैं हमारे यहाँ, उस पे भी चर्चा हम करते रहते हैं। तो कृषि वैज्ञानिक ये कतई नहीं कहते कि भाई तुम बहुत ज्यादा डालो या बिल्कुल मत डालो, संतुलित उपयोग की बात करते हैं डॉक्टर साहब हम।
1: हाँ देखिए रमेश जी, आपकी अपना प्रश्न वाजिब है, अपनी जगह पे वाजिब है, आपके हिसाब से वाजिब है, लेकिन अगर उसको खेती के परिपेक्ष में या हम अपने देश के परिपेक्ष में देखें तो थोड़ा सा इसमें सुधार की आवश्यकता है। देखिए हम वैज्ञानिक लोग, कोई भी चीज़ बनी है, चाहे वो आपके पशुओं की दवा हो, चाहे वो हमारी खेती बाड़ी से संबंधित कोई चीज़ बनी दवा है, रासायनिक दवा है, या हम लोगों के लिए दवा बनी है, रासायनिक दवाएं हमारे लिए भी बनी हुई, हम लोग भी अंग्रेजी दवाएं खाते हैं, अंग्रेजी दवाएं क्या, रासायनिक दवाएं ही हैं वो भी, तो उनका एक निश्चित प्रयोग करने की सलाह दी जाती है और समय के साथ प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। अब ये नहीं है कि साहब आपको बुखार नहीं आ रहा, आपकी तबीयत खराब नहीं, आप फिर भी कहें कि साहब मैं तो पैरासीटामोल खाऊंगा, तो निश्चित है उसका दुष्परिणाम जो है आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। ऐसे ही हम लोग वैज्ञानिक लोग भी यही कहते हैं कि अगर आपकी गन्ना की फसल है या कोई अन्य फसल भी है, आप उसमें देखिएगा कि 5% तक कोई भी वैज्ञानिक ये नहीं कहता है कि आप इसमें किसी दवा का प्रयोग करें। जब आपका दवा बीमारी का या कीड़ों का प्रकोप 10% 15% के ऊपर बढ़ता है, तब उसको प्रयोग करने की सलाह दी जाती है और उसकी एक रिकमेंडेड डोज होती है। आप कोई भी दवा लेके आते होंगे, उसके ऊपर लिखा भी रहता है कि इसका इतने हेक्टेयर, फिर नीचे लिखा रहता है फिर भी वैज्ञानिक सलाह के अनुसार इसका प्रयोग करें। तो इसमें आप हमारे किसान भाइयों को, हम लोग काफी लोग प्रयास करते हैं कि किसान गोष्ठी के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, ये रेडियो आकाशवाणी के माध्यम से भी, कि उसकी एक निश्चित मात्रा जो दवा की रिकमेंड की गई है, संशोधित की गई है, उसको पानी में घोल करके सुबह या शाम के समय पर जब आप करेंगे, गर्मियों में और जाड़े में अगर है तो ओस हटने के बाद में अगर आप प्रयोग करेंगे तो उसका सही प्रयोग होगा और उससे कीड़े का भी या बीमारी का भी रोकथाम होगी और आपके पर्यावरण के उस पर भी कोई बहुत ज़्यादा विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।
2: बिल्कुल सही डॉक्टर साहब ने कहा है। और रमेश जी, जैसे आपने कहा कि भाई वैज्ञानिक भी बोलते हैं, हम भी कार्यक्रम में बोलते हैं, तो अगर आप लगातार हमारे कार्यक्रम सुनते हैं, हम कभी भी ये नहीं कहते कि भाई ज्यादा से ज्यादा आप रासायनिक दवाओं का प्रयोग करो, और ना ही वैज्ञानिक कहते हैं। संतुलित जो बात हम करते हैं, समसामयिक जो बात करते हैं, वो ये करते हैं कि देसी खाद और उसके बाद जो रासायनिक खाद की जितनी मात्रा, डॉक्टर साहब ने जैसे अभी कहा है कि जितनी मात्रा आपको बताई गई है उतनी ही मात्रा का प्रयोग करें, चाहे आप खाद की बात करें या दवाओं की बात करें
1: जी।
2: है, लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर साहब देखिए, हम सब, हमारी पृष्ठभूमि गांव की है, हम सब हैं गांव से, लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि किसान जो है अतिरिक्त, जो है यूरिया की बात करो, यूरिया का कट्टा मार दो भाई।
1: हाँ,
2: यूरिया का कट्टा मार दो भाई, तो ये जो है इससे आपका पैसा भी बर्बाद हो रहा है और फसल और जो जमीन की उर्वरा शक्ति है वो भी खराब हो रही है। तो आप ध्यान रखिए, धन्यवाद फोन करने के लिए। अगला फोन लेते हैं जी। हेलो,
3: हेलो,
2: नमस्कार जी।
3: नमस्कार जी, नमस्कार जी।
2: कौन साहब बोल रहे हैं?
3: आकाशवाणी टीम को पूरा नमस्कार है।
1: नमस्कार जी, आपका भी, आपको
2: नाम बताएं अपना।
3: नाम, मैं भूकंप शरण बोल रहा हूँ जी।
2: कहाँ से?
3: तरारा, ग्राम तरारा, जिला अमरोहा
2: जी। बताएं।
1: अच्छा, ग्राम तरारा जी के गांव से बोल रहे हैं।
3: हाँ जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमें ये बात बताओगे, जो सस्ती से सस्ती कोई दवा या कुछ चीज भी होगा, खाद या कुछ, जो किसान हमारी ईख जो है ना अच्छा गन्ना पैदावार हो और लागत भी कम लगे, ऐसी कोई दवा या कोई खाद बताओ हम।
1: देखो ऐसा है कि आप अगर आप कम लागत में और अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप जैविक या प्राकृतिक खेती की तरफ भी आइएगा।
3: तो बताओ जैविक खाद कौन कौन से हैं, हमें तो ये पता ना कि जैविक खादों में क्या क्या लगाएं अभी कोई समय।
1: नहीं, जैविक खाद के लिए अभी इस समय तो आपका जैसे गन्ना आपने बोया है, खुदाई पे चल रहा है, बुवाई के

0: समय पे अगर आप तो इस समय बहुत अगर कर सकते हो तो वर्मी कंपोस्ट है, गोबर की सड़ी खाद है, उसको
1: वो तो जो कुछ लगानी थी ना पहले लगा दी, इस समय क्या करें, इसमें ही क्या जैसा कुछ बड़ी भी हो गई है, मेड़ है जैसा मेड़ा करे तो उसके लिए क्या लगाएं, या फिर जो अच्छा कालापन बना रहा है उसके लिए क्या
0: उसके
1: लगाएं,
0: लिए
1: ये बताओ।
0: आप उसके लिए सबसे अच्छा मैं एक आपको सलाह दूंगा कि गाय के देसी गाय के गोबर से और गाय के मूत्र से और उसमें बेसन गुड़ के मिश्रण से एक जीवामृत बनता है।
1: अच्छा
0: हाँ, जीवामृत बनता है। और मेरे ख्याल से आपका ब्लॉक जो है हसनपुर पड़ता है, तहसील
1: हाँ
0: आपके
1: हसनपुर
0: हसनपुर
1: ब्लॉक है हमारा, कालेचला मिला जी।
0: हाँ, तो आप जीवामृत का प्रयोग करिएगा और इनको जीवामृत बनाइएगा और 8 से 10 दिन के अंतराल पर अगर आप छिड़काव लगातार करते रहेंगे तो निश्चित रूप से कम लागत में और आपको अच्छा गन्ने का उत्पादन मिल सकता है। और आपका गजरौला गजरौला में भी कृषि विज्ञान केंद्र आपका बना हुआ है, आप कृषि विज्ञान केंद्र पर आकर के कभी भी किसी भी वैज्ञानिक से सलाह ले सकते हैं और इसको जीवामृत बनाने की पूरी विधि आपको कृषि विज्ञान केंद्र पर या कृषि विभाग से आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत
1: आप
0: धन्यवाद
1: ही
0: जी,
1: बताओ,
0: बहुत
1: आप ही
0: बहुत।
1: बता दो जीव अमृत का क्या
0: अब
1: कर
0: देखिए
1: क्या बना
0: भाई साहब,
1: है।
0: एक और भी आपके किसान भाई हैं मैंने
1: लाइन पे।
0: आपको बताया कि जीवामृत और घनजीवामृत बनाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र बहुत नजदीकी किसान के आपका कृषि विज्ञान केंद्र बना हुआ है, आप कभी भी आ जाइएगा वहां पे आपको इसका समाधान मिल जाएगा।
2: बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। अगला फोन लेते हैं डॉक्टर साहब। हेलो हेलो हेलो,
3: हेलो,
2: नमस्कार जी, कौन
3: नमस्कार जी,
2: साहब बोल रहे हैं?
3: नवीन तेवतिया, नरेश भाई कैसे हैं?
2: बहुत बढ़िया तेवतिया जी, आप बताएं कैसे हैं आप?
3: बहुत बढ़िया हैं, और सारी पंचायत को राम राम।
0: आपको भी, आपको भी नमस्कार तेवतिया जी।
2: जी बताएं क्या सवाल है?
3: सवाल ये है कि जो पिछाई ईंख हुई हुई है
0: जी
3: लगभग 28-29 दिन की।
0: ओके, आपने इसका मतलब है कि अप्रैल लास्ट में वो ही है?
3: बिल्कुल बिल्कुल सर जी, अप्रैल लास्ट में
0: हाँ
3: जम रही है सारी।
0: ठीक है,
3: और उसमें सारी मतलब जम रही है।
0: बहुत बढ़िया।
3: अब उसमें किस उर्वरक का प्रयोग करें जिससे वो और बढ़वार पे आवे, और उसमें मूंग से फसली खेती के रूप में बो गई थी।
0: बहुत अच्छा, तो वो तो फलियां, वो तो अभी आपकी बढ़ रही, आपका 28-30 दिन की होगी, अच्छी बढ़वार कर रही होगी इस समय।
3: जी जी जी जी, 4-4 पत्ते की हो गई है मूंग।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो अब क्या चाहते हैं आप
3: उसमें? ये चाहते हैं कि क्या उसमें कोई एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर देना पड़ेगा और पानी उसमें कब देना चाहिए?
0: देखिए ऐसा है कि अगर आपकी मिट्टी हल्की दोमट मिट्टी है तो आप 10 दिन के अंतराल पे पानी जरूर लगाइएगा, और अगर आपकी चिकनी मिट्टी है तो 12 से 15 दिन के अंतराल पर पानी आप लगाएंगे। उसमें पानी की बात हो गई, पानी आप लगातार अच्छा पानी दे के चलेंगे तो उससे आप ब्यांत अच्छा कर लेंगे, अन्यथा आपका गन्ने का कि जो लेट बोया हुआ है उसका प्रभाव आपकी फसल पे पड़ेगा ही पड़ेगा। दूसरी बात, आप ये कहते हैं कि साहब इसको अच्छा उत्पादन हम कैसे बढ़वा लें, कैसे उसकी अच्छी पैदावार हमको मिल सके, तो आप कोशिश करिएगा कि 10 से 15 दिन के अंतराल पर उसमें जल घुलनशील उर्वरक आते हैं, आपका 18-18 का आता है, किसी का कहीं 19-19 का आता है, जिसमें नत्रजन, फास्फोरस और पोटाश तीनों चीजें होती हैं। इनका अगर आप 15 दिन के अंतराल पे, 15 से 20 दिन के अंतराल पर अगर आप छिड़काव करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका गन्ना जो पिछहत्ता गन्ना बोया है उससे भी अच्छा उत्पादन ले सकेंगे।
2: तो इंद्रवीर जी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है आप वैसे ही करो ताकि आपकी दोनों फसलें बढ़िया रहें, अच्छा उत्पादन आप उससे ले सके। बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। एक और फोन आ गया जी, पहले फोन ले लेते हैं।
4: The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line.
2: फोन कट गया है मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब। बहनों भाइयों, कार्यक्रम हमारा विशेष कार्यक्रम फोन इन चल रहा है गन्ने की पाठशाला, और आज का जो हमारा विषय है वो है गन्ना फसल को किसानों के का महत्व और उसके लाभ। गन्ना फसल से किसानों को क्या महत्व है, क्या लाभ है, ये हमारा विषय है। आज विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्रा जी, आप प्रभारी हैं कृषि विज्ञान केंद्र अमरोहा में। गन्ना फसल से संबंधित कोई भी समस्या हो, कोई जानकारी आप चाहते हो, चाहे वो खाद से संबंधित हो, दवाओं से संबंधित हो, जैसे अभी आप सुन ही रहे हैं कुछ हमारे फोन आए हैं इस तरह से, किसी भी प्रकार की समस्या आपको है गन्ने की फसल में, तो आप तुरंत फोन उठाइए और मिला दीजिए ये नंबर।

0: 2 3 4 2 1 0 8 2 23 42 10 42 दूसरा नंबर है 2 3 4 2 1 0 8 3 23 42 10 83। दिल्ली के स्टूडियो के नंबर हैं। आप दिल्ली के बाहर से बात कर रहे हैं, मोबाइल से बात कर रहे हैं, तो इन दोनों नंबरों से पहले आपको दिल्ली का जो एसटीडी कोड है 011 वो लगाना पड़ेगा। अनुरोध करते ही फोन आ गया जी डॉक्टर साहब।
1: चलिए, मैं हम तो चाहते ही हैं कि हमारे किसान भाई जो जो उससे जुड़े हुए हैं ज्यादा से ज्यादा हमसे प्रश्न पूछे।
0: जी हेलो।
2: हेलो, राम राम जी।
0: राम राम जी, कौन बोल रहे हैं?
2: मैं बोल रहा हूँ जिला हापुर नेवा से घनश्याम।
1: हाँ घनश्याम जी, बताएं।
2: सबको आकाश पानी को, डॉक्टर साहब को, नरेश भाई को, सबको राम राम।
1: आपको भी, आपको भी राम राम।
0: बताओ सवाल क्या है घनश्याम भाई?
2: एक सवाल सर ये है कि आजकल के किसानों को चलने का एकदम पैदा एकदम बढ़ा है।
0: हाँ।
2: और दूसरा सवाल मेरा ये है कि वो जो है ना ईद की गोभी होती है, तो उसमें उसकी बीज का पत्ता सूख रहा है गोब का।
1: अच्छा।
2: हाँ, ये बीमारी है उसको।
1: आप घनश्याम जी देखिएगा, आप उसके गन्ने की जो बीज की गोब सूख रही है तो आप उसको निकाल करके देखिएगा कि क्या उसके अंदर गोभ में कोई कीड़ा तो नहीं है, या कीड़ा भी हो सकता है, या उसके अंदर छोटे छोटे थ्रिप्स हो सकते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं बहुत। हाँ, थ्रिप्स। आप उसको सुबह के टाइम पे आप जाएं या शाम को सूर्यास्त के बाद में उस पत्ती को खोल करके देखेंगे, जब बिल्कुल सूर्यास्त, धूप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सुबह आप जाएं तो 6 बजे के 5:30 6 बजे करीबन देखेंगे, तो अगर उसकी पत्तियों में छोटे छोटे कीड़े अगर चिपके हुए हैं या उसमें दिखाई दे रहे हैं थ्रिप्स के, तो वो मतलब पत्ती को रस चूस करके सुखा देते हैं, तो उससे पत्ती सूख जाती है। और ऐसी, हाँ, तो आप इसको देखिएगा, अगर ऐसी स्थिति दिखाई देती है तो क्योंकि इस समय मौसम खुशक हो रहा है और इसमें खुशकी के समय पर जब तेज धूप पड़ती है तो इन कीड़ों का प्रकोप बढ़ता है, और इसके लिए रोकथाम के लिए सबसे अच्छा है कि आप थायोमेथोक्सम, एक दवा आती है थायोमेथोक्सम 25 WG की एक दवा, पर की पावर की एक दवा आती है, उसकी 250 ग्राम दवा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 600 से लेकर के 800 लीटर पानी में घोल बना करके अगर आप छिड़काव करते हैं शाम के समय पे धूप हटने के बाद में, तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। और कोशिश करिएगा कि इस, ये इसका छिड़काव जो फ्लैट फेन नोजल से किया जाए और गोब में पानी जाए।
0: डॉक्टर साहब, एक बात और पूछना चाहूंगा मैं, जैसे अभी चर्चा भी हो रही थी कि ज्यादा रासायनिक, तो कितने प्रतिशत अगर इफेक्ट है कीड़े का तो कितने प्रतिशत के बाद छिड़काव करें?
1: देखिए, मैंने ये बात पहले भी अभी भी मैंने कहा था, अगर 2%, 3%, 5% तक भी अगर कीड़ों का प्रकोप हो रहा है उस समय तक आपको दवा डालने की आवश्यकता नहीं है, और इसको कोशिश करना चाहिए जब कीड़े का प्रकोप बढ़ रहा है या बीमारी का प्रकोप बढ़ रहा है तो यूरिया की टॉप ड्रेसिंग हमको नहीं करनी चाहिए। यूरिया का जो हमारा रासायनिक उर्वरक है उसका प्रयोग कोशिश करें ना करें। अगर ये करेंगे तो निश्चित रूप से इनका इंसिडेंस जो है, प्रकोप है, वो बढ़ेगा, घटेगा नहीं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद घनश्याम भाई। अगला फोन लेते हैं जी। हेलो
3: हेलो,
0: नमस्कार जी।
3: नमस्कार जी,
0: कौन सा बोल रहे हैं?
3: मैं हरिश्चंद शर्मा, ग्राम कैली, तहसील खरदला, जिला मेरठ से, और सकोती टांडा मिल के हम कृषक हैं।
1: अच्छा, सकोती टांडा के।
0: शर्मा जी बताएं क्या सवाल है?
3: सवाल ये है जी, अब वो हमारा जो पहला गन्ना है बसंत कालीन वाला, उसमें कचरे जैसा कुछ आ गया, जैसा पहला प्रश्न था उसी से मिलता जुलता मेरा प्रश्न है। अब उसमें ज्यादा तो है नहीं, पर हाँ 5% से 10% तक वो बीच का वो गोब सूख रही है, एक तो ये है जी। और वो जो हमारा पेड़ी गन्ना है जिसमें 35 गन्ना लगाया हुआ हमने,
1: उसमें भी यही
3: पोजिशन है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, कृपया बताएं।
1: देखिए, अगर आपकी जो पेड़ी है अगर उसमें, या बावक गन्ना है उसमें कनशुआ की शिकायत आ रही है, क्योंकि ये जो कनशुआ अप्रैल से लेकर के मई तक देखने को मिलता है, इसमें बीज की गोब सूख जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है, ये इसकी पहचान है। और अगर इसको निकली हुई गोब को अगर सूंघेंगे तो उसमें सिर के जैसी तीक्ष्ण महक बदबू आती है, ये कनशुआ की पहचान है। इसके बीच में अगर आप खोल करके देखेंगे तो इसमें एक सब आप लाल मूंग की एक गिडार मिलेगी, वो ही इसको काट देती है। तो इसके लिए कार्बो, एक अगर आप पानी दे चलाना चाहते हैं, पानी दे करके कार्बोफ्यूरान, एक दवा आती है कार्बोफ्यूरान या फिप्रोनिल, इन दोनों में से कोई सी भी दवा मिल जाती है। तो आप फिप्रोनिल 0.6% की है, ये 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, या कार्बोफिरान है वो 18 से लेकर के 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खून में डाल करके और हल्का पानी चलाएंगे तो एक इसका प्रकोप किसी हद तक आप रोक लेंगे। ये तो आपके नीचे डालने के लिए है, और अगर ऊपर छिड़काव करना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया एमिडा क्लोरोपेट एक दवा आती है 17.5% की दवा है, इसकी 250 से लेकर के 300 ml दवा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 600 से लेकर के 800 लीटर पानी में घोल बना करके अगर छिड़काव करते हैं तो उससे भी आप कीड़ों का इनका प्रकोप कर सकते हैं, और यूरिया का भी प्रयोग ना करें।
0: अरे जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका फोन करने के लिए, अगला फोन लेते हैं जी। हेलो हेलो हेलो
4: हेलो,
1: हाँ बोले, आपकी आवाज थोड़ा कम आ रही है।
0: हाँ जी बोलिए, कौन बोल रहे हैं?
1: आप अपना रेडियो का वॉल्यूम कम करें।
4: हम कर लिया सर। नरेश जी नमस्कार, और विशेषज्ञ महोदय को भी हार्दिक प्रणाम।
1: हाँ नमस्कार जी,
0: अपना परिचय तो करा
4: दें। मैं जिला भिंडौर यूपी से बोल रहा हूँ सर।
1: हाँ बताएं।
4: पहले तो मैं याद करना चाहता हूँ, पहले ग्राम संसार देते थे वे जवाहर भाई और रामपाल जी।
0: जी जी जी,
4: उनकी याद आती रहती है जब आप प्रोग्राम देते हैं तो।
0: जी जी जी,
1: बहुत अच्छी बात है, बहुत
0: अच्छी बात है। ना अपना नाम नहीं बताया भाई साहब आपने।
4: मैं सत्यपाल जी, मेरा नाम।
0: जी सत्यपाल जी बताएं
4: जी। हमारे यहाँ क्षेत्र में 0238 गन्ना काफी बोते हैं अभी लोग, इसमें बीमारी भी काफी आती है
1: जी।
4: तो हमने ही बोया है, तो उसमें पोका बोइंग जो बीमारी आती है बरसात में, उसके लिए कोई अस्थाई समाधान है क्या?
1: देखिए ऐसा है कि आपका बिजनौर हो गया, अमरोहा है, या मेरठ का एरिया है, ये लगे हुए एरिया है, इन सभी में 0238 वेराइटी को हम लोग रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि कृषि विभाग, आपका गन्ना विभाग और शुगर मिल और कृषि विज्ञान केंद्र पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि 0238 वेराइटी को रिप्लेस किया जाए, और उसके स्थान पर दूसरी अन्य वेराइटियां जो है, आप 0118 है को जो 98
4: सर 35 भी लगाई है,
1: आप पहली बात तो इन वेराइटियों के ऊपर आप आए, 0238 वेराइटी को आप मत लगाइएगा, ये वेराइटी अब सस्टेन नहीं रही है, इसमें बहुत पोका बोइंग का, रेड रोट का, अन्य समस्याएं खड़ी हो गई बीमारियों की। तो दूसरा, अगर आपने बोया हुआ भी है गन्ना पोका बोइंग से बचना चाहते हैं तो इसके लिए आप मैंकोजेब एक दवा आती है,
4: मैंकोजेब सर,
1: हाँ 63% मैंकोजेब प्लस कार्बेंडाजिम 2%, कार्बेंडाजिम आती 12%, इनका 2 ग्राम दवा पर लीटर पानी के हिसाब से, यानी 1 लीटर पानी में 2 ग्राम दवा घोल करके, ये 2 दवाएं हैं, और ये एक मिली हुई 2 साल्ट की दवाएं हैं, मिली हुई मिलेंगी आपको बाजार से, कहीं से भी ले सकते हैं।
4: कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब
1: यस हाँ जी। और इनकी 2 ग्राम दवा को पर लीटर पानी में घोल बना करके उसके हिसाब से छिड़काव करेंगे। सामान्यतः 1 लीटर, 1 बीघा जो आपका होगा या 1 एकड़ है, तो उसमें लगभग आपका 15 से लेकर के 20 लीटर तक पानी आपका लगता है, तो उस हिसाब से छिड़काव करें, और छिड़काव कोशिश करें कि शाम के समय पे 3-4 बजे के बाद छिड़काव करेंगे तो आपको अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा।
4: सर कितने छिड़काव करने पड़ेंगे, कितने?
1: देखिए कोशिश, अगर एक छिड़काव से आपको किसी हद तक आप हो, एक देखिए एक छिड़काव से पूरी तरह से मैं समझता पोका बोइंग को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह है कि एक छिड़काव आप करेंगे तो 60-70% तक आपका पोका बोइंग, अगर आप ढंग से कर देते तो 60-70% तक आप पोका बोइंग को कंट्रोल कर लेंगे, और उसके बाद में अगर दूसरा छिड़काव करने की जरूरत पड़ती है तो COC कॉपर ऑक्सी क्लोराइड एक दवा आती है, 2.5 किलोग्राम, 2.5 COC जो है 50%,
4: ये तो सर लगाई थी हमने कॉपर ऑक्सी क्लोराइड,
1: हाँ ये दवा भी आपकी पोका बोइंग को किसी हद तक कंट्रोल करती है, ये दवा, ये भी मतलब अच्छी कारगर दवा है।
4: इसका सही समय क्या सर, मतलब छिड़काव का कितना बड़ा पौधा होना चाहिए?
1: देखिए पौधा तो आपका इसका देखिए इंसिडेंस जब आपको देख रहे हैं, वैसे सामान्यतः है ये बीमारी जो आपके जुलाई से शुरू होकर के अगस्त तक जाती है, ये पहली स्टेज में इसके धब्बे आने शुरू होते हैं, दूसरे में गोब सूखने, बीच की जो आपकी गोब है वहां पर सड़न पैदा होती है, और उसके बाद में सड़ करके ये कट सी जाती है चाकू से, तो ये इसके पोका बोइंग के लक्षण है, और इसमें सबसे पहले मैंने आपको मैंगो जाए और इनका दवा बताइए, उसके बाद में COC का छिड़काव करेंगे तो आप इसको रोकथाम कर सकते हैं।
0: सत्यपाल भाई फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ये कार्यक्रम आगे भी ऐसे चलता रहेगा, लेकिन अब थोड़ा सा हमें विश्राम लेना पड़ेगा।
1: ठीक है भाई, आप किसानों की और हम लोगों का सुझाव है तो निश्चित रूप से हम वो लेते हैं।
5: किसान भाइयों।

0: दे। आईपीएल की किसान मित्र जैविक खाद, मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए। फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद। आईपीएल की किसान मित्र जैविक खाद।
1: अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें आईपीएल की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर। शीघ्र बुक करें।
2: ग्राम संसार कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और इसमें जो विषय चल रहा था गन्ना फसल का किसानों के लिए महत्व और लाभ, और ये कार्यक्रम हमारा अनवरत जारी रहेगा समाचार के बाद कृषि जगत कार्यक्रम में।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और आप सुनिए समाचार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नॉर्डिक साझेदारी का मजबूत स्तंभ है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के बाद नॉर्डिक प्रधानमंत्रियों के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत नॉर्डिक संबंधों में मजबूती आई है।
5: पिछले एक दशक में नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद से कोई समझौता नहीं होगा।
5: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे, और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत हैं कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
4: इससे पहले श्री मोदी भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ शामिल हुए। सम्मेलन का उद्देश्य भारत और नॉर्डिक देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना था। सम्मेलन में ऊर्जा, समुद्री अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार, स्थिरता, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण पर चर्चा हुई। सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आइसलैंड की प्रधानमंत्री सुश्री क्रिस्तरून फ्रॉस्टोदॉटर, फिनलैंड के प्रधानमंत्री श्री पेतरी ओर्पो और डेनमार्क की प्रधानमंत्री सुश्री मेता फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीक नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीन दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रणनीतिक भागीदारी को और सुदृढ़ करना है। इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने तथा परस्पर हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का अवसर मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले पांच वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों की औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें आगामी नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों का जायजा लिया गया। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए और उन्हें खत्म किया जाए। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा है कि वो पश्चिम बंगाल में आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर इस क्रूर घटना में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एक दिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एक दिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। अंक तालिका में 5वें स्थान पर मौजूद राजस्थान रॉयल्स ये मैच जीतकर प्लेऑफ की अपनी दावेदारी मजबूत करना चाहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम का नाम कृषि जगत।
6: आप सुन रहे हैं हमारा विशेष फोन इन कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला। इसके प्रायोजक है इंडियन पोटाश लिमिटेड।

0: लाइट।
1: मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक IPL की पॉलीहैलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद।
0: IPL की पॉलीहैलाइट।
2: किसान भाइयों बहनों, जैसा कि आप कृषि जगत कार्यक्रम में भी सुन रहे हैं, सजीव फोन इन कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला के अंतर्गत गन्ना फसल का किसानों के लिए महत्व और लाभ। और इस समय हमारे साथ जो स्टूडियो में विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्रा, जो कि प्रभारी हैं कृषि विज्ञान केंद्र अमरोहा, और इनसे बातचीत कर रहे हैं, जो संचालन कर रहे हैं वो है नरेश पारासर हमारे साथी। तो जो हमारा फ़ोन नंबर है, एक बार हम आपको बता दें, फ़ोन नंबर है 2342-1082, 2342-1083। और जो दिल्ली से बाहर के निवासी हैं वो पिन कोड लगाना ना भूलें, 011। तो बढ़ते हैं स्टूडियो की तरफ, और आपकी कोई समस्या है गन्ने से संबंधित तो आप पूछ सकते हैं।
3: डॉक्टर मिश्रा जी, आपका फोन इन में एक बार पुनः स्वागत करते हैं।
4: मेरा भी सभी किसान भाइयों को राम राम।
3: डॉक्टर साहब, फोन आ गया तो पहले फोन ही ले लें।
4: चलिए, आप तो सवाल तो निश्चित रूप से, आज किसान हमारे बड़े जागरूक हैं, जो बार बार हमारे फोन पे बात कर रहे हैं।
3: जी हेलो,
5: नमस्कार जी।
3: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
5: मैं सतीश बोल रहा हूँ।
3: सतीश भाई कहाँ से?
5: हरियाणा से
4: जी। बताएं सतीश,
3: हरियाणा में कहाँ से? बताओ, जगह बताओ।
5: डिस्ट्रिक्ट भिवानी गांव का कर रहा
3: हूँ। भिवानी से, बताइए क्या सवाल है?
5: पर बात बढ़िया लगती है आपकी, बहुत ही बढ़िया लगती है, किसान तो अनपढ़ होते हैं।
3: जी धन्यवाद।
5: क्योंकि जी विकास तो जरूरी है ना, दवाइयों से किसी भी चीज का विकास हो फसल का।
3: जी जी,
5: इसलिए जी समाचार बीच में सुना, तो बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है।
3: चलिए धन्यवाद आपका, आप सारे कार्यक्रम सुनते हैं हमारे?
5: हाँ जी, लगा
3: देता हूँ। चलो कल सुबह भी सुनना, कल सतीश भाई कल भी सुनना, कल हमारा सुबह फोन इन कार्यक्रम है, बात फूलों की जो कार्यक्रम है ना।
5: हाँ जी,
3: वो होगा सुबह 10:10 से लेके 11 बजे तक। इसी
5: मैं तो थोड़ी बहुत लगा देता हूँ।
3: हाँ तो ठीक है, कल हमारा ये भी कार्यक्रम सुनना
5: जी।
3: जी जी जी।

0: और कोई सवाल है गन्ने से संबंधित आपका?
1: थोड़ी गर्मी की शिकायत है, इसलिए कनसुआ वगैरह।
0: थोड़ा बहुत अगर कनस्युआ का प्रकोप है तो आप थोड़ा वेट करिएगा और पानी लगाइएगा, रोग कंट्रोल हो सकता है, हो जाए। और मैं ये तो आपको कहूंगा ही कि आप प्राकृतिक खेती की तरफ अगर थोड़ा सा भी आपको रुझान है और आप उसमें दिलचस्पी रखते हैं तो मैं आपसे सुझाव दूंगा कि नीमाष्टक, एक इसका वो बनता है नीमाष्टक का, अगर आप छिड़काव करते रहेंगे। और नीमाष्टक जो है कई एक सत्पर्णी अर्क है, जैसे कई एक आपके पत्तों को लेकर के गाय के गोबर में मिक्स करके और उनको सड़ा करके फिर आप फसलों पर प्रयोग किया जाता है, तो उससे भी काफी हद तक आप जो आपकी कनस्युआ है या थ्रिप्स हैं, ऐसे जो छोटे छोटे कीट हैं, उनसे निजात पा सकते हैं, जिसमें आपका आक है, जामुन है, आपका नीम है और आपके अमरूद है, इनके पत्तों को लेकर के डेढ़ डेढ़ दो दो किलो पत्तों को लेकर के गाय के गोबर में सड़ाया जाता है, और सड़ाने के बाद में फिर उनको छान करके 1 किलो 1 लीटर ये आपका सत्पर्णी अर्क और उसमें 5 लीटर पानी के सादा पानी के में मिला करके आप छिड़काव करेंगे तो निश्चित रूप से इन छोटे छोटे कीड़ों से आप निजात पा सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है तो फिर आपको थाइमेथोक्सम है या आपका एमिडा क्लोरोपेड है, इनमें से कोई सा भी एक कीटनाशक 250 से 300 ml प्रति हेक्टेयर की दर से 600 से लेकर के 800 लीटर पानी में घोल बना करके शाम के समय पे छिड़काव करेंगे तो उससे भी आपके ये कनस्युआ जैसे बीमार रोग है वो कीट हैं उनसे आप छुटकारा पा सकते हैं।
2: तो सतीश भाई, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर प्रकोप कम है तो आप जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है उसके हिसाब से कीजिए, रासायनिक दवाओं पे मत जाइए, क्योंकि जरूरत पड़ने पे ही, अभी जो है हमने पहले भी बात की थी इस विषय पे, जरूरत पड़े तभी रासायनिक दवाओं का प्रयोग आपको करना है। अगर जैसे नुस्खा जो डॉक्टर साहब ने बताया उससे अगर नियंत्रण हो जाता
0: हाँ,
2: है।
0: और फिर इसका ये ऐसे नुस्खा भी अगर आप चाहते हैं तो आपका नजदीकी कृषि विभाग है या नजदीकी आपके कृषि विज्ञान केंद्र है तो वहां से भी आप इसको विस्तृत जानकारी, क्योंकि कार्यक्रम में समय का अभाव होता है इसलिए हम विस्तृत आपको बहुत ज्यादा उस पर नहीं कर सकते, लेकिन एक संक्षेप में आपको बता दिया कि नीमाष्टक है, सत्पर्णी अर्क है, ये ऐसे जो है कीटों के लिए विशेष करके जो चूषक कीट है या काटने वाले कीट है इनको, इनकी रोकथाम किया आप इनसे कर सकते हैं और इससे हमको फसलों को कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, छिड़काव करने के वाले के ऊपर भी कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है और हमारा वातावरण भी शुद्ध और रहता वो भी दूषित नहीं होता है। तो हम चाहते हैं कि थोड़े थोड़े किसान अगर आप जागरूकता लाएं प्राकृतिक खेती की तरफ भी, तो इससे हम काफी हद तक रासायनिक दवाओं को उसका क्या जो वो है उसका भी हम
2: पैसे भी बचेंगे डॉक्टर साहब, वातावरण भी बचेगा, अपनी
0: हाँ।
2: सेहत भी अच्छी रहेगी और जो हमारी धरती माँ है उसकी सेहत भी
0: उसके
2: अच्छी रहेगी।
0: हाँ ये भी तो ये हम बीच बीच में किसानों को ये इसके लिए भी जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि किसान भाई नीमाष्टक है सत्पर्णी अर्क का भी प्रयोग करें।
2: सतीश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जो पहला सवाल था मेरा वो तो अधूरा ही रह गया। आपने
0: जी
2: बताया कि जो एक तो नकदी फसल है, नकदी के यानी जो आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस पे वो तो मिलेगा ही मिलेगा आपको,
0: मिलेगा ही मिलेगा
2: आपने वो अगर मिल में पहुंचा दी, पर्ची आपकी बन गई, तो वो आपके खाते में आना ही आना है।
0: हाँ, खाते में सीधा पैसा
2: ठीक
0: आता है
2: है
0: तो
2: जी
0: किसान को इसमें हिसाब रखने की कोई वो नहीं रहती है, सीधा
2: जी
0: उसके खाते में पैसा आ जाता है।
2: जी
0: तो एक एश्योर एक अमाउंट जो उसको 1 एकड़ है या 1 हेक्टेयर है या 1 बीघा है तो उसको सीधा पैसा उसको खाते में मिल जाता
2: डॉक्टर
0: है।
2: साहब, एक फोन और आ
0: फिर
2: गया।
0: आ गया
2: हाँ जी,
0: किसान का भाई, किसान
2: हेलो
0: भाई
1: हेलो,
2: नमस्कार जी, कौन
1: नमस्कार जी।
2: साहब बोल रहे हैं?
1: हाँ, हरियाणा से वेद प्रकाश नंबरदार, आप दोनों को नमस्कार।
0: नमस्कार जी
2: नमस्कार
0: भाई
2: जी,
0: साहब, नमस्कार
2: नमस्कार जी।
0: आपको भी।
2: हरियाणा में कहाँ से हो वेद प्रकाश जी?
1: हाँ, जिला चरखी दादरी बिरी कलां।
2: चरखी दादरी जी, बताएं क्या सवाल है?
1: एक जैसे ईख में ज्यादा पानी आने से कुछ नशा सा फूटता है ना, एक नंबर। दो, नीचे से कुछ पोरी रेड और काली हो जाती है, तिरुण में तरेड़ फट जाती है, और फिर तरेड़ फटी तो उसके अंदर लाली दिखती है। यह जी
0: देखो ऐसा है कि गन्ना हमारा एक अपना सेल्फ मतलब उसके प्रोपेगेशन का एक माध्यम भी है। तो जब वो गन्ना कहीं पे उसको पानी ज्यादा मिलता है या पानी डूबा जाता है तो उससे नीचे की जो आंखें होती हैं वो स्प्राउट जम जाती है, क्योंकि उसका पत्ता खत्म हो जाता है तो वहां से आंख फूटना शुरू हो जाती है। और आंख जब कोई स्प्राउट

0: डाउन करती है तो उसमें से जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं,
1: हाँ
0: और ये मतलब लक्षण जो है आपका गन्ने की उसकी क्वालिटी को, उसके अगर बीज के लिए कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी खराब कर देता है। आप नीचे का गन्ना अगर जम जा नीचे जड़ें निकल जाती हैं तो उसको गन्ने के बीज के लिए इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। तो एक तो इसलिए आप कोशिश करें कि ऐसी जगह पर गन्ना, लेकिन ये भी बात है कि अगर गन्ने के स्थान पर अगर आप वहाँ पे धान धान की जहाँ पे पानी ज़्यादा आ जाता है वहाँ पे धान की फसल लेंगे तो थोड़ा सा आपको ये इस चीज़ से बचाव हो सकता है, धान का चयन कर सकते हैं जहाँ पे पानी ज़्यादा रहता है। तरेड़ वाली बात आती है, देखिए इसमें ऐसा है कि आप गन्ने की बुवाई के समय पर ही कार्बोफ्यूरान या फिप्रोनिल दोनों में से कोई सी भी एक दवा का अगर आप रुकाव करके चलते हैं 18 से लेकर के 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, तो ये जो कीट हैं आपका जड़ बेधक है, गुरदासपुर बोअर है, इनसे किसी हद तक आप अपनी फसल को बचा सकते हैं।
2: वेद प्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला फोन लेते हैं डॉक्टर साहब। हेलो
0: जी,
3: हेलो,
2: नमस्कार जी।
3: नमस्कार सर,
2: कौन साहब बोल रहे हैं?
3: सचिन बात कर रहा हूँ जिला संभल से।
0: जी हाँ बताएं सचिन जी।
3: अरे सर मैं हम ये जानना चाह रहे थे कि गेहूं काट के हमने गन्ना बोया था,
0: बिल्कुल ठीक है,
3: तो उसपे वो कुछ कल्ले तो जमी आए हैं ले ऊपर ऊपर के, लेकिन जो नीचे जड़ का गन्ना था वो नहीं जमा, तो उसका कोई इलाज है?
0: देखिए ऐसा है कि इसका इलाज ये है कि आपने, हम लोग बार बार कहते हैं, हमारा वहाँ पर आपके संभल में कृषि विज्ञान केंद्र भी है, कृषि विभाग भी है, गन्ना विभाग भी है। आपने देखिए, हम लोग फिर आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि गन्ने में का नीचे का 1/3 हिस्सा कभी भी बीज में इस्तेमाल ना करें। जो भी हमारे किसान भाई इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, मेरी उनसे पुरजोर कोशिश है, अनुरोध है कि नीचे का गन्ना का 1/3 हिस्सा बुवाई गन्ने के बीज में इस्तेमाल ना करें। अगर आप करेंगे तो आपके जो सचिन भाई जो हमारे बता रहे हैं उसी तरह की समस्या उनके सामने खड़ी होगी। अब आप एक काम कर सकते हैं कि जहां पे आपने कहीं पे आपको जो आपके जनपद में पौध बनाता है, जो ट्रे में पौध तैयार करता है बर्ड चिप के माध्यम से, वहां से आप पौध लेकर के और पानी जब चलाएं, जब भी पानी आप लगाएं उस समय पे जो खाली स्थान बना हुआ है उन पे उन पौधों को रोपित कर देंगे तो आपकी गैप फिलिंग जो है, जो खाली स्थान बना है वो उनकी पूर्ति हो जाएगी और आपको प्रति एकड़ या प्रति बीघा जो पौधों की संख्या होनी चाहिए वो पौधों की संख्या आपको मिल जाएगी। और अगर आप बीज डाल के करेंगे तो फिर उनमें बहुत अंतर हो जाएगा, वो आपका कम से कम 15 दिन 20 दिन या 1 महीने का जो गन्ना है उसमें वो उस अंतर की भरपाई आप नहीं कर पाएंगे।
2: सचिन भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका फोन करने के लिए। तो डॉक्टर साहब फिर कोई फोन आए उससे पहले अपनी चर्चा को फिर आगे बढ़ा लेते हैं।
0: तो मैं ये कहना चाह रहा था कि एक तो उनको पैसा मिल जाता, दूसरा किस, अब हम देश के परिप्रेक्ष्य में देखें,
2: जी जी
0: देश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें गन्ना हमारे लिए क्यों नगदी फसल के रूप में है, तो किसान को तो एक नगद पैसा मिल गया,
2: मिल ही जाता है जी।
0: हाँ, दूसरा परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें कि हमारे देश की जो इंडस्ट्री है वो गन्ने पर पूरी तरह से निर्भर है, हम केवल गन्ने को चीनी के रूप में ही न देखें या गुड़ की खंडसारी के रूप में ही न देखें, गन्ने के ऐसे कई एक चीजें उत्पाद बनते हैं जो कि हमारे दैनिक कार्यों में, मेडिसिन में, कॉस्मेटिक आइटम्स में या अन्य कोई चीजें हैं।
2: डॉक्टर साहब आप तो सुना है कि जो गाड़ियां चलेंगी उसमें भी तेल,
0: हाँ एथेनॉल, भाई एथेनॉल गवर्नमेंट ने 20-25% तक ब्लेंडिंग करने की यानी उसको मिलावट करने की परमिशन दी हुई है।
2: जी, जी।
0: तो अब आप देखेंगे कि अब इस हिसाब से देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि चीनी या गुड़ जो है वो हमारा सेकेंडरी प्रोडक्ट रह गया है। अब आप ये देखेंगे जितना भी एल्कोहल बनाया जाता तो एल्कोहल बेस्ड जितनी भी मेडिसिन है उनमें हमारा गन्ने का ही एल्कोहल इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए गन्ने के ऊपर हमारी जो देश की इंडस्ट्री है वो भी निर्भर है। अगर गन्ना का प्रोडक्शन गड़बड़ा जाता, पिछले 2-3 सालों से आप देखेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को गन्ने का एवरेज प्रोडक्शन है वो काफी नीचे गिरा है, और उसके पीछे कारण रहा कि जो 0238 जैसे हमारे अभी किसान भाई बता रहे थे, वो गन्ने उसने हमारे किसानों की पैदावार को काफी प्रभावित किया, उसके पोका बोइंग का प्रकोप ज्यादा होता है, उसके अंदर रेड रॉट की समस्या आती है और परिणाम ये होता है कि किसान को उत्पादन कम मिलता है।
2: एक फोन और आ गया डॉक्टर साहब, बात करते हैं। हेलो,
4: हेलो जी डॉक्टर, नमस्कार।
0: हाँ नमस्कार जी,
2: कौन सा बोल रहे हैं?
4: पवन, जिला संभल उत्तर प्रदेश।
0: जी हाँ, पवन जी बताएं।
4: अभी हमने इसमें 2013-2038 में फटेरा और डीएपी और यूरिया डाला है
0: जी,
4: तो वो बेरी बहुत है, क्या घनी हो सकती है उससे डीएपी और यूरिया?
0: नहीं देखिए ऐसा है कि घनी नहीं कर सकते हैं आप, ये देखिए

0: जनपद में कोई पौध तैयार करता है गन्ने की ट्रे में, आप वहां से पौध लेकर के उन स्थान पर उसको पानी जब चलाते हैं, शाम पानी चलाएं तो उसी समय पर उनको रोपित कर दें, तो उससे गैप फिलिंग की पूर्ति हो जाएगी।
1: पवन भाई बहुत बहुत शुक्रिया फोन के लिए। अगला फोन लेते हैं जी। हेलो
2: हेलो, नमस्कार।
1: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
2: मैं राकेश बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट शिमला, हिमाचल प्रदेश।
1: राकेश भाई बताएं क्या सवाल है।
2: मेरा ये सवाल है कि कौन कौन से गन्ने की जो किस्म होते हैं, और ऐसा हमारे लिए कौन सा गन्ना है तो हम अपने प्रदेश में लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा तापमान थोड़ा कम रहता है।
1: काफी कम रहता है आपका।
0: हाँ देखिए, आपका अब आप जनपद बताएं कि शिमला में आपका कौन सा एरिया है जहाँ पे आप गन्ना लेना चाहेंगे।
2: कोटखाई क्षेत्र।
0: देखो मुझे अब बहुत ज्यादा आपके वहाँ का टेम्परेचर का आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने उस जनपद में, क्योंकि जनपद में हर जगह पर कृषि विभाग है और कृषि विज्ञान केंद्र है, पूरे देश के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र कार्य कर रहे हैं, तो मैं आपको सलाह ये दूंगा कि वहां पर नजदीकी जो कृषि विज्ञान केंद्र है आपका, या कृषि विभाग या गन्ना विभाग कोई भी है आपका, उनसे एक बार सलाह जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आपके गन्ने जिले के अंदर या आपके एरिया में तापमान 25 डिग्री से नीचे आपका है, अगर तापमान रहता है तो गन्ने की खेती आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गन्ना जैसे 25 डिग्री से नीचे तापमान जाएगा, गन्ना आपका डोरमेंट हो जाएगा, यानी सुसुप्त अवस्था में चला जाएगा, और गन्ने की बढ़वार आपकी नहीं हो पाएगी। गन्ने के लिए औसत तापमान वो 25 से लेकर के 35 डिग्री के बीच में मिलना चाहिए। अगर ये तापमान नहीं रहता पूरी साल में, तो गन्ने की बढ़वा आप गन्ने की खेती उस जिले में नहीं करेंगे कर पाएंगे।
1: पवन राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका फोन करने के लिए। और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया है, पहले भी राकेश भाई से बात हुई है हमारी गन्ने के बारे में, तो 25 से नीचे वाले में तो थोड़ा परेशानी वाला समय
0: हाँ,
1: बन जाएगा।
0: देखिए अपने यहाँ पे भी देखेंगे कि जो हमारा दिसंबर का और जनवरी का महीना होता है, जहाँ तापमान औसत तापमान जो है 15 डिग्री के नीचे आ जाता है, वैसे ही गन्ना डोरमेंसी में चला जाता है,
1: जी जी
0: और
1: जी।
0: वो डोरमेंसी आपकी हमारी 15 फरवरी के आसपास तक रहती है। 15 फरवरी के बाद में वो डोरमेंसी ब्रेक होती है, सुषुप्त अवस्था खत्म होती है, तो ऐसी स्थिति में वहां पे गन्ना करना कोई उनके लिए लाभकारी नहीं है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि जितना हमारा हिली एरिया है, चाहे वो हिमाचल का है या हमारा जम्मू कश्मीर है या हमारा आपका उत्तरांचल का एरिया है या अन्य कोई प्रदेश है, तो वहां पे अभी कोई मेरी ऐसी जानकारी में कोई प्रजाति नहीं है
1: जो
0: कि जो
1: इतने
0: तापमान
1: तापमान को
0: तापमान
1: झेल
0: को
1: सके और बढ़वा ले।
0: और पैदावार दे
1: जी
0: सके।
1: जी जी तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि जो गन्ना है वो खाली मीठे के लिए नहीं इस्तेमाल हो रहा है, इसको इंडस्ट्री से जोड़ा गया है, इंडस्ट्री में इसका प्रयोग हो रहा है, तो ना केवल हमारे किसानों की और भी ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है कि अपने गन्ने की फसल की वो देखभाल अच्छे से करें। जैसे आप बात करते रहते हैं किसानों से,
0: जी
1: केवीके के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, हर बार आप बताते हैं कि भाई ध्यान रखो। जैसे अभी एक किस्म की बात आई है,
0: जी
1: हाँ, इतने दिनों से मैं सुन रहा हूँ इस बात को कि
0: जी
1: आप इसको अवॉइड करो, इसको
0: हाँ
1: अवॉइड करो,
0: बिल्कुल।
1: तो लेकिन किसान भाई फिर भी मान नहीं रहे हैं।
0: नहीं
1: कारण क्या है डॉक्टर साहब,
0: देखिए,
1: क्यों नहीं सुन
0: किसान
1: रहे?
0: किसान क्या है, देखिए कभी कभी किसान के साथ में एक टाइम एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वेराइटीज, यानी उसके पास में कभी समय नहीं होता है, और कभी कभी उसके पास में नई कोई प्रजाति है उसकी बुवाई की उपलब्धता नहीं हो
1: जी
0: पाती है,
1: जी
0: तो फिर ये देखता है कि अरे यार ठीक है चलो मेरे पास जो वैरायटी है मैं उसी को बुवाई कर देता हूँ, तो वो एक लेजीनेस भी किसान की परिलक्षित होती है। मैं यहाँ पे एक नरेश जी एक और बात आपके सामने शेयर करना चाहूंगा,
1: जी
0: जो अभी आपने देखा होगा भारत सरकार जो है बहुत जोर शोर से सीएनजी को प्रमोट कर रही
1: जी
0: है, और वो सीएनजी प्रोजेक्ट को प्रमोट करने के बाद में जो उससे वेस्ट निकलता है इसको FOM के रूप में जाना जाता है,
1: जी
0: उसको कहते हैं FOM, फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैनोर, लिक्विड और सॉलिड दोनों
1: जी
0: में आता है,
1: जी
0: और ये पूरे कंट्री के अंदर जो कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से इनके ऊपर ट्रायल चल रहा है, क्योंकि जहां CNG बन रही है उसके अंदर बनाने के लिए के गोबर और वेस्ट के साथ साथ में शुगर मिल की निकली हुई जो मैली है, प्रेस मड है,
1: जी
0: उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और उस प्रेस मड को जो पहले किसान कोई लेता नहीं था, क्यों किसान उसको फर्मेंटेड नहीं कर पाता
1: जी
0: है, तो ज्यादातर क्या होता था कि भट्टों के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता था ईंट को पकाने के लिए,
1: जी
0: लेकिन अब अपने नॉर्थ के अंदर या साउथ महाराष्ट्र के अंदर CNG पंप जो प्लांट लगे हुए हैं उन प्लांटों में इसको एक सिलेरी के रूप में इस्तेमाल करा करके CNG गैस बनाई जाती है, और उससे जो वेस्ट निकलता है उसको एक बहुत ही उम्दा क्वालिटी की आपकी खाद
1: खाद तैयार
0: बन करके तैयार
1: तो
0: हो
1: डॉक्टर साहब
0: जाती
1: ये तो ऐसा ही हो गया जैसे बायोगैस प्लांट हो गया
0: हाँ,
1: है। अब सैलरी हम
0: बायोगैस
1: करते हैं
0: तो उस बायोगैस

0: में केवल गोबर रहता
1: गोबर
0: था,
1: रहता है।
0: अब इसके साथ में गोबर के साथ साथ में प्रेस मड का भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये मतलब हमारे लिए एक बहुत अच्छी किस्म वो चीज़ है। और ये हर जनपद में मैं समझता हूँ कि एक ही दो प्लांट लग रहे हैं और आसपास के जनपदों में, और उनको बड़ा सब्सिडी दी जा रही है, और किसानों के लिए भी उनसे कहा भी गया है कि इसको सब्सिडी पे किसानों के में सिलेरी के रूप में भी, लिक्विड के रूप में भी और सॉलिड के रूप
1: सॉलिड के
0: में
1: रूप
0: अगर आप डालते हैं, तो उससे क्या है कि आपके खेत का ऑर्गेनिक मैटर जो है, जीवांश है, वो भी बढ़ता है और आपकी रासायनिक खादों के ऊपर निर्भरता भी हमारी कम होती है। क्योंकि भारत सरकार ये चाह रही है कि जो रासायनिक उर्वरक है उनको संतुलित मात्रा में प्रयोग किया जाए, और उसके साथ साथ में हमारे अन्य वैकल्पिक चीजें हैं, जैविक हैं या प्राकृतिक खेती है, उनके ऊपर भी हमारा किसान आए, जिससे हमारा
1: निर्भरता वहां से कम होनी चाहिए
0: निर्भरता कम हो।
1: जी।
0: क्योंकि देखा है, आप देखेंगे कि अपने देश के अंदर 600 से 650 लाख मिलियन टन रासायनिक उर्वरक का कंजप्शन किया जाता, खर्च
1: जी
0: खपत होती है,
1: जी
0: और उसमें से जो इतना कंजप्शन है, जबकि जो प्रोडक्शन हो रहा है लगभग 500 550 लाख मिलियन टन ही उसका प्रोडक्शन हो पा रहा है। तो ये सारा का सारा जो चीजें हैं वो बाद में हमको इम्पोर्ट करनी पड़ती हैं, जिसके ऊपर देश को बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है डॉलर में। तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी ये आह्वान है कि हम प्राकृतिक खेती की तरफ जाएं, जैविक खेती की तरफ जाएं, और वैज्ञानिक विधि से रासायनिक उर्वरकों का जो हम प्रयोग है संतुलित मात्रा में प्रयोग करें, जितनी आवश्यकता है, जितनी वैज्ञानिकों ने इसको रिकमेंड किया है, तो जिससे देश को भी आर्थिक रूप से बोझ नहीं पड़ेगा, उसकी सब्सिडी पे नहीं पड़ेगा, और देश की आर्थिक स्थिति में सुधारने में हमारे किसान भाइयों का भी एक भागीदारी सुनिश्चित होगी। तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी किसान भाइयों से आह्वान करूंगा कि अपनी, चाहे वो गन्ना फसल है, चाहे गेहूं है, चाहे धान है, चाहे अन्य कोई फसल है, संतुलित मात्रा में ही उर्वरकों का प्रयोग करेंगे।
1: बहुत बढ़िया बात डॉक्टर साहब आपने बताई है। अब चलते चलते देखिए, गर्मी की जो बुआई की बात हुई थी, बीच में भी हुई है,
0: जी
1: तो गर्मी की जो फसल है वो हमारी स्वस्थ रहे, उत्पादन हमें अधिक से अधिक मिले, इसके लिए कुछ मोटी मोटी खास बातें किसानों को बताइए।
0: देखिए, मेरे जो हमारे किसान भाई इसमें बहुत प्रश्न आए थे, पिछेता गन्ना बोया हुआ है, ग्रीष्मकालीन गन्ना बोया हुआ है, सबसे पहला मैं उन किसान भाइयों से कहूंगा कि पानी के ऊपर विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर उनकी मिट्टी दोमट है, मिट्टी है या बलुई दोमट मिट्टी है, तो पानी के ऊपर विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर पानी उनके की नहीं आपने उन्होंने दिया 10 से 12 दिन के अंतराल पर, तो उससे क्या होगा, गन्ने का जमाव है और ब्यांत दोनों ही प्रभावित होगा।
1: तो
0: तो
1: सब
0: पानी,
1: मोटा मोटी देखें, जैसे अब तापमान है वो 44 के आसपास है, 43
0: हाँ,
1: चवालीस तिरालीस, तो इसमें कितने दिन के अंतराल पे कर देनी
0: मैंने
1: चाहिए?
0: आपको कहा, ये पानी की जो जो सिंचाइयां की जाती हैं वो मिट्टी की प्रकृति के ऊपर की जाती है। तो
1: अच्छा
0: मिट्टी कैसी है हमारी, अगर
1: जी
0: चिकनी मिट्टी है तो वो पानी को सहन करने की उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो ज्यादा होगी। अगर बलुई मिट्टी है तो उसकी पानी रोकने की क्षमता जो है कम होगी, तो पानी हमको जल्दी
1: तो
0: देना
1: जैसी
0: पड़ेगा,
1: अपनी मिट्टी है उसके हालात के हिसाब से आपको पानी की
0: पानी
1: सिंचाई
0: करना है।
1: करनी है। तो डॉक्टर साहब देखिए, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है, और हमें पूरी उम्मीद है कि जितने भी हमारे भाई हैं वो आपकी बात पे ध्यान देंगे, और जैसा भी आपने बताया, जैसे रासायनिक और बाकी जो हमारी खादें हैं उनका सम्मिश्रण करके प्रयोग करेंगे। बहुत बढ़िया जानकारी दी है आपने, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मेरा भी सभी किसान भाइयों को जो मेरे कार्यक्रम सुन रहे हैं, सभी को राम राम।
2: किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद, मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए, फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद।
3: अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें IPL की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर, शीघ्र बुक करें।
4: हमारे फोन इन कार्यक्रम का विषय था गन्ना फसल व किसानों के लिए इसका महत्व और लाभ। और हमारे विशेषज्ञ थे डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्रा, जो कि प्रभारी हैं केवीके अमरोहा कृषि विज्ञान केंद्र अमरोहा से।
5: बिल्कुल, और आगामी कार्यक्रम के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। कल 10:10 पर सुबह आप सुनेंगे विशेष फोन इन कार्यक्रम बात फूलों की। कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन सकेंगे बागीचों एवं घास का उचित प्रबंधन, और विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर मामचंद सिंह और डॉक्टर शिव शंकर सिंह। और इसी के साथ हमारा जो कृषि जगत कार्यक्रम समाप्त होने को है। आज के कार्यक्रम के प्रस्तुत करते हैं तुषार पारासर और संयोजक हैं शिव नंदन लाल।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं गजलें जगजीत सिंह जी के स्वरों में।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गजलें जगजीत सिंह जी के स्वरों में। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ डीएनडी फरीदाबाद सोहना हाईवे परियोजना का निरीक्षण किया। कहा, परियोजना से दिल्ली की बड़े शहरों से कनेक्टिविटी और सुदृढ़ होगी। दिल्ली सरकार देवी देवताओं की खंडित प्रतिमाओं के पुनर्चक्रण के लिए संग्रह केंद्र की शुरुआत करेगी। राजधानी दिल्ली में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर सूचीकरण अभियान चलाया जा रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की और दिल्ली सरकार ने कहा, पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड योजना के अंतर्गत अब तक 8 लाख से ज्यादा स्मार्ट कार्ड जारी किए गए। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ डीएनडी फरीदाबाद सोहना हवाई परियोजना का हाईवे परियोजना का निरीक्षण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस परियोजना के माध्यम से राजधानी में जाम की समस्या कम होगी और दिल्ली की बड़े शहरों से कनेक्टिविटी और सुदृढ़ होगी। उन्होंने राजमार्ग निर्माण में लाखों टन शहरी कचरे के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए श्री गडकरी का भी धन्यवाद दिया। श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि इस पहल से दिल्ली को प्रत्यक्ष लाभ मिला है।
2: केंद्र की डबल इंजन सरकार ने मिलकर के जो एग्जाम्पल सेट करना होता है, दिल्ली आज उसका सर्वोच्च फायदा उठा रही है। और मैं तो माननीय नितिन गडकरी जी का धन्यवाद इसलिए भी करना चाहूंगी कि आपने दिल्ली के कूड़े के पहाड़ खत्म करने के लिए लाखों टन हमारा जो वेस्ट था वो आपने इन सड़कों के, इन हाईवेज के बनाने में उसका इस्तेमाल किया, जिसका सीधा सीधा लाभ हमारे दिल्ली शहर को हुआ। इस पूरे फ्यूचर रेडी ट्रांसफॉर्मेशन से दिल्ली बहुत सुंदर बनने वाली है।
1: श्री गडकरी ने कहा कि ये बुनियादी ढांचा परियोजनाएं ईंधन बचाने और प्रदूषण कम करने में मदद करेंगी।
3: नए एक्सप्रेसवेज, रिंग रोड्स, टनल्स, एलिवेटेड कॉरिडोर्स के माध्यम से दिल्ली एनसीआर का पूरा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क मॉडर्न और फ्यूचर के लिए हम रेडी बनाने जा रहे हैं। इससे फ्यूल का सेविंग होगा, पोल्यूशन का रिडक्शन होगा, लॉजिस्टिक इफिशियंसी बढ़ेगी और इकोनॉमिक ग्रोथ को एक साथ गति मिलेगी। ये जो दिल्ली एनसीआर में आने वाले वर्षों में सस्टेनेबल और सीमलेस मोबिलिटी नेटवर्क का ये उदाहरण भी बनेगा।
1: राष्ट्रीय राजधानी को स्वच्छ, पर्यावरण अनुकूल और सांस्कृतिक मूल्यों से प्रेरित बनाने की दिशा में अग्रसर दिल्ली सरकार देवी देवताओं की खंडित प्रतिमाओं के सम्मानजनक पुनर्चक्रण के लिए संग्रह केंद्र शुरू करने जा रही है। एक वीडियो संदेश में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी में अलग अलग जगहों पर ये केंद्र स्थापित किए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री ने कहा कि इन केंद्रों पर नागरिक अपनी देवी देवताओं की खंडित मूर्तियों को सम्मान पूर्वक जमा कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि इन मूर्तियों को वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुकूल तरीके से पुनर्चक्रण कर उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित किया जाएगा। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इसके माध्यम से लोगों की आस्था का सम्मान करते हुए पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। दिल्ली सरकार इस विषय पर एक विस्तृत कार्य योजना तैयार कर रही है और साथ ही नागरिकों से सुझाव भी आमंत्रित कर रही है। इसमें लोगों से यह पूछा गया है कि संग्रह केंद्र कहाँ बनाए जाने चाहिए तथा इस व्यवस्था को और अधिक बेहतर और गरिमापूर्ण बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए।
5: वर्षों जिन मूर्तियों को हम अपने पूजा घर में भगवान के रूप में पूजते हैं, संभालते हैं, जब वो खंडित हो जाती है तो छोड़ आते हैं, कभी पीपल के नीचे रखाते हैं तो कभी नदी में फेंकाते हैं, कभी सड़क किनारे, कभी पार्क के किनारे। दिल्ली सरकार की ओर से मैं करने जा रही हूँ इन खंडित मूर्तियों का कलेक्शन सेंटर। अलग अलग जगह ऐसे सेंटर बनाए जाएंगे जहाँ पे हमारी खंडित मूर्तियों को हम दे सकें, बाद में जिन्हें रिसाइकिल कर फिर से उनको किसी यूटिलिटी की चीज में कन्वर्ट किया जाए।
4: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि लोगों के सुझावों के आधार पर ही दिल्ली सरकार एक विस्तृत योजना तैयार करेगी। प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
1: आवासन और शहरी कार्य

0: मंत्री मनोहर लाल ने आज राजधानी दिल्ली में आयोजित स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे चरण की राष्ट्रीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मनोहर लाल ने कहा कि ये मिशन अब केवल सफाई अभियान तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है, जो एक टिकाऊ, सुदृढ़ और भविष्य के लिए तैयार शहरी भारत को आकार दे रहा है। इस अवसर पर दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद भी शामिल हुए। श्री सूद ने कहा कि बैठक में स्वच्छता, सतत शहरी विकास और बेहतर नागरिक बुनियादी ढांचे को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री गोयल ने कहा कि उन्होंने भारत की बढ़ते व्यापार व्यवस्था को समर्थन देने, संपर्क को बढ़ावा देने, लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ाने और निर्बाध आवाजाही मजबूत करने के उद्देश्य से सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा की। श्री गोयल ने आज नई दिल्ली में परिधान, निर्मित वस्त्र और गृह सज्जा क्षेत्र कौशल परिषद के अध्यक्ष प्रेमल उदानी से भी मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य केंद्र कौशल विकास के उपायों को मजबूत करना, कार्यबल की भागीदारी बढ़ाना और उद्योग की क्षमता के उपयोग में सुधार लाना था। उन्होंने इस क्षेत्र में विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे और श्रमिकों को सहायता देने वाले तंत्र के लिए सहयोगात्मक मॉडलों पर भी विचार विमर्श किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राजधानी दिल्ली में जनगणना 2027 के अंतर्गत 16 मई से 14 जून तक घर घर सूचीकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारी लोगों के घर जाकर जरूरी जानकारी एकत्र कर रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से लोगों से आग्रह किया कि अधिकारियों का सहयोग करें और सही जानकारी साझा करें। उन्होंने कहा कि इस अभियान में भागीदारी करके नागरिक विकसित दिल्ली के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए और उन्हें खत्म किया जाए। श्री प्रधान ने इस बात पर जोर दिया कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के तहत सुरक्षित, बिना किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। बैठक के दौरान सभी राज्यों के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षकों के साथ समन्वय बैठकें करने के निर्देश दिए गए, ताकि परीक्षा की व्यवस्थाओं की मजबूत निगरानी और प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी कोर्ट की 8वीं बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि कोर्ट ने वर्तमान और भविष्य के शैक्षणिक महत्व के कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया। एक रिपोर्ट।
1: बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे उभरते क्षेत्रों में किए जा रहे उपायों की सराहना की। इसके साथ ही श्री संधू ने विश्वविद्यालय को एक ऐसा स्टार्टअप और इंक्यूबेशन इकोसिस्टम विकसित करने की सलाह दी, जो व्यवहारिक, वित्तीय रूप से सक्षम और लोगों की जरूरतों को पूरा करने पर केंद्रित हो। उपराज्यपाल ने संस्थान से ये भी आग्रह किया कि वे दिल्ली की गंभीर चुनौतियों जैसे वायु प्रदूषण, ऊर्जा संक्रमण, सीवेज प्रबंधन और यातायात जाम के लिए विशिष्ट और किफायती समाधान विकसित करने के उद्देश्य से अनुसंधान और नवाचार को तेज करें। सौम्या की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: उपराज्यपाल ने आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने बताया कि बैठक के दौरान आपसी हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें औद्योगिक विकास, व्यापार संवर्धन, द्वारका में निवेश के अवसर और दिल्ली में कारोबार करने की सुगमता को मजबूत करने के उपाय शामिल रहे। श्री संधू ने आर्थिक विकास को गति देने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के संबंध में श्री गोयल के विचारों और मार्गदर्शन की सराहना की। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज एरो सिटी स्थित वर्ल्ड मार्क 4 परिसर का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिरसा ने कहा कि राजधानी को प्रदूषण मुक्त और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में दिल्ली सरकार नई

0: तकनीकों और हरित अवसंरचना मॉडल को समझने तथा अपनाने का कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि इस परिसर में हाई इफिशियंसी डिजाइन और कार्बन ऑफसेट्स के जरिए शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों को हासिल किया जा रहा है। श्री सिरसा ने कहा कि दिल्ली के बेहतर भविष्य के लिए ऐसे पर्यावरण अनुकूल अवसंरचना को बढ़ावा देना जरूरी है जहां प्रदूषण कम हो और संसाधनों का बेहतर उपयोग हो। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने बताया है कि सरकार और दिल्ली परिवहन निगम की पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड योजना के अंतर्गत अब तक 8 लाख से ज्यादा स्मार्ट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड सिर्फ मुफ्त यात्रा की एक सुविधा ही नहीं है बल्कि ये महिलाओं को एक गरिमापूर्ण, सुरक्षित और डिजिटल रूप से सशक्त यात्रा अनुभव प्रदान करने का एक जरिया बनकर उभरा है। उन्होंने बताया कि सरकार ने पिंक कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। राष्ट्रीय राजधानी भर में आवासीय कॉलोनियों और सरकारी दफ्तरों में कैंप लगाए जा रहे हैं जिससे महिलाओं के लिए इन कार्डों के लिए रजिस्ट्रेशन करना आसान हो गया है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि इस योजना ने महिलाओं पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम किया है और उन्हें सार्वजनिक बस यात्रा में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया है जिससे यात्रा का माहौल ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक बन गया है। सौम्या की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए मैं लवली निगम।
0: आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने आज नई दिल्ली में आयुष अनुदान पोर्टल का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य आयुष क्षेत्र में डिजिटल शासन को मजबूत करना और पारदर्शिता बढ़ाना है। इस पोर्टल को आयुष मंत्रालय ने आयुष ग्रिड पहल के तहत विकसित किया है। इस अवसर पर श्री जाधव ने कहा कि आयुष ग्रिड सरकार की दूरदर्शी डिजिटल पहल है। इस प्लेटफॉर्म के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य अनुदान प्रबंधन प्रक्रिया में शत प्रतिशत पारदर्शिता, दक्षता, जवाबदेही और आसान पहुंच सुनिश्चित करना है। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज नगर निगम मुख्यालय से 8 ट्रक माउंटेड मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों को झंडी दिखाकर निगम के बेड़े में शामिल किया। श्री वाही ने कहा कि इन मशीनों को भारत सरकार की राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पहल के अंतर्गत खरीदा गया है। उन्होंने कहा कि आधुनिक मशीनें राजधानी की सड़कों पर धूल प्रदूषण को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी और शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार लाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 11 मंत्रालयों के सचिवों, महारजिस्ट्रार कार्यालय, जनगणना आयुक्त और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का कल्याण सुनिश्चित करने संबंधी दूसरा परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: आयोग ने कहा है कि सितंबर 2023 में जारी पहले परामर्श पर संबंधित अधिकारियों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। आयोग ने लगातार प्रयासों के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को प्रभावित करने वाली उभरती चुनौतियों की पहचान की है। आयोग ने कहा है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए 10 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित परामर्श जारी किया गया है। इनमें राष्ट्रीय डेटा प्रणालियों में जेंडर आधारित विविधता को शामिल करना, जेंडर समावेशिता सुनिश्चित करने संबंधी कानूनों की समीक्षा, समावेशी कानूनी ढांचा तैयार करना, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य देखभाल और कार्यस्थल पर समावेशिता शामिल है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: भारतीय रेलवे ने विद्युत लोको शेड गाजियाबाद में पहले 300 लोकोमोटिव पर कवच प्रणाली की स्थापना का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस क्रम में शेड द्वारा सबसे तेज 100वां लोको कवच, 200वां लोको कवच और 300वां लोको कवच को पूरा किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों से संबद्ध वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के प्रवर्तन कार्यबल ने आज एक बैठक के दौरान कार्रवाइयों और अनुपालन स्थिति की समीक्षा की। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि पिछले 12 दिनों में 125 निरीक्षण किए गए। राजधानी में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने राजधानी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ डीएनडी फरीदाबाद सोना हाईवे परियोजना का निरीक्षण किया। दिल्ली सरकार देवी देवताओं की खंडित प्रतिमाओं के पुनर्चक्रण के लिए संग्रह केंद्र

0: की शुरुआत करेगी। राजधानी दिल्ली में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर सूचीकरण अभियान चलाया जा रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की और दिल्ली सरकार ने कहा पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड योजना के अंतर्गत अब तक 8 लाख से ज्यादा स्मार्ट कार्ड जारी किए गए हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम का नाम गीत मालिका। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत मालिका, जहां हर धड़कन के साथ बजते हैं मोहब्बत के सबसे खूबसूरत गीत। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट रचना अग्निहोत्री और अगले 45 मिनट तक हम बात करेंगे प्यार की, यादों की और उन एहसासों की जो सीधे दिल को छू जाते हैं। तो चाय की एक प्याली लीजिए, दिल को थोड़ा आराम दीजिए और खो जाइए इस सुरीले सफर में। पहला प्यार जिंदगी का सबसे प्यारा एहसास होता है, जब किसी का चेहरा हर वक्त आंखों के सामने रहने लगे तो समझ लीजिए दिल को प्यार हो गया।

श्रोताओ, ये गीत हमने लिया था फिल्म जो जीता वही सिकंदर से। आवाजें उदित नारायण और साधना सरगम जी की थी। प्यार में इंसान छोटी छोटी बातों में भी खुशियां ढूंढ ही लेता है। एक मुस्कान, एक मैसेज या सिर्फ उसका नाम सुनना भी दिल को खुश कर देता है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं और सब कुछ पहले से ज्यादा खूबसूरत बना देते हैं।

श्रोताओं, ये गीत हमने लिया था फिल्म जब वी मेट से और आवाज थी मोहित चौहान की। श्रोताओं, अगर इस वक्त आपको किसी की याद आ रही है तो दिल से उन्हें एक मुस्कान जरूर भेजिए। हो सकता है वो भी आपको ही याद कर रहा हो। श्रोताओं, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बिना वजह दिल से जुड़ जाते हैं। शायद उसी एहसास का नाम प्यार है।

प्यार सिर्फ आई लव यू कहने का नाम नहीं, किसी का ख्याल रखना भी प्यार ही होता है। श्रोताओं, ये जो गीत हमने लिया था वो हमने लिया था फिल्म एजेंट विनोद से। आवाजें थी हमसे का अदिति सिंह और जॉय की। जब किसी की आदत दिल को लग जाए तो हर पल बस वही याद आता है।

न चांद चाहिए न सितारे चाहिए, बस तुम साथ हो तो हर नजारा प्यारा होना ही चाहिए। श्रोताओं, ये गीत हमने लिया है फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म से, और आवाज आतिफ असलम की। प्यार में कभी खुशी होती है तो कभी थोड़ा दर्द भी होता है, लेकिन यही एहसास उसे और भी गहरा बना देता है।

हर दिल चाहता है कोई ऐसा हो जो उसे समझे, अपनाए और कभी अकेला महसूस ना होने दे। श्रोताओं, ये जो गीत हमने लिया था वो थी फिल्म तमाशा और आवाजें अलका याग्निक और अरिजीत सिंह जी की थी। कुछ लोग जिंदगी को सच में खास बना देते हैं और तब दिल कह उठता है, तुम मिले तो जीना आ गया।

दोस्तों, कुछ लोग हमारी जिंदगी में ऐसे आते हैं जैसे सूखी धरती पर पहली बारिश। ये जो गीत हमने सुना वो हमने लिया था फिल्म तुम मिले से। आवाज नीरज श्रीधर की थी। तेरी मुस्कान से शुरू हुई कहानी हमारी, तेरी मुस्कान से शुरू हुई कहानी हमारी, अब हर खुशी में बस नाम तुम्हारा है।

श्रोताओं, ये गीत हमने लिया है फिल्म आशिकी 2 से, आवाज अरिजीत सिंह की। दोस्तों, इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का खूबसूरत सफर गीत मालिका के साथ। उम्मीद है ये सुरीली शाम आपके दिल को छू गई होगी। अपने प्यार को हमेशा संभाल कर रखिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और प्यार बांटते रहिए। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट रचना अग्निहोत्री, अब आपसे इजाजत चाहती हूँ। शुभ रात्रि और मीठे सपनों के साथ फिर मिलेंगे।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब समय है समाचार संध्या का।
1: नमस्कार,

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: श्री मोदी ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्नत भागीदारी के जरिए प्रत्येक नॉर्डिक देश की विशेषज्ञताओं का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं।
1: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है। नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
0: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत के राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सुश्री राव ने बताया कि यह यात्रा समुद्री सुरक्षा, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं, व्यापार साझेदारियों और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ठोस परिणाम देने का लक्ष्य रखती है और इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण समझौतों की घोषणा होने की उम्मीद है। इटली में भारतीय समुदाय के बारे में बात करते हुए भारत की राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय ने डेयरी और कृषि सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय की गतिशीलता और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान चर्चा हो सकती है। सुपर्णा भाटिया, रोम से।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे।

रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आनग्यो बेक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों की तलाश करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित, बिना किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाश अभियान चलाकर कथित नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा करा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों के औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है।
2: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के 7 जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
1: वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने ये बात कही।
3: हम दुनिया की भू राजनीतिक परिस्थितियों और उनसे जुड़े जोखिमों को तेज सुधारों के अवसर में बदलेंगे। खुद को अधिक मजबूत और लचीला बनाने की तैयारी करेंगे, अपनी सप्लाई चेन को और सशक्त करेंगे और दुनिया जो भी अवसर दे रही है तथा भारत जो अवसर दुनिया को प्रदान कर रहा है उसके पूरे लाभ उठाएंगे। उदाहरण के तौर पर वे 38 देश जो एक के बाद एक मुक्त व्यापार समझौते के ढांचे में शामिल हो रहे हैं।
1: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2030-31 तक $350 अरब का कपड़ा बाजार बनाना है। इसमें $100 अरब का निर्यात शामिल होगा। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि टिकाऊ और प्राकृतिक फाइबर ही कपड़ा क्षेत्र के भविष्य को आगे बढ़ाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में श्री चौहान ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दे दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी का दुष्कर्म मामले में आगे की जांच के लिए

पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। इससे पहले इस मामले में सियालदह सत्र अदालत ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने आज फालता विधानसभा क्षेत्र में होने वाली आगामी पुनर्मतदान से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है। भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार के विशेष पैकेज की उन्होंने सराहना की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: अब जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस ने बताया है कि श्री पुतिन 12 और 13 सितंबर को सम्मेलन में शामिल होंगे। एक साल के अंदर श्री पुतिन की ये दूसरी भारत यात्रा होगी। इससे पहले वो दिसंबर 2025 में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आए थे। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में कारीगरों और बुनकरों के एक समूह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रतिभा दर्शाने के लिए मंच प्रदान करने पर राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने कारीगरों और बुनकरों को सहायता देने की जरूरत पर बल दिया ताकि उनका हुनर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 32 अंक लुढ़ककर 23,618 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 18 पैसे कमजोर होकर 96.53 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
1: मौसम विभाग ने गुरुवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की आशंका है। अगले 2 से 3 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश या मराठवाड़ा और उड़ीसा में लू चलने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि 21 मई तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गंगा के मैदानी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में गरज के साथ तेज हवाओं का अनुमान है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एकदिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बना लिए हैं। राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade, attends third India-Nordic summit in Oslo with counterparts from Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark. Education Minister Dharmendra Pradhan reviews preparation for NEET UG re-examination to be held next month. Supreme Court allows euthanasia for rabid and dangerous stray dogs to protect human life. Russian President Vladimir Putin to attend New Delhi BRICS summit in September this year. IMD warns of severe heatwave conditions in northern India, forecast heavy rainfall in southern region. In cricket, Shubman Gill to lead Indian squads in Test and ODI series against Afghanistan. India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today.
4: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
3: Prime Minister Narendra Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade.
4: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
3: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements, including trade and economic partnership and India-EU free trade deal. On terrorism, Mr. Modi said the two sides have a clear and united stand, no compromise, no double standards.
4: आज हम सब ने मिलकर ग्लोबल इश्यूज पर भी विचार साझा किए। वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
3: Speaking on the occasion, the Prime Ministers of Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark reiterated their commitment to shared values of democracy, a rules-based global order and urgent reforms in multilateral institutions in today's changing world. Acknowledging India's global stature, they stressed the need for enhanced cooperation with New Delhi as countries sharing similar values, particularly to address the challenges of conflict and global disruptions. Prime Minister Modi has since left for Italy on the fifth and final leg of his five-nation tour after concluding his visits to Norway, Sweden, the Netherlands and UAE. Mr. Modi is set to arrive in Italy's capital, Rome, later tonight. We have more from our correspondent covering the Prime Minister's visit.
5: Talent and innovation exchange between India and Italy is expected to grow in the coming years. Speaking ahead of Prime Minister Narendra Modi's visit, which forms the final leg of his five-nation tour, Indian Ambassador Vani Sarraju Rao said the trip would provide an important opportunity to address

0: पहुंचवानी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में नॉर्डिक ममालिक की सरमायाकारी पिछली एक दहाई में 200% बढ़ गई है। वजीर आजम ने ओस्लो में नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के अपने हम मनसबों के साथ तीसरे भारत नॉर्डिक समिट में हिस्सा लिया। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी के अगले माह दोबारा होने वाले इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इंसानी जानों के तहफ्फुज के लिए खतरनाक आवारा कुत्तों को जान से मारने की इजाजत दी है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन इस बरस सितंबर में नई दिल्ली ब्रिक्स समिट में शिरकत करेंगे। महकमे मौसमियात ने शुमाली हिंद में गर्मी की इंतहाई शदीद लहर से खबरदार किया है। उसने जुनूबी खित्ते में बहुत तेज बारिश की पेशगोई की है। और क्रिकेट में अफगानिस्तान के साथ भारत की टेस्ट और एक रोजा मैचों की सीरीज में शुभमन गिल टीम की सरबराही करेंगे। अब खबरें तफसील से। भारत और यूरोप के नॉर्डिक ममालिक ने, जिनमें नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड शामिल हैं, अपने बाहमी ताल्लुकात को मजीद बढ़ाकर ग्रीन टेक्नोलॉजी और इख्तराती कलीदी शराकतदारी की सतह तक पहुंचा दिया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आज तीसरे भारत नॉर्डिक समिट में शिरकत के बाद नॉर्डिक मुल्कों के लीडरों के साथ एक मुश्तरका प्रेस मीटिंग से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने यह ऐलान किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में नॉर्डिक ममालिक की सरमायाकारी पिछली एक दहाई में 200% बढ़ गई है।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: जनाब मोदी ने कहा कि पिछले 10 बरस में भारत और नॉर्डिक मुल्कों के दरमियान बाहमी तिजारत बढ़कर 4 गुना हो गई है।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: जनाब मोदी ने इस बात का यकीन दिलाया कि भारत और नॉर्डिक मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात एक नए सुनहरे अहद की सूरत में इंतहाई समरावर साबित होंगे। हाल ही में तय पाए तिजारती मुआहदे इसी जानिब इशारा करते हैं। इन मुआहदों में तिजारत और इक्तिसादी शराकतदारी और भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तिजारती मुआहदा शामिल है। दहशतगर्दी के बारे में जनाब मोदी ने कहा कि तरफेन का एक वाज़े और मुत्तहदा मौकिफ है, जिसमें कोई समझौता नहीं है और कोई दोहरा मयार नहीं है।
1: आज हम सब ने मिलकर ग्लोबल इश्यूज पर भी विचार साझा किए। वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
0: इस मौके पर खिताब करते हुए नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के वज़ीरे आज़म ने जमहूरियत की अपनी मुश्तरका अकदार उसूलों पर मबनी आलमी निज़ाम और आज की बदलती हुई दुनिया में कसीर सतही इदारों में इस्लाहात की फौरी जरूरत के तई अपने अज़्म का इयादा किया। भारत के आलमी मर्तबे का एतराफ करते हुए उन्होंने भारत के साथ ज्यादा ताउन की जरूरत पर जोर दिया, क्योंकि ये ममालिक मुश्तरका अकदार के हामिल हैं। बिलखसूस तनाजियात और आलमी रखनांदाजी के चैलेंजों से निमटने में इनकी अकदार मुश्तरक हैं। वजीर आजम मोदी नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड्स और मुत्तहिदा अरब अमारात के अपने दौरों की तकमील के बाद 5 मुल्कों के अपने दौरे के 5वें और आखिरी मरहले की तकमील के लिए इटली रवाना हो गए हैं।

0: जो इस वक्त भी इंतहाई मजबूत हैं। रोम से सुपर्णा भाटिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: वजीर दाखिला और इमदाद बाहमी के वजीर अमित शाह ने आज कहा है कि छत्तीसगढ़ का बस्तर डिवीजन आइंदा 5 बरस में मुल्क के सबसे तरक्की याफ्ता कबायली खत्ते के तौर पर उभरेगा। जगदलपुर में मीडिया से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि बस्तर में नक्सलिज्म को खत्म करने के बाद मरकज और छत्तीसगढ़ हुकूमत ने खित्ते की तरक्की की खातिर मुश्तरका तौर पर एक साइंसी लाइहा अमल तैयार किया है।
2: बस्तर के सभी नागरिकों को भारत सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से भरोसा दिलाना चाहता हूं कि अब भय से जीने की जरूरत नहीं। यहां नया सूर्योदय हो चुका है, भले आजादी के इतने साल बाद ही अब विकास का रास्ता प्रशस्त हो रहा है। यहां के आदिवासी युवा और महिला विश्वास के साथ आगे बढ़े, भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार आपके साथ है।
1: इससे कबल मरकजी वजीर दाखिला ने जगदलपुर में बस्ती जोनल काउंसिल की 26वीं मीटिंग की सदारत की। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के वज़राए आला और सीनियर अहदेदारान ने इस मीटिंग में शिरकत की। शिमाल मशरकी रियासतों के दस्तकारों और बुनकरों के ग्रुप ने आज राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बातचीत के दौरान दस्तकारों और बुनकरों ने राष्ट्रपति भवन में एट होम तकरीब के लिए काम करने के अपने तजुर्बात बताए और अपने हुनर को पेश करने के मौके के लिए तशक्कुर का इजहार किया। इस मौके पर खिताब करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने दस्तकारों और बुनकरों की मदद की जरूरत पर जोर दिया ताकि उनका रिवायती फन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और वो खुद कफील बन सकें। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक आला सतही मीटिंग की सदारत की और तिब्बी तालीम में अंडर ग्रेजुएट दाखिले के लिए नीट यूजी के आइंदा माह होने वाले दोबारा इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लिया। इम्तिहान के इनेकाद में मुकम्मल दयानतदारी और शफाफियत की जरूरत पर जोर देते हुए जनाब प्रधान ने हिदायत दी कि इसे पहले हुए इम्तिहान के अमल में जिन सभी कमियों की निशानदेही की गई थी उनका लाजमी तौर पर इजाला और उन्हें खत्म किया जाना चाहिए। वजीर मौसूफ ने इस बात पर जोर दिया कि दोबारा इम्तिहान सख्त सिक्योरिटी जाब्तों के तहत एक महफूज, बिला रुकावट और किसी भी कमी के बगैर तरीक़ेकार के तहत मुकम्मल होना चाहिए। वजीर दिफा राजनाथ सिंह 3 रोजा सरकारी दौरे पर आज जनूबी कोरिया के सियोल पहुंचे हैं। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब सिंह ने कहा कि इस दौरे का मकसद भारत और जमहूरिया कोरिया के दरमियान दिफाई इश्तराक और कलीदी शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करना है। उन्होंने मजीद कहा कि यह दौरा बाहमी दिलचस्पी के शोबों में दोतरफा ताल्लुकात और इश्तराक बढ़ाने का मौका फराहम करेगा। अकलियती उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने रियासती अकलियती कमीशनों से जोर देकर कहा है कि वो अकलियती फिरकों के मामलात और शिकायतों से निमटने में सरगर्म रोल अदा करें। वजीर मौसूफ नई दिल्ली में आज मुनक्किदा रियासती अकलियती कमिश्नरों की कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। जनाब रिजिजू ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत मुल्क के हर शहरी की बहबूद और तरक्की के तस्वुर के साथ काम कर रही है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज पहली मर्तबा इंतहाई खतरनाक या लाइलाज बीमारियों में मुबतला कुत्तों को जान से मारने की इजाजत दी है। अदालत ने इंसानी जिंदगी के तहफ्फुज और अवाम की हिफाजत की जरूरत का हवाला देते हुए यह फैसला सुनाया है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने आज उन अर्जदाश्तों को भी खारिज कर दिया जिनमें आवारा कुत्तों को किसी दूसरे मकाम पर ले जाने और उनकी नसबंदी करने से मुतालिक अदालत के इससे पहले के फैसले को वापस लेने की दरखास्त की गई थी। अदालत ने कहा कि वकार के साथ जिंदगी गुजारने का हक आजादी के साथ चलने फिरने के हक का भी अहाता करता है जिसमें कुत्तों के काटने से होने वाले नुकसान का खतरा न हो। मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने आज जुमेरात को फाल्टा असम्बली हलके के लिए होने वाले जिमनी इंतखाबात से अपने कागजात नामजदगी वापस लेने का ऐलान किया है। जनाब खान ने एक बयान में कहा कि उनका यह फैसला खित्ते में अमन और तरक्की बनाने की गरज से लिया गया है और उन्होंने बीजेपी की क्यादत वाली नई सरकार की जानिब से फाल्टा के लिए ऐलान किए गए खसूसी पैकेज का खैर मकदम किया। एक बयान में तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि जहांगीर खान के नाम वापस लेने का फैसला उनका अपना निजी फैसला है और यह पार्टी का फैसला नहीं है। अब जबकि खान इंतखाबी मैदान से बाहर हो गए हैं तो अब मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार दीबांशु पांडा, कांग्रेस उम्मीदवार अब्दुल रजाक मुल्ला और सीपीआईएम के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी के दरमियान है।

0: 만 탄.
1: नमस्कार, मंथन कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार और आज हम भारत के वैश्विक निर्यात विस्तार में एमएसएमई की अहम भूमिका पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं आर्थिक विशेषज्ञ शिशिर सिन्हा। शिशिर जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: निखिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: शिशिर जी, सबसे पहले एमएसएमई की हम बात करें तो भारत की आर्थिक वृद्धि को ये लगातार गति दे रहे हैं और उनका योगदान अगर

0: जीडीपी में देखें तो ये 31% से ज्यादा और निर्यात में लगभग 48% से कहीं अधिक है। देश भर में 32 करोड़ 80 लाख लोगों से ज्यादा की आबादी की आजीविका उन पर निर्भर है। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाकर के देखें तो कोविड काल में शुरू हुई ECLGS योजना को MSME के लिए जीवन रेखा माना गया, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस योजना ने भारत में बड़े पैमाने पर NPA संकट को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई सारी प्रबंधन नीतियों को बेहतर किया या फिर हमारी आर्थिक जो स्थिति है उसे बेहतर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई?
1: देखिए, कोविड काल में जब इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम लाई गई थी तो उसके पीछे मकसद ये था कि ये जो अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी निभाते हैं 30% से ऊपर निर्यात में 48% से ज्यादा, उनके लिए जो स्थिति जो है वो बुरी ना हो। और अभी सरकार ने जब फैसला लिया कि पश्चिम एशिया संकट के बाद जिस तरह से उद्योगों की और खासतौर पर निर्यातकों की बुरी हालत हुई है, उसमें उनको मदद देने के लिए ECLGS का 5वां संस्करण आ गया। ये 2.5 लाख करोड़ रुपए का जो ECLGS है, इसका सबसे ज्यादा फायदा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को मिलेगा। तो अभी के समय में जब हमें निर्यात को रफ्तार देना है, जब हम नए बाजार में जा रहे हैं, जब हमें अपने उद्योगों की प्रतिस्पर्धी क्षमता को बढ़ाना है, तो आधे के करीब में जिनकी हिस्सेदारी है उन की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए ऐसे प्रोत्साहनों की बहुत ज्यादा जरूरत है और उनका महत्व भी बढ़ जाता है। और ये एक महत्वपूर्ण पहल सरकार ने समय लिया है और हमें उम्मीद है कि इसका फायदा जो है आपको 2026-27 जो कि बहुत ही चुनौतीपूर्ण वर्ष है उसमें हमें देखने को मिले।
0: अभी अगर हम बात करें तो MSMED अधिनियम के तहत 45 दिन में भुगतान अनिवार्य करने और समाधान पोर्टल शुरू करने के बावजूद कुछ भुगतान की समस्याओं की बात उठती रही है, तो इस तरह की जो चुनौतियां हैं उनसे प्रभावी तरीके से निपटने में किस तरह की गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए?
1: देखिए, कोई भी व्यापारी अगर किसी के साथ व्यापार करता है, सामान बेचता है, तो उसको समय पर भुगतान मिलना अनिवार्य होता है। अब इसके लिए अगर 45 दिन की समय सीमा तय की गई है, इसके बावजूद भी MSME का बकाया जो है वो हमने देखा है वो बढ़ता रहा है। सरकार ने भी काफी चिंता जताई और समय समय पर कदम भी उठाए हैं। अब देखिए, ऐसी सूरत में आपके पास विकल्प क्या होता है कि आप बैंक से जाकर के वर्किंग कैपिटल लोन लीजिए। जब आप बैंक से जाकर के वर्किंग कैपिटल लोन लेते हैं तो उसकी लागत बढ़ जाती है, उससे आपकी प्रतिस्पर्धी क्षमता पर असर पड़ता है। तो अब के समय में JM के जरिए जो कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है या फिर हम कहें कि जो सरकारी विभाग है वो कम से कम समय में भुगतान कर देते हैं। देखिए, रियल टाइम भी कई जगहों पर होने लगा है लेकिन अभी उसे व्यापक स्तर पर लाने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन अगर वो समय सीमा कम हो तो इन MSME के लिए जो कार्यशील पूंजी की लागत है उसको कम करने में मदद मिलेगी और वो अगर कम होगा तो उससे उनकी प्रतिस्पर्धी क्षमता बेहतर होगी, अपने जो कुछ भी उनके उत्पादन की प्रक्रिया है या जो व्यापार है उसको आगे चलाने में मदद मिलेगी। तो ऐसे में सरकार ने अब तक जो कदम उठाए हैं उसके अलावा हमें लगता है कि सरकार को और इस मामले में एक निर्देश जो है उस पर सख्ती से अमल होना चाहिए कि आपको कम से कम समय में भुगतान करना है।
0: शिशिर जी, भी आपने JM की बात की तो इसके साथ में TREDS की बात हम कर ले, MSME संबंध हो या फिर चैंपियंस पोर्टल जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और ये जो पहल की जाती है सरकार को एक तरह से MSME इकोसिस्टम बनाने में काफी मददगार साबित हो रही है, इनसे आपको क्या लगता है कि और कितना ये बढ़ावा देंगे या किसी तरह की प्रतिस्पर्धा भी हमें देखने को मिल सकती है छोटे उद्यमों में?
1: आपने जो 3 खास प्लेटफॉर्म का जिक्र किया, चाहे वो TRDS की बात हम लोग करें या चैंपियन प्लेटफॉर्म की बात करें, इन सब के जरिए कोशिश क्या है कि MSME जो एक लंबे समय तक अनौपचारिक क्षेत्र में रहे हैं उनको औपचारिक क्षेत्र में लाने की कोशिश की जाए और औपचारिक क्षेत्र में लाने के बाद उनको हैंड होल्डिंग किया जाए, यानी कि उनको अपने कारोबार को बढ़ाने में मदद मिले। देखिए, जब एक ही तरह का सामान 10 लोग बनाते हैं तो ऐसे में जरूरत यह बन जाती है कि उसमें से हम किस तरीके से उन 10 की मदद करते हैं जिससे कि वो थोड़ी अपने उत्पाद में विविधता लाएं और ताकि वो बाजार में बने रहें। अचानक आप नहीं कह सकते कि नहीं आप यही उत्पाद बनाएंगे और आप यही उत्पाद बनाएंगे या आप यही उत्पाद बनाएंगे, तो उनकी प्रतिस्पर्धी क्षमता कैसे विकसित करनी है। दूसरी बात यह है कि अगर आप बीते वर्ष का बजट देखेंगे तो उसमें MSME की परिभाषा में भी बदलाव किया गया, यानी कि उनके लिए जो टर्नओवर और निवेश की सीमा है वो बढ़ा दी गई थी। इसका फायदा क्या है और ये जो आपने 3 खास पहल का जिक्र किया, अगर आप चारों को मिला दें तो वैश्विक स्तर पर जहां पर दुनिया के अलग अलग देशों में हमने देखा है कि वहां पर MSME को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, भारत भी उन देशों में शामिल हो गया है और इन MSME को वैश्विक मंच पे अपने कारोबार व्यापार को बढ़ाने में इस तरह के प्रयासों से, इन तरह के पहलों से जो है वो काफी मदद मिलेगी।
0: शिशिर जी, वैश्विक स्तर पर हम देखें तो सरकार काफी हद तक प्रयास कर रही है कि हमारा जो निर्यात है वो बढ़े और एमएसएमई को बढ़ावा भी मिले, साथ में कई ऐसी चीजें हैं जिससे हमारी आर्थिक स्थिति को और भी बेहतर किया जा सके। नई दिल्ली में भारतीय व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च समारोह को संबोधित

0: करते हुए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्षों में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है।
1: विश्व की चुनौतियों के बावजूद भारत एक प्रकार से लाइक एन ओएसिस इन द डेजर्ट तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ रही है, हमारा निर्यात भी आगे बढ़ रहा है। इस वर्ष का भी निर्यात $863 बिलियन यानी पिछले वर्ष से लगभग 5% ज्यादा। गुड्स में भी बढ़त है, सर्विसेज में भी बढ़त, और आने वाले वर्ष का टारगेट यानी अभी जो वर्ष चल रहा है उसका टारगेट हमने और बढ़ा रखा है कि इस वर्ष हम सब मिलके $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करें। ये आने वाले दिनों में अगले 5 साल में भारत ने प्रण लिया है कि हम $2 ट्रिलियन का निर्यात एक्सपोर्ट भारत से करें।
0: तो शिशिर जी, अभी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जिस तरह से बात कही, एक उत्साहजनक प्रतिक्रिया हमें देखने को मिली है। हम वापस थोड़ा सा अगर आकर के देखें तो खुदरा और थोक व्यापारियों को वर्ष 2021 से एमएसएमई दायरे में शामिल किया गया है और इसमें लगातार इन बातों को बढ़ावा दिया जाए कि इनको ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाए कि वो देश की जो आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की गतिविधि है उसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन कर सकें। तो इसमें कितनी आपको बढ़त देखने को मिल रही है?
2: देखिए, आज के दिन में महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सारे प्रयासों का असर ये हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा उद्योग औपचारिक व्यवस्था में आ रहे हैं। आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर के। जीएसटी में लगभग 1,60,00,000 जो है वो रजिस्टर्ड एसएससी हैं। अब अगर आप प्री जीएसटी रिजीम को देखें, 30 जून 2017 की स्थिति देखें, तो लगभग ये संख्या 66,00,000 थी, अब 1,60,00,000 है। और इस 1,60,00,000 में एक बड़ी संख्या वो है जिनका सालाना कारोबार 40,00,000 रुपए या 20,00,000 रुपए से कम है। जीएसटी की अनिवार्यता ये कहती है कि आपको 40,00,000 का कारोबार होना चाहिए, और अगर आप पूर्वोत्तर के राज्य में हैं या ऐसे विशेष क्षेत्र में हैं वहां पर आपका 20,00,000 होना चाहिए गुड्स के मामले में, और सेवा के मामले में 20,00,000 और 10,00,000 रुपए होना चाहिए। लेकिन अगर ज्यादा से ज्यादा छोटे कारोबारी जीएसटी के दायरे में आते हैं, क्यों आते हैं, उसका कारण हमें समझना होगा। कारण यह है कि जब आप व्यापार करने जाते हैं तो अगर आपके पास जीएसटी का पंजीकरण होता है तो आपके लिए व्यापार करना आसान हो जाता है। सामने वाला व्यापारी आपसे कहता है, सामने वाला बड़ा उद्योग आपसे कहता है कि आपका जीएसटीएन है कि नहीं है, आप कहते हैं हमारा जीएसटीएन है, तो एक पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो सीमलेस हो जाता है, यानी कि कहीं कोई व्यवधान नहीं है,
0: आसानी होती है।
2: बिल्कुल, जिसको हम लोग कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब सिर्फ हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हमने बड़े उद्योगों के लिए क्या किया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब ये भी होता है कि जो बिल्कुल निचले स्तर पे जो हमारे कारोबारी व्यापारी हैं, जो हमारे अर्थतंत्र का एक अहम हिस्सा है, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं। तो मैंने आपको जीएसटी का एक छोटा सा उदाहरण दिया। इसी तरीके से आप अगर आपने शुरू में जिक्र किया था कि लगभग 32 करोड़ लोग जो हैं वो एमएसएमई पर जुड़े हुए हैं, ये तो वो संख्या जो कि प्रत्यक्ष है। अगर आप अप्रत्यक्ष देखें तो करीबन 50-60 करोड़ लोग जो हैं वो एमएसएमई से जुड़े हुए हैं। इन संख्या के आधार पर अगर हम इन कारोबारी व्यापारियों को बढ़ावा नहीं देंगे तो आपका अर्थतंत्र आगे नहीं चलने वाला है। अर्थतंत्र में जब 7%, 7.5% की विकास दर की जरूरत होती है तो केवल बड़े उद्योग हिस्सेदारी नहीं करते हैं, बल्कि छोटे और स्थानीय स्तर के उद्योग की जो भूमिका होती है वो काफी अहम हो जाती है।
0: तो ये मतलब कह सकते हैं कि ग्रामीण और अर्धशहरी जो अर्थव्यवस्था है वो हमारी जीडीपी में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, और साथ में क्या ये भी कहा जा सकता है कि हमारी जो आर्थिक रणनीति है वो छोटे उद्योगों पर काफी हद तक केंद्रित की जा रही ताकि ज्यादा से ज्यादा उत्पादों को बढ़ावा मिले।
2: अगर आप पिछले 12 साल में योजनाएं देखें, खासतौर पे छोटे उद्योगों के लिए योजनाओं की बात अगर मैं करूं, तो उसमें उद्यमिता से लेकर के कारोबार व्यापार चलाने तक की व्यवस्था की गई है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि आप एक व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास स्टार्टअप की स्कीम है, अगर आप एक महिला उद्यमी हैं तो स्टैंडअप की स्कीम है जहां पर महिला और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को बढ़ावा दिया जाता है। फिर अगर आप कारोबार शुरू कर देते हैं तो आपके पास मुद्रा के तहत आपको व्यवस्था मिल जाती है। तो अगर आप इन योजनाओं को, हर योजना को एक दूसरे से जोड़ करके देखें तो व्यापार शुरू करने से लेकर के व्यापार चलाने और व्यापार बढ़ाने का रास्ता आपके लिए बनाया जाता है। तो आज के समय में जब हमारा 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य है, जब हमें $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को हासिल करना है, तो ऐसे में जरूरत इस बात की हो जाती है कि वो क्षेत्र जो अर्थव्यवस्था में निर्यात में 30%, 40%, 45%, 48% योगदान करता है, उसके लिए हम और नीतियां कितना सरल और सहज बना सकते हैं। 12 सालों का सफर में हमने ये देखा है कि ऐसा हुआ है, और हमें उम्मीद है कि आगे भी जो है वो प्रक्रिया जो है वो जारी रहेगी।
0: शिशिर जी, आपने तमाम योजनाओं के बारे में बताया है। डिजिटलीकरण जो एक बड़ा पथ रहा है जिस पर आगे बढ़ करके हमने काफी चीजें हासिल की हैं, उद्यम की हम बात करते हैं, उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, लगभग

0: 8 करोड़ से ज्यादा उद्यमों को औपचारिक अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ा गया है। तो इस तरह का जो डिजिटलीकरण किया जा रहा है, ये कितना ज्यादा लाभदायक हुआ है अब तक छोटे उद्यमों को आगे बढ़ाने और बड़े उद्योगों को और भी ज्यादा उन्हें विस्तार देने के लिए?
1: देखिए, डिजिटल व्यवस्था का दो बड़ा फायदा होता है। एक बड़ा फायदा यह है कि आपका सब कुछ जो है वो एक पारदर्शी तरीके से है। आपने सरकार को क्या टैक्स दिया, आपने सरकार के पास कौन सा फॉर्म जमा किया, वो सारा का सारा सिस्टम में उपलब्ध हो जाता है। उसमें रियल टाइम ट्रांजेक्शन पॉसिबल होता है और कोई आपके यहाँ आकर के ये नहीं कह सकता है कि आप ये रजिस्टर दिखाओ, आप वो रजिस्टर दिखाओ, कच्चा दिखाओ, पक्का दिखाओ, ये सबकी गुंजाइश नहीं बनती। आप सब कुछ जो है एक पारदर्शी तरीके से एक प्लेटफॉर्म पे वो आंकड़े उपलब्ध करा देते हैं, तो आपके बारे में सरकार को एक स्पष्ट जानकारी मिल जाती है। आपके जैसे व्यापारियों की जानकारी जब सरकार के पास आती है तो सरकार के लिए योजनाएं बनाने में आसानी होती है। हमें डिजिटल व्यवस्था से ये पता चल जाता है कि कौन सा क्षेत्र ऐसा है जिसके लिए हमें विशेष प्रोत्साहन देने की जरूरत है। हमने जिक्र किया ECLGS 5 का। अब ये ECLGS 5 की बात क्यों आई, अचानक ऐसा क्यों लगा सरकार को कि नहीं हमें कुछ नए सिरे से जो है इनको हमें मदद करनी चाहिए? क्योंकि देखा गया कि जो उद्योग थे वो ऋण अदायगी में उनको दिक्कतें आ रही थी क्योंकि आपका भुगतान बाहर से नहीं मिल पा रहा है, तो अब हम उनको किस तरीके से मदद करते हैं। अब यदि वहां पर अगर डिजिटल व्यवस्था नहीं हो, वहां पर इस तरह की व्यवस्था नहीं हो जिसमें जानकारी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, तो आप योजनाएं कैसे बनाएंगे? तो डिजिटल व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा है कि रियल टाइम पॉलिसी मेकिंग संभव हो पाता है।
0: जब व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं, तो कुछ ना कुछ कभी कोई खामी रह जाती है या कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो इन चीजों के लिए समाधान और नए ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पोर्टल जैसे डिजिटल तंत्र भी हमारे पास है, जो भारत की न्यायिक प्रशासनिक प्रक्रियाओं को तेज करने से छोटे उद्यमों और बड़े उद्यमों को एक ऐसा रास्ता दिखा रहे हैं कि आप सीमलेस होकर के अपना काम कर सकें।
1: बिल्कुल, आपको शिकायत है, सरकार ने कहा कि आपने ये नियम का पालन नहीं किया, आपको डिजिटली उन्होंने इन्फॉर्म किया, उसके बाद आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप डिजिटली ही उसका जवाब आप दे दे। अब जैसे एक उदाहरण आपको दूं फेसलेस असेसमेंट का। अब इनकम टैक्स की व्यवस्था ये कहती है कि आपको आयकर विभाग के दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आयकर विभाग को लगता है कि आपने जो रिटर्न दाखिल किया उसमें कुछ कमी है, तो वो आपको एक नोटिस ईमेल के जरिए भेजता है, उसी के आधार पर आप जो कंप्यूटर व्यवस्था है उससे आप जुड़ते हैं। सामने वाले अधिकारी को ये नहीं पता होता है कि आप कौन है और आपको ये नहीं पता होता सामने वाला अधिकारी कौन है, दोनों के बीच में एक जो डिजिटल सिस्टम है वो हमारा काम करता है। तो ये जब इस तरीके का रिजोल्यूशन मैकेनिज्म या इस तरीके की फेसलेस व्यवस्था शुरू होती है तो एक विश्वास बनता है कि हम खुल करके अपनी बात कह सकते हैं और उसमें समाधान में समय कम लगता है।
0: शिशिर जी, ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में जो पहले छोटे उद्यम हुआ करते थे वो पहले एक तरह से अनौपचारिक होते थे, हमें जानकारी नहीं होती थी कि कहां पर क्या बन रहा है, लेकिन अब जो व्यवस्थाएं शुरू की गई हैं उनसे उन्हें कितना लाभ हुआ है और जो उपभोक्ता है उसे कितना लाभ हुआ है?
1: ग्रामीण क्षेत्र की जो उद्योग है जिनको हम लोग कुटीर उद्योग कहते रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी दिक्कत होती थी बाजार तक पहुंचने में। आपने सामान बहुत अच्छा बनाया लेकिन बाजार में पहुंच नहीं पाया। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, आपके लिए वो एक माध्यम तैयार कर दिए हैं, माध्यम आपको मुहैया करा रहे कि आप बाजार तक पहुंच सके। और दूसरा फायदा ये होता है कि जब आप बाजार में पहुंचते तो आपके अपने उत्पादों की अच्छी कीमत मिलती है। ये कुटीर उद्योगों के लिए, ग्रामीण उद्योगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता
0: है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस तरह की जो व्यवस्थाएं की गई है, जो इस तरह के प्रावधान किए गए, वो छोटे उद्योगों के साथ साथ बड़े उद्योगों के लिए भी लाभदायक हैं।
1: बिल्कुल, बड़े उद्योगों के लिए कई योजनाएं हैं, अब जरूरत यह है कि उसी तरीके की योजनाएं छोटे उद्योगों के लिए, मझोले उद्योगों के लिए भी लागू किए जाएं। और लागू कई किए गए हैं, उनका फायदा भी मिला। वही नतीजा है कि 50% निर्यात में हिस्सेदारी जो है करीब करीब 50% MSME का हो चुका है।
0: जी शिशिर जी, इस चर्चा में भाग लेने के लिए और तमाम मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद।
0: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और YouTube चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। नमस्कार। मंथन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने के लिए फैसला लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: श्री मोदी ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बेक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने की नई पहलों की तलाश करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकोई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाशी अभियान चलाकर कथित नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2021-31 तक बस्तर के लोगों की औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रैबिस से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दे दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में 1 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया था। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने आज फालता विधानसभा क्षेत्र में होने वाले आगामी पुनर्मतदान से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है। उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार में विशेष पैकेज की सराहना की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस ने बताया कि श्री पुतिन 12 और 13 सितंबर को सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। मौसम विभाग ने गुरुवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ में रातों में अधिक गर्मी पड़ने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, एनसीआर में भीषण लू चलने की आशंका है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट और 1 दिवसीय फॉर्मेट में भारत की कप्तानी करेंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today. Prime Minister Modi said investments from Nordic

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुलदस्ता, जिसके अंतर्गत आज आपने सुश्री शालिनी शंकर मिश्रा की आवाज़ में गजलें सुनी। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम राग रंजन। इसके अंतर्गत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में आज आप सुनेंगे श्री देवाशीष श्रीवास्तव का संतूर पर बजाया गया राग गवती, आपको तबले पर संगति सचिन शर्मा ने। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राग रंजन के अंतर्गत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक कार्यक्रम, जिसमें आज आपने सुना श्री दिव्यांश श्रीवास्तव का राग गवती में संतूर वादन। आपको तबले पर संगत दी श्री सचिन शर्मा ने। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। इस समय रात्रि के ठीक 10:59 और 42 सेकंड हुए हैं। ठीक 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर होंगे अंग्रेजी में समाचार। तो 11 बजने को हैं, लीजिए अब सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं और स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात राजधानी रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा का आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों पर चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाशी अभियान चलाया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण अब 99.6% तक पहुंच गया है। देश में 69,873 किलोमीटर से अधिक रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। मणिपुर के महान नाटा संकीर्तन गुरु युमनाम जात्रा सिंह को 25 मई को राष्ट्रपति भवन में मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नागरिक अलंकरण समारोह के दौरान यह पुरस्कार प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भी भीषण लू की चेतावनी है। अगले 2 से 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार और उड़ीसा में लू चलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। ENTA and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the 3rd India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today. Prime Minister Modi said, investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade.
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले 1 दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11:10 हुए हैं और वक्त हो चला है कार्यक्रम फिल्म संगीत का। तो आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत अभिवादन कार्यक्रम फिल्म संगीत में। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में कुछ चुनिंदा गीत होते हैं और कुछ बातें होती हैं, और ये बातें कहीं उस पूरे दिन की थकान को दूर करने के लिए की जाती हैं। जब पूरे दिन की थकान हो जाती है तो दिमाग में कई सारी बातें होती हैं। शरीर थक गया है लेकिन दिमाग अब भी काम कर रहा है। नींद आने का वक्त हो गया है लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें दिमाग में अभी भी अटकी हुई हैं। ऐसे में जब कोई बात करने वाला मिल जाए तो ये थकान, ये जो दिमाग में अटकी हुई बातें हैं ना, ये एकदम से निकल जाती हैं। क्योंकि कभी कभार इंसान सिर्फ कहना नहीं चाहता है, वो सुनना चाहता है। वो चाहता है कि कोई उसे सुने और वो किसी को सुने। तो ये वक्त रहता है जब किसी की बात सुनी जा सकती है या किसी को कोई बात कही जा सकती है। फिलहाल तो कार्यक्रम का आगाज करते हैं बहुत ही खूबसूरत से गीत के साथ। कुमार सानू और अनुराधा पुडवाल की आवाज में कार्यक्रम

यहाँ 90 के दशक की एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म आशिकी। फिल्म में मुख्य किरदारों में रहे अनु अग्रवाल और साथ रहे राहुल राय। ये उस समय के ऐसे कलाकार थे जो कि शायद इस फिल्म से ही इनका करियर शुरू हुआ और इस फिल्म पे ही लगभग लगभग ख़त्म हो गया, क्योंकि इसके बाद फिल्में तो कई आई लेकिन वो कामयाबी इन्हें नहीं मिल पाई जो इस फिल्म से उन्हें मिली। वाकई कुछ चीज़ें होती हैं ना जो कि एक निश्चित समय पर ही अच्छी लगती हैं। ऐसे ही जो टेंशन होती है ना वो ऑफिस और ऑफिस के अंदर ही अच्छी लगती है। ऑफिस से बाहर निकल के जब आप घर पहुंच जाएं तो उस टेंशन को भी बाय बाय कर दें। बस यही बात तो है, क्योंकि रात का जो समय है वो अपने लिए है, अपनों के लिए है। किसी को आवाज़ देकर बुला लीजिए या किसी की आवाज़ सुनकर उस तक पहुँच जाइए। बस ऐसी ही ज़िंदगी को एक सुकून भरा पल दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हर बात का तनाव लिया जाए, कुछ कुछ बातों को ऐसे ही छोड़ देना भी ज़िंदगी के लिए बेहतर रहता है।

फिल्म बेटा से एक गीत आपने सुना, ये भी 90 के दशक की बहुत ही अच्छी फिल्म। और जब साथ देने की बात आती है तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि वाकई इस तरह के गीत भी ज़रूर होने चाहिए। और ये गीत जो है ये ज़रूर बताते हैं, ये इस तरह से बताते हैं कि ज़िंदगी में किसी का साथ किसी के लिए कितना मायने रखता है। और साथ जो होता है वो निस्वार्थ भाव से होना चाहिए, भाव सिर्फ प्रेम का होना चाहिए, भाव सिर्फ साथ निभाने का होना चाहिए, वही साथ साथ माना जाता है। फिलहाल तो आपका और हमारा साथ बना हुआ है और अगले गीतों का साथ भी आप और हम देते चलेंगे। बढ़ते हैं कार्यक्रम में अगले गीत की ओर।

अलका याग्निक कुमार सानू की आवाज़ों में ये गीत आपने सुना, और चाहे कसम खा के कहें या ना कसम खा के कहें, लेकिन अपने दिल की बात कोई भी अगर ऐसा है जिसके साथ आप साझा कर सकते हैं तो उसे अपने दिल की बात ज़रूर बताएं, क्योंकि हर बात को दिल में रखने से भी बातें बिगड़ जाती हैं, बातें बिगड़ जाती हैं, या यूँ कहिए कि धीरे धीरे बातें छूट भी जाती हैं। छूट इसलिए जाती हैं क्योंकि जिस तक जो बात पहुंचानी थी वो सही समय पर पहुंच नहीं पाती है। फिलहाल तो पहुंच रहा है आप तक ये एक और सुनहरा गीत।

एक बार फिर कुमार सानू की मधुर आवाज़, नदीम श्रवण का संगीत और फिल्म बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर सी फिल्म है और लोगों ने इस फिल्म को बहुत पसंद किया था। जी हाँ, फिल्म थी दिलवाले। मुख्य किरदार निभाए अजय देवगन और रवीना टंडन ने, और साथ रहे सुनील शेट्टी भी। बहुत ही अच्छी सी फिल्म थी। और अगर 90 के दशक की बात की जाए तो 90 का दशक एक ऐसा दशक था जहाँ पर फिल्में भरपूर थी, और ऐसी ऐसी फिल्में थी कि जिसे जितनी बार देखूँ वो उतनी बार वो फिल्में और भी अच्छी लगती हैं। यही 90 के दशक की खास बात रही है। फिलहाल तो 90 के दशक को वाइंड अप करने का टाइम हो चला है, तो अब एक 90 के दशक की एक ऐसी फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं जो फिल्म काफ़ी चर्चित रही, काफ़ी लोकप्रिय रही, और इसकी लोकप्रियता ऐसी थी कि लोग बहुत तरह से इस फिल्म के गीतों को अपनी भावनाओं को जताने के लिए इस्तेमाल करते थे। फिलहाल कार्यक्रम में ये अंतिम गीत रहेगा, और इस गीत के साथ ही मुझे यानी सविता को भी दीजिए विदा इस कार्यक्रम फिल्म संगीत को यहीं संपन्न करने के लिए। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। फिलहाल आपको छोड़े जा रही हूँ इस खूबसूरत से गीत के साथ है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संकेत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। इस समय मध्य रात्रि के 12 बजने को हैं। अब इन मीटरों पर हमारे प्रसारण यहीं संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, शुभ रात्रि। लेकिन AIR लाइव न्यूज 24x7 पर हमारे प्रसारण अब भी जारी हैं। रात्रि के 12 बजने को हैं। लीजिए अब सुनिए समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। श्री मोदी की यह 2 दिवसीय यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सरार्जू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा का आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर भारतीय समुदाय में बेहद उत्साह है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3रे भारत नॉर्डिक सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के

0: खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एक उच्चस्तरीय बैठक में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले की जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाशी अभियान चलाया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों की औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय द्वारा यह आदेश लावारिस कुत्तों के काटने और रेबीज के मामलों से जुड़ी मीडिया की खबरों के बाद पिछले वर्ष 28 जुलाई को स्वतः संज्ञान मामले में जारी किया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले की आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय के में दायर याचिका को में से एक में से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। प्रख्यात मणिपुरी नाटा संकीर्तन गुरु युमनाम जात्रा सिंह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 मई को राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में यह पुरस्कार प्रदान करेंगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और तीन एक दिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उप कप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एक दिवसीय टीम की भी कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उप कप्तान होंगे। उधर आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया है। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की जिताऊ पारी खेली। 221 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने अंतिम ओवर में जीत हासिल कर लिया। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की चेतावनी दी गई है। अगले 2 से 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, मराठवाड़ा और ओडिशा में लू चलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the 3rd India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today. Prime Minister Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade.
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले 1 दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements including Trade and Economic Partnership and India-EU Free Trade Deal. On terrorism, Mr. Modi said the two sides have a clear and united stand, no compromise, no double standards. Speaking on the occasion, the Prime Ministers of Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark reiterated their commitment to shared values of democracy, a rules-based global order and urgent reforms in multilateral institutions in today's changing

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव का न्यूज 24x7 चैनल, जिस पर एक बार फिर शुरू हो चुका है प्रोग्राम सुरों का सफरनामा। और आज के सफर में आवाज की दुनिया में सुरों के जिन चमकदार सितारों की बात हम करने वाले हैं, उनका नाम है आनंद जी मिलन जी, जो बॉलीवुड में आनंद मिलिंद की जोड़ी के नाम से मशहूर हैं। रात की इस खामोशी और सुकून भरी घड़ी में हम लेकर आए हैं उसी जोड़ी की कहानी, जिनकी धुनों ने 90 के दशक की मोहब्बत, मासूमियत और अपनापन हर दिल तक पहुंचाया। ये वो नाम है जिसने सादगी में मिठास घोली, धुनों में दिल की धड़कने बसाई और हर उम्र के श्रोताओं को गुनगुनाने की वजह दी।

आज का ये सफर समर्पित है संगीतकार जोड़ी आनंद जी और मिलन जी को। साल 1950 और 60 के दशक में हिंदी सिनेमा में एक नाम बहुत ही सम्मान से लिया जाता था, संगीतकार चित्रगुप्त जी का। और उनके घर में जन्मे दो बेटे आनंद और मिलन, दोनों बचपन से ही सुरों के बीच पले बड़े। घर में रियाज होता था, धुने बजती थी, बड़े बड़े गायक आते थे और शायद यही वजह रही कि दोनों भाइयों के मन में संगीत ने परमानेंट घर बना लिया। कहा जाता है कि पिता चित्रगुप्त चाहते थे कि उनके बेटे भी संगीत की उसी परंपरा को आगे बढ़ाएं जिसमें मधुरता सबसे ऊपर हो, और आनंद जी मिलन जी ने वही किया।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। No, really, I mean it. और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

दोस्तों आनंद जी मिलन जी ने 1980 के दशक में संघर्ष शुरू किया। शुरुआती फिल्मों में बहुत बड़ी पहचान तो नहीं मिली उन्हें, लेकिन उनके कदम कभी नहीं रुके। और फिर आया 1988 का वो साल और एक फिल्म आई जिसने न सिर्फ दो नए कलाकारों को स्टार बनाया, और वो दो नए कलाकार थे आमिर खान और जूही चावला जी। और इसके साथ ही आनंद जी और मिलन जी को भी सिनेमा, हिंदी सिनेमा के शीर्ष संगीतकारों में लाकर खड़ा कर दिया। फिल्म थी कयामत से कयामत तक। इस फिल्म का संगीत युवाओं की धड़कन बन गया, कैसेट्स हाथों हाथ बिके और हर गली मोहल्ले में इन्हीं धुनों की गूंज सुनाई देती थी। और आप भी सुनिए, आपको भी ये संगीत अपनी धड़कनों में महसूस होगा।

बहुत कम लोग जानते हैं कि कयामत से कयामत तक के संगीत के लिए आनंद जी मिलन जी को उस दौर का बेहद प्रतिष्ठित पुरस्कार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उनकी धुनों में शोर नहीं था, एक अपनापन था, ऐसा म्यूजिक, ऐसा संगीत जो सबको दिल तक छू जाता है। शायद यही वजह है कि उनके गीत समय के साथ और भी खूबसूरत, और भी प्यारे, और भी अपने लगने लगे।

90 का दशक आते आते आनंद जी मिलिन जी हर बड़े निर्माता की पसंद बन चुके थे। उनकी धुनों में भारतीय मेलोडी की खुशबू थी। उन्होंने रोमांस को कभी भारी भरकम नहीं बनाया, बल्कि मासूम एहसास में ढाला। उनके संगीत में बांसुरी की मिठास, वायलिन की नरमी और दिल को छू लेने वाली सरलता सुनाई देती है, और ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो गाना नहीं आपके दिल की आवाज़ हो।

दोस्तों आनंद जी मिलन जी की सबसे बड़ी खासियत थी नए गायकों और नई आवाजों पर भरोसा करना। उन्होंने कई युवा गायकों को ऐसे गीत दिए जो आगे चलकर उनकी पहचान बन गए। उनके धुनों में शब्द हमेशा बेहद साफ सुनाई देते थे और शायद यही वजह रही होगी कि रेडियो पर उनके गीत बेहद बेहद लोकप्रिय रहे।

रही 90 के दशक में उनके बनाए गाने और उनकी फिल्मों के गीतों में दर्द भी था, मोहब्बत भी और एक सलीका भी। आनंद जी मिलन जी ने साबित किया कि बिना शोर और बिना तेज संगीत के भी गीत सीधे दिल तक पहुंच सकते हैं। सिर्फ रोमांस ही नहीं, आनंद जी मिलन जी ने दोस्ती, परिवार और भावनाओं पर भी यादगार धुनें बनाई हैं। उनके संगीत में कभी बनावटीपन दिखा ही नहीं, सादगी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत रही और यही वजह है कि उनके गीत आज भी देर रात रेडियो पर सुनाई दे तो मन ठहर सा जाता है ना।

1990 के दशक में कैसेट कंपनियों का दौर था और आनंद जी मिलन जी का संगीत उस समय की सबसे ज़्यादा बिकने वाली धुनों में शामिल रहा। उस समय छोटे शहरों से लेकर बड़े महानगरों तक उनके गीत शादी ब्याह त्यौहार और पारिवारिक महफिलों का हिस्सा बन चुके थे। तो दोस्तों, ये था सुरों का और यादों का और भावनाओं से भरा ये प्यारा सा सफ़र आनंद जी और मिलन जी के साथ। एक ऐसी जोड़ी जिसने हिंदी फिल्मी संगीत को सरल, मधुर और पारिवारिक एहसास से सजाया, जिनकी धुनों में अपनापन था। इसी खूबसूरत एहसास के साथ अब अनुमति दीजिए सुरों का सफ़रनामा से।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरों का सफरनामा। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। अब से कुछ ही देर में समाचार होंगे, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की यह 2 दिवसीय यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सरार जुराव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर भारतीय समुदाय बेहद उत्साहित है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3रे भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले 1 दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एक उच्चस्तरीय बैठक में नीट UG की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। CBI ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाशी अभियान चलाया। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा

0: को देखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय द्वारा यह आदेश लावारिस कुत्तों के काटने और रेबीज के मामले से जुड़ी मीडिया की खबरों के बाद पिछले वर्ष 28 जुलाई को स्वतः संज्ञान मामले में जारी किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों की औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कॉरपोरेट कानून संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त समिति का गठन किया है। लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 9 सदस्य शामिल हैं। लोकसभा से कमलजीत सहरावत, बैजयंत पांडा और डॉ निशिकांत दुबे को समिति में शामिल किया गया है। वहीं राज्यसभा से विनोद श्रीधर तावरे, सुजीत कुमार और उज्जवल देव राव निकम समिति के सदस्य हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। श्री पुतिन 12 और 13 सितंबर को सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रख्यात मणिपुरी नाटा संकीर्तन गुरु यमुनाम जात्रा सिंह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 मई को राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में ये सम्मान प्रदान करेंगी। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया है। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की मैच जिताऊ पारी खेली। 221 रन के लक्ष्य के जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते 225 रन बनाए। आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by R.S. Raghu. India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in the Norwegian capital, Oslo, yesterday. Prime Minister Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade.
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: प्राइम मिनिस्टर मोदी अफर्म्ड दैट द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड द नॉर्डिक कंट्रीज आर सेट टू अशर इन अ न्यू गोल्डन ईरा विद द रिसेंटली कंक्लूडेड ट्रेड अग्रीमेंट्स इंक्लूडिंग ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एंड इंडिया ईयू फ्री ट्रेड डील। ऑन टेररिज्म मिस्टर मोदी सेड द टू साइड्स हैव अ क्लियर एंड यूनाइटेड स्टैंड, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड्स। Speaking on the occasion, the Prime Minister of Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark reiterated their commitment to shared values of democracy, a rules-based global order and urgent reforms in multilateral institutions in today's changing world. Acknowledging India's global stature, they stressed the need for enhanced cooperation with New Delhi as countries sharing similar values, particularly to address the challenges of conflict and global disruptions. Meanwhile, Prime Minister Modi has arrived in Italy's capital Rome on the fifth and final leg of his five-nation tour after concluding his visits to Norway, Sweden, the Netherlands and UAE. United Union Education Minister Dharmendra Pradhan yesterday chaired a high-level meeting in New Delhi to assess

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है और दोस्तों रात के 1:10:16 हो रहे हैं और ये समय है कार्यक्रम आपके पसंदीदा कार्यक्रम गीत सुनहरे का, जिसे लेकर हम आपके साथ हैं और हमें इस बात का पूरा एतबार है कि आप भी हमारे साथ ही होंगे।

दोस्तों, युग बदलने के साथ तकनीक भी बदली, लोगों के सोच भी बदली, लोगों के रहन-सहन बदले, लोगों के बहुत सारी चीज़ें बदल गई। लेकिन कुछ इमोशंस, कुछ भावनाएं, कुछ संवेदनाएं ऐसी हैं जो हम इंसानों में हैं और वो हमेशा वैसी ही रहेंगी, सालों से रहती रही हैं, आगे भी कई सालों तक ऐसी ही रहेंगी।

दोस्तों, एक दौर था जब हीरोइन को हीरो को बनाना होता था, तो बोलती थी बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी। लेकिन अब वो दौर नहीं रहा शायद, लेकिन उन गानों को याद करके हम उस वक्त को और समय के साथ कहीं ना कहीं अपने दिल को सुकून तो दे ही सकते हैं। और बस वही सुकून देने के लिए तो हम आपके साथ हैं रात के 1:21 पर।

दोस्त, अगला खूबसूरत सा गाना हमने लिया है फिल्म इंतकाम से, जिसे आवाज़ दी है बहुत ही प्यारी आवाज़ ने लता मंगेशकर जी ने, और बहुत ही सच में खूबसूरत आवाज़ ने मोहम्मद रफ़ी साहब ने।

दोस्तों मोहब्बत में नज़रें मिलती हैं, एक दूसरे से प्यार होता है, एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, जानते हैं। लेकिन ये सब कुछ इतनी जल्दी होता है, इतनी जल्दी होता है कि बाकी सारे एहसास उतने नहीं करीब हो पाते। लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ें और गहरी होती जाती हैं और चीज़ों को समझते जाते हैं, तब कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसा भी होता है कि दिल टूटता जाता है।

तो गानों के जरिए हम कितने एहसास, कितने जज्बात, कितने अरमान सब कुछ जान पाते हैं, और उन्हीं गानों के जरिए एक खूबसूरत सा नगमा है किशोर साहब की आवाज़ में, आप भी सुनिए।

दोस्तों, जीवन में बहुत सारे रंग आते हैं। जीवन में कभी हम बहुत सारे लोगों के बीच होते हैं और कभी तो बिल्कुल अकेले, बिल्कुल तन्हा, जैसे कि इस वक्त हम हैं। लेकिन हमें पता है कि आप हमारे साथ हैं। और अगर ज़िंदगी में आपको कभी भी अकेलापन लगे तो हमेशा इस गाने को सुन के उस बात को महसूस कीजिएगा, तो आप यकीन जानिएगा कि आपको कभी अकेलापन तो नहीं लगेगा।

दोस्तों, इस दुनिया में हम सब अकेले आए हैं और अकेले ही ये सफर तय करना है। लेकिन लेकिन लेकिन जनाब, अगर आपको राह में किसी से मोहब्बत हो जाए, इश्क हो जाए, प्यार हो जाए, तो हमेशा हमेशा हमेशा उनका साथ दीजिएगा। चाहे आपको कितनी भी मुश्किलें आए, लेकिन साथ कभी नहीं छूटना।

दोस्तों, ये तो आप मानेंगे कि ये ज़िंदगी है ना, ये बहुत सख्त है, बहुत कठिन है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन इस कठिन ज़िंदगी में भी जो मुस्कुराते हुए चलते हैं, ज़िंदगी का साथ निभाते हुए चलते हैं, वही ज़िंदगी को अपनी सफल बना पाते हैं। और ये नहीं है कि आपको हर कोई दोस्त मिलेगा, हर कोई आपको अपना मिलेगा। कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको यकीनी तौर पर, जो ऐसे होंगे जो आपको थोड़ा सा दुख देंगे, थोड़ा सा।

रात गहराती जा रही है, लेकिन ऐसे में कुछ देर का आपसे विदा लेना पड़ेगा आपसे, लेकिन हम आपके साथ हैं और इस एतबार के साथ कि आप ही हमारे साथ हैं लगातार।

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत सुनहरे, ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। कुछ ही पलों में समाचार होंगे, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। श्री मोदी की यह 2 दिवसीय यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सरार्जू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3रे भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले 1 दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट UG परीक्षा की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनसुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय आर्यकर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के निवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में 1 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद राज्य सरकार की सेवाओं और पदों में आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग OBC की 66 श्रेणियों की नई सूची अधिसूचित की है। इसके साथ ही OBCA के लिए 10% और OBCB के लिए 7% आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कॉरपोरेट कानून संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त समिति का गठन किया है। लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 9 सदस्य शामिल हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 23 मई से भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आएंगे। उनकी यह पहली भारत यात्रा होगी। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने कहा है कि भारत अगले सप्ताह क्वाड समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। इस समूह में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली NCR में भीषण लू की चेतावनी दी गई है। अगले 2 से 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, मराठवाड़ा और ओडिशा में लू की चेतावनी है। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया है। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की मैच जिताउ पारी खेली। 221 रन के लक्ष्य के जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते 225 रन बनाए। आज कोलकाता के ईडन्स गार्डन में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by R.S. Raghu. India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a Green Technology and Innovation Strategic Partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the 3rd India-Nordic Summit in Norwegian capital Oslo yesterday. Prime Minister Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade.
3: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले 1 दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
2: प्राइम मिनिस्टर मोदी अफर्म्ड that the relations between India and Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements, including trade and economic partnership and India-EU free trade deal. On terrorism, Mr. Modi said the two sides have a clear and united stand. No compromise, no double standards. Speaking on the occasion, the Prime Ministers of Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark reiterated their commitment to shared values of democracy, a rules-based global order and urgent reforms in multilateral institutions in today's changing world. Acknowledging India's global stature, they stressed the need for enhanced cooperation with New Delhi as countries sharing similar values, particularly to address the challenges of conflict and global disruptions. Meanwhile, Prime Minister Modi has arrived in Italy's capital, Rome, on the 5th and final leg of his 5-nation tour after concluding his visits to Norway, Sweden, the Netherlands and UAE. Lok Sabha Speaker Om Birla has constituted the Joint Committee on the Corporate Laws Amendment Bill 2026. Lok Sabha MP Sudhir Gupta has been appointed as the chairperson of the committee. The panel comprises 21 members from the Lok Sabha and 9 members from the Rajya Sabha. Members from the lower house include Kamaljeet Sehrawat, Bhayajayant Panda and Dr. Nishkant Dubey. From the Rajya Sabha, the committee includes Vinod Sridhar Tavade, Sujit Kumar and Ujjwal Deoram Nikam. The Government of West Bengal's Department of Women and Child Development and Social Welfare has issued an official notification introducing the Annapurna Yojana scheme aimed at providing an assured monthly financial assistance of ₹3,000 to women residents for their socio-economic upliftment, scheduled to take effect from June 1st.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार। अब से कुछ ही पलों में समाचार होंगे, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की यह 2 दिवसीय यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूती प्रदान करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सरार जुराव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर भारतीय समुदाय बेहद उत्साहित हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3रे भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले 1 दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण अब 99.6% तक पहुंच गया है। देश में 69,873 किलोमीटर से अधिक रेलमार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। इस वर्ष मार्च तक भारत ने अपने ब्रॉडगेज रेल नेटवर्क का लगभग पूर्ण विद्युतीकरण हासिल कर लिया है। इसके साथ ही भारत यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे प्रमुख रेल नेटवर्क वाले देशों से आगे निकल गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट UG की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनसुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय आर्जिकर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में 1 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू करने की घोषणा की है। योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 3,000 रूपये की सहायता राशि दी जाएगी। यह योजना 1 जून से लागू होगी। 25 से 60 वर्ष के आयु की महिलाएं इसका लाभ उठा सकेंगी। लक्ष्मी भंडार योजना की मौजूदा लाभार्थियों को स्वतः इसमें शामिल किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि जिले को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कॉरपोरेट कानून संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त समिति का गठन किया है। लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 9 सदस्य शामिल हैं। और खेलों में IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया है। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की मैच जिताऊ पारी खेली। 221 रन के लक्ष्य के जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते 25 रन बनाए। आज कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। उधर मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo yesterday. Prime Minister Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade.
3: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
2: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements, including trade and economic partnership and India-EU free trade deal. On terrorism, Mr. Modi said the two sides have a clear and united stand, no compromise, no double standards. Speaking on the occasion, the Prime Ministers of Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark reiterated their commitment to shared values of democracy, a rules-based global order and urgent reforms in multilateral institutions in today's changing world. Acknowledging India's global stature, they stressed the need for enhanced cooperation with New Delhi as countries sharing similar values, particularly to address the challenges of conflict and global disruptions. Meanwhile, Prime Minister Modi has arrived in Italy's capital, Rome, on the fifth and final leg of his five-nation tour after concluding his visits to Norway, Sweden, the Netherlands and UAE. Lok Sabha Speaker Om Birla has constituted the Joint Committee on the Corporate Laws Amendment Bill 2026. Lok Sabha MP Sudhir Gupta has been appointed as the chairperson of the committee. The panel comprises 21 members from the Lok Sabha and 9 members from the Rajya Sabha. Members from the lower house include Kamaljeet Sehrawat, Bayjayant Panda and Dr. Nishikant Dubey. From the Rajya Sabha, the committee includes Vinod Sridhar Tavade, Sujit Kumar and Ujjwal Deorav Nikam. Government of West Bengal's Department of Women and Child Development and Social and Welfare has issued an official notification introducing the Annapurna Yojana scheme aimed at providing an assured monthly financial assistance of Rs. 3,000 to women's residents for their socio-economic upliftment. Scheduled to take effect from June 1, 2026, the financial aid will be credited directly through direct benefit transfer into the Aadhaar-linked bank accounts of eligible beneficiaries. The Government of West Bengal has notified 66 classes of OBC list for reservation in the services and post under the state government following the Calcutta High Court order and cancelled the 10% reservation for OBCA and 7% reservation for OBCB. In a notification by the Backward Classes Welfare Department of the Government of West Bengal, the list of 66 OBC classes has been published for 7% reservation. The earlier two categories of reservation have been struck down. Following the division bench order of Calcutta High Court, the OBC list in which

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की यह 2 दिवसीय यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर अर्जुन राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले 1 दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण अब 99.6% तक पहुंच गया है। देश में 69,873 किलोमीटर से अधिक रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। इसके साथ ही भारत यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमरीका जैसे प्रमुख रेल नेटवर्क वाले देशों से आगे निकल गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से पारदर्शिता दूर करने की कोशिश की जा रही है। और इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू करने की घोषणा की है। योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 3,000 रूपये की सहायता राशि दी जाएगी। यह योजना 1 जून 2026 से लागू होगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय आर्जिकर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में 1 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि जिले को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कॉरपोरेट कानून संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त समिति का गठन किया है। लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 9 सदस्य शामिल हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 23 मई से भारत की 4 दिन की यात्रा पर आएंगे। उनकी यह पहली भारत यात्रा होगी। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। नई दिल्ली स्थित अमरीकी दूतावास ने कहा है कि भारत अगले सप्ताह क्वाड समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। इस समूह में भारत, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की चेतावनी दी गई है। अगले 2 से 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश

0: उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, मराठवाड़ा और ओडिशा में लू चलेगी। वहीं खेलों में आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया है। आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे से मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम आराधना।
2: लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नाद ब्रह्म। कलाकार थे टीके रंगाराजन। वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के वैसाख मास की 29वीं तिथि। तदनुसार बीस मई 2026 सुबह के 4:53 और 56 सेकेंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की ये 2 दिन की यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा की आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर भारतीय समुदाय बेहद उत्साहित है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3रे भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले 1 दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण अब 99.6% तक पहुंच गया है। देश में 69,873 किलोमीटर से अधिक रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। इस वर्ष मार्च तक भारत ने अपने ब्रांड गेज रेल नेटवर्क का लगभग पूर्ण विद्युतीकरण हासिल कर लिया है। इसके साथ ही भारत यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे प्रमुख रेल नेटवर्क वाले देशों से आगे निकल गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 3,000 रूपये की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खातों में दी जाएगी। ये योजना 1 जून 2026 से लागू होगी। 25 से 60 वर्ष आयु की महिलाएं इसका लाभ उठा सकेंगी। लक्ष्मी भंडार योजना की मौजूदा लाभार्थियों को स्वतः इसमें शामिल किया जाएगा। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में 1 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि जिले को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 23 मई से भारत की 4 दिन की यात्रा पर आएंगे। उनकी ये पहली भारत यात्रा होगी। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भीषण लू की चेतावनी जारी की गई है। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की मैच जिताऊ पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम हापुड़िया। आज बात करेंगे सबसे सरल और आवश्यक योग क्रिया की। योग में आसन भी होते हैं, क्रियाएं भी होती हैं। जहां स्थिरता आती है वहां आसन होते हैं, और जहां मूवमेंट रहता है वहां क्रिया होती है। तो आज एक ऐसी क्रिया के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे लोअर बॉडी के हिप्स के नीचे के हिस्से को, वेस्ट से नीचे के हिस्से को सक्रिय रखती है, अकड़न जकड़न से दूर रखती है। अर्थात आप सब समझ गए होंगे, हम बटरफ्लाई की बात कर रहे हैं, तितली अभ्यास की बात कर रहे हैं। तितली आसन नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें मूवमेंट है। तितली वाला अभ्यास हम करने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए कुर्सी पर तो हम बैठ नहीं सकते, आवश्यक है एक प्लेन स्थान का चुनाव करके सीधे बैठ जाए। अपने दोनों पैरों को आगे फैलाएं, दोनों हथेलियों को जंघा के बराबर में रखें, पैरों को थोड़ा हिला लें, आगे पीछे मूव कर लें, पैरों में थोड़ी शिथिलता दूर हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएंगे। एक दाहिने पैर को बाईं जंघा के ऊपर उठा के रखें और धीरे धीरे घुटने को पकड़ के, एक दाहिने हाथ से दाहिने घुटने को पकड़ें और बाएं हाथ से पंजे को पकड़ के ऊपर नीचे हिलाएं, ऊपर नीचे करें। श्वास के साथ श्वास लेते हुए नीचे की ओर दबाएं, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर लाएं। कम से कम 15 आवृत्ति ऊपर नीचे 15 बार उसको घुमाएं, ऊपर नीचे करें। ऊपर करते समय अपने वक्ष तक मिलाएं और नीचे ले जाते समय धरती से मिलाएं। 15 आवृत्ति के बाद वापस आ जाएं। इसी क्रिया को फिर दूसरे पैर से दोहराएं, यानी कि दाहिना पैर सीधा और बायां पांव आप उठा करके दाहिनी जंघा के ऊपर रखें, दाहिने हाथ से पैर के पंजे को पकड़ें और बाएं हाथ से घुटने के ऊपर दबाएं, प्रेशर डालें। अर्थात श्वास लेते हुए नीचे की ओर ले जाएं घुटने को और श्वास छोड़ते हुए अपने वक्ष की तरफ लाएं। इस आवृत्ति को भी कम से कम 15 बार दोहराएं। ऊपर नीचे करेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि खुलने लगा है हमारी जंघाओं का पेल्विक हिस्सा, पेल्विक फ्लोर। फिर पैर को सीधा कर दें। अब दोनों पैर के पंजों को मिलाएं, धीरे धीरे खींचते हुए अपने पेल्विक रीजन की तरफ, जंघाओं की तरफ लाएं, पैर मोड़ दें। सुखासन जैसे अवस्था, लेकिन दोनों पैर के अग्रभाग मिले हुए, और दोनों हाथों से पकड़ लें अग्रभाग को, पैर के अग्रभाग तो को दोनों हाथों से पकड़ लें। अपने पेल्विक फ्लोर के ज्यादा से ज्यादा एड़ियों को करीब लाएं और सामान्य श्वास के साथ अपने घुटनों को नीचे ऊपर हिलाएं, अर्थात थोड़ी देर के लिए तितली बन जाएं। अपने घुटनों को ऊपर नीचे हिलाएंगे, धीरे धीरे आपकी जंघा की मांसपेशियां स्वस्थ होती जाएंगी, पैरों की अकड़न जकड़न दूर होती जाएगी। और मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा अपने देश और विदेश की माता और बहनों से कि उन्हें तो यह अभ्यास रोज करना चाहिए। ये महिला जनित रोगों से मुक्ति दिलाने वाला अभ्यास है। जो महिलाओं को, मेरी माताओं बहनों को प्रॉब्लम होती है मेंसुरेशंस के दौरान, पीरियड के दौरान, और भी कोई महिलाओं के रोग हो सकते हैं, गायनी प्रॉब्लम हो सकती है, उन सब में लाभकारी अभ्यास है ये तितली का अभ्यास। तितली की क्रिया आप दोहराएं और अपने पेल्विक फ्लोर को ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली बनाकर पूरे जंघा को, पैरों को शक्तिशाली बनाएं और जीवन का शक्तिशाली होते हुए ही आनंद उठाएं। धन्यवाद।

आचार्य सुनील गौतम आज बात करेंगे ध्यान की एक बहुत सरल विधि के विषय में, दीर्घ श्वास प्रेक्षा। दीर्घ यानी लंबा, श्वास माने श्वास, प्रेक्षा माने बारीकी से देखना, अर्थात लंबी गहरी श्वास लेना और बारीकी से देखना, फील करना, अनुभव करना, श्वास के आने जाने को देखना और अपना पूरा ध्यान उस पर लगा देना, यही है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। इसमें हम लंबी गहरी

धीरे धीरे छोड़ते जाते हैं। लंबी गहरी सांस भरते हैं और छोड़ते जाते हैं। अपने ऑफिस में, घर में, कार्यस्थल में, खेल के मैदान में, ग्राउंड में, कहीं भी गहरी सांस के अभ्यास को कर सकेंगे। इवन हम कभी देर तक रेड लाइट पर फंस गए, गाड़ी बंद कर दी, तनाव आ रहा है जाम में फंसे होने का, उस तनाव से मुक्ति के लिए भी हम अपनी लंबी गहरी सांस का अभ्यास कर सकते हैं। कभी सामने वाले से कोई झगड़ा हो गया, अपने गुस्से को कैसे काबू करना है, तो भी हम अपनी लंबी गहरी सांस का अभ्यास करके अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। निरंतर लंबी गहरी सांस लेते रहने से हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में रक्त की सप्लाई सुचारू बनी रहती है। जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ हमारा ब्लड मूव करता है हार्ट से शरीर के अंगों के लिए, शरीर के अंगों और मस्तिष्क के लिए। और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंग प्रत्यंगों से रक्त वापस आता है हार्ट के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए। अर्थात हम जब श्वास लेते हैं तो श्वास लेते समय हमारे हार्ट से शरीर के ऑर्गन्स के लिए ब्लड की सप्लाई होती है। जब रक्त जाता है तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है शरीर के अंगों के द्वारा, ऑर्गन्स के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाती है। तो जब श्वास को छोड़ते हैं और वही श्वास छोड़ते समय आपके ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड वापस रक्त के साथ आती है हार्ट से लंग्स के द्वारा थ्रो करने के लिए। अर्थात जब ब्लड जाता है तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब वापस आता है तो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यही दीर्घ श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया आपके रक्त को पूरी तरह फिल्टर करने के और आपके हार्ट को सुचारू रूप से काम करने में मदद करती है। पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार सुचारू करती है लंबी गहरी श्वास लेना और छोड़ना, अर्थात श्वास प्रश्वास। और इसी श्वास प्रश्वास के अभ्यास को आप सायास करते हैं, अर्थात जानबूझ के करते हैं, देखते हुए, विजुलाइज करते हुए, देखते हुए मीन मन की आंखों से देखते हुए करते हैं, फील करते हुए करते हैं, तो ध्यान हो जाता है, ध्यान की सब ग्राह्य विधि बन जाती है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। इसमें दीर्घ श्वास प्रेक्षा के दौरान जब आप श्वास को ले रहे हैं, धीरे धीरे पेट फूलेगा, जब श्वास छोड़ते हैं धीरे धीरे पेट नीचे जाएगा। और इसी पेट के ऊपर नीचे होने को, यानी के प्रत्येक अंग प्रत्यंग में कैसा प्रभाव हो रहा है श्वास के लेने और छोड़ने का, आप उसे अनुभव करने लग जाएंगे। और यही अनुभव करना, विजुलाइज करना, देखना, फील करना, यही आपका एक ध्यान बन जाता है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। शरीर भी स्वस्थ होता है, मन भी स्वस्थ होता है दीर्घ श्वास के अभ्यास से। बेहतरीन मेडिटेशन हो जाता है, हमें फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली फिट रखने में समर्थ। धन्यवाद।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ योग करें। इसके अंतर्गत अभी आपने तितली अभ्यास क्रिया और दीर्घ श्वास प्रेक्षा के बारे में जाना। आइए अब सुनते हैं देशभक्ति गीत।